شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

प्यारे बच्चों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नोमी ने अपनी अम्मी से पूछा, जो सुबह नाश्ते की तैयारी कर रही थी। क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल मदद कराओ, अम्मी ने खुश होकर कहा। एक काम करो, बोरी से आटा निकाल लो और बर्तन धो दो, उन्होंने हिदायत दी। खुशी से नोमी आटे की बड़ी बोरी के पास गया, लेकिन बोरी उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा भारी थी। उसने बोरी उठाने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गई और आटा हर जगह बिखर गया। पूरा किचन सफेद धुंध में डूब गया और नोमी साहब खुद भी आटे में लथपथ होकर एक सफेद भूत की तरह दिखने लगा। मुझे माफ कर दें अम्मी, मैं तो सिर्फ मदद कराना चाह रहा था, नोमी ने अफसरदगी से कहा। उफ अल्लाह, तुमने तो मेरा काम बढ़ा दिया नोमी, अब मुझे पूरे किचन की सफाई करनी होगी और तुम्हें नहलाना भी पड़ेगा, अम्मी ने नाराजगी से कहा। नहाने और साफ कपड़े पहनने के बाद नोमी बाग में गया, जहां उसके अब्बू फूलों की क्यारियां खोद रहे थे। अब्बू जी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नोमी ने पूछा। अब्बू, जो सुबह से अपने गार्डन में लगे हुए थे और तकरीबन थक चुके थे, उन्होंने पलटकर नोमी की तरफ देखा और कहा, ये झाड़ियां साफ कर दोगे बेटा? तुम्हें पता है ना झाड़ियां क्या होती हैं? ठीक है, कर लोगे? जी हाँ अब्बू जी, मुझे पता है, मुझे पता है, नोमी ने पुर एतमाद होकर अपने अब्बू को जवाब दिया। ठीक है बेटा, मैं कॉफी पीने अंदर जा रहा हूँ, अब्बू ने खुश होकर कहा। अब मैं अब्बू को दिखाऊंगा कि मैं कितना मददगार बच्चा हो सकता हूँ, नोमी ने मुस्कुराते हुए दिल में खुद से बोला। तो भाई, नोमी साहब ने उठाया बेलचा और पौधे खोदना शुरू कर दिए। जल्द ही रेड़ी भर गई, उसने जोर से आवाज दी, अब्बू मैंने काम मुकम्मल कर लिया। अब्बू ने कॉफी खत्म करने के बाद बाग में आकर देखा। बाग का मंजर देखते ही वो हैरान ज़दा रह गए। या अल्लाह, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरे तमाम पौधे खोद डाले, ये तो खिलने वाले थे, अब्बू ने अफसोस से कहा। लेकिन मैंने तो सोचा कि ये सब झाड़ियां हैं, नोमी ने जवाब दिया। अब्बू ने गुस्से से बेलचा उठाया और कहा, अब मुझे इन सब को दोबारा लगाना पड़ेगा, हटो यहाँ से, जाओ चलो, नोमी ने अबू की मायूसी को देख कर खुद से कहा। मुझे लगता है कि बेहतर है कि मैं अब कामों से दूर ही रहूं। जब वो अपने कमरे तक पहुंचा तो उसे अपनी अम्मी की एक बात याद आ गई। नोमी, तुम्हारा कमरा हमेशा मैदान जंग की तरह बिखरा ही रहता है। हाँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, नोमी ने खुशी से कहा। अगर मैं अपना कमरा साफ कर दूं तो अम्मी बहुत खुश होंगी, उसने कपड़े जमा किए और अलमारी में रख दिए। फिर उसने कंबल तह किया और खिलौने लकड़ी के डब्बे में डाल दिए। सिर्फ किताबें बची थीं अब, जो बिस्तर के इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। नोमी ने किताबें उठाई और उन्हें शेल्फ पर रखने की कोशिश की, लेकिन किताबें ज्यादा थीं और उसका बैलेंस बिगड़ गया। किताबें उसके हाथ से फिसल गई और वो बिस्तर पे गिर गया। किताबें उस पर बरस पड़ी और उसका नाजुक बिस्तर भी टूट गया। खुशकिस्मती से नोमी को चोट नहीं आई। ये सारा शोर सुनकर उसकी अम्मी और अब्बू कमरे में भागते आए। या अल्लाह, मुझे पता है तुम फिर मदद करने की कोशिश कर रहे थे ना, अम्मी ने गुस्से से कहा, और अब मुझे इसका ये बेड भी जोड़ना पड़ेगा, उसके अब्बू ने गुस्से से कहा।

ये सब कुछ होने के बाद मदद करने के गर्ज के साथ नोमी पार्क की तरफ चल दिया। वहाँ उसने दो बच्चों को एक दरख्त की तरफ इशारा करते हुए देखा। अरे हमारी पतंग इस शाख में फंस गई है, बच्चों ने बताया। कोई मसला नहीं, मैं इसे नीचे उतार दूंगा, नोमी ने जल्दी से अपनी मदद पेश कर दी। वो दरख पर चढ़कर शाख तक पहुंच गया, पतंग शाख से निकालकर नीचे गिरा दी और बच्चे खुशी से चीखने लगे, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आखिरकार मैंने कुछ सही काम कर ही लिया, नोमी ने खुश होकर कहा। लेकिन जब उसने नीचे उतरने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वो नीचे नहीं उतर सकता। या अल्लाह, मुझे मदद की जरूरत है, नोमी ने परेशानी से कहा। आखिरकार उन बच्चों ने उसके अम्मी अब्बू को बुलाया, जो उसके उतरने के लिए सीढ़ी लेकर आए। दरख्त से नीचे उतरते हुए नोमी ने सोचा, मुझे तो लगता है आज के दिन में सबसे ज्यादा मदद मुझे ही चाहिए थी। तो दोस्तों, नेक नियति अहम है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन बगैर समझ या तैयारी के कोई भी अमल करना मुश्किलात पैदा कर सकता है। मदद करने से पहले हमेशा अच्छी तरह सोचें कि आपसे ये काम होगा भी कि नहीं।

0: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
0: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आज नाजिया के साथ ओनली ऑन एफ एम 107।
0: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट।
1: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप।
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
1: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
3: पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: सामिन कराम, अरब दुनिया में कहा जाता है अलहाजा तकसर अलबिदा, इसका मतलब है जरूरत इंसान को अपनी कीमती चीज भी कम दामों में बेचने पर मजबूर कर देती है। ये कहावत उस वक्त कही जाती है जब कोई शख्स अपनी शदीद मजबूरी या हालात जिंदगी के दबाव के तहत अपनी चीज असल कीमत से कहीं कम में फरोख्त कर देता है। वह हाजत और तंगी इंसान को असल कद्र कीमत से महरूम कर देती है। कहते हैं ना, मजबूरी में शेर भी घास खाता है। तो दोस्तों, ये कहावत हमें सिखाती है कि जरूरत और मजबूरी इंसान की असल कीमत को तोड़ देती है। इसलिए अगर कभी किसी को मजबूरी में कम दामों पर बेचते देखें तो उसका मजाक ना उड़ाएं बल्कि उसकी मदद करें, क्योंकि अलहाज तकसर अलबिदा का मतलब है कि जरूरत सबसे बड़ी कीमत चिकन है।
2: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामीन, इस्लाम में नौमौलूद के साथ ताल्लुक महज मोहब्बत और खुशी का इजहार ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल तरबियती निज़ाम है जो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में तश्कील पाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे की पैदाइश से लेकर उसके नाम रखने तक कई अहम सुन्नतें सिखाएं और आज की सुन्नत में हमारी गुफ्तगू होगी अकीका, बाल मुंडवाने और अच्छे नाम रखने के हवाले से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे की तरफ से सातवें दिन जानवर ज़बह किया जाए, उसका सर मुंडाया जाए और उसका नाम रखा जाए। एक हदीस में ऐसा भी आया है, लड़के के लिए दो बकरे और लड़की के लिए एक बकरी, और सुन्नत यह है कि पैदाइश के सातवें दिन जानवर ज़बह किया जाए, अगर वो मुमकिन ना हो सके तो चौदहवा दिन वरना 21वें दिन। और इस सिलसिले में बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनकूल है कि अकीका सातवें दिन ज़बह किया जाए या चौदहवें दिन या 21वें दिन। ये हदीस रिवायत की है अबू दाऊद ने। मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के अकीके में मजीद बाल मुड़वाना और उसके बालों के वजन के बराबर चांदी सदका करने की बात भी आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन के अकीके में एक बकरी ज़बह की, फिर फरमाया, ए फातिमा, उसका सर मुड़वा कर उसके बालों के वजन के बराबर चांदी सदका करो। मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बच्चों को अच्छे और पाकीज़ा नाम दिए जाएं। फरमाया, अल्लाह को सबसे महबूब नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान हैं। इस तरह सामीन, इस्लाम ने ज़िंदगी के पहले 7 दिनों में ही

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। आंखें बड़ी नेमत हैं। आज हम बात करेंगे आंखों की सेहत के बारे में। आंखें हमारी दुनिया की रोशनी हैं और उनकी हिफाजत करना हर उम्र के लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे अहम सवाल ये है कि क्या आप या हम हर रोज़ मोबाइल और कंप्यूटर के सामने वक्त गुजारने के बाद अपनी आंखों की वर्जिश करते हैं या नहीं। मगर सबसे पहले ये कि आंखों के लिए कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, जो बेहतरीन हैं, जैसे कि उसमें कैरेट्स हैं, पालक है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उसमें विटामिन ए शामिल होता है और जो कि हमारी आंखों के लिए बेहद ज़रूरी है। ओमेगा 3, उसमें हम मछली इस्तेमाल करेंगे और अंडे, वो अगर आप लेते हैं तो आप ओमेगा 3 ले रहे होते हैं जो कि आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह नट्स हैं या सीड्स हैं वो आप लीजिए।

0: में विटामिन ई है जो आंखों के लिए एक बेहतरीन गिज़ा है। मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी के सामने ज़्यादा वक्त आप ना गुजारिए, मुनासिब रोशनी में अपना काम कीजिए। कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए आप दूर देखिए। आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक स्टूडेंट जो कि हर रोज़ 5 से 6 घंटे कंप्यूटर इस्तेमाल किया करता था, आंखों की एक्सरसाइज नहीं की तो उस स्टूडेंट की आंखें बहुत थक गईं, फिर धुंधलापन महसूस होना शुरू हो गया। मगर जब उसने वक्फे से और अपनी गजाइयत का ख्याल रखा, यानी अपने खाने पीने का ख्याल रखा, आंखों की एक्सरसाइज की, तो फिर उसकी जो बिनाई है वो बेहतर होती चली गई। हमें करना ये है, कंप्यूटर या मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद हर 20 मिनट पर आप थोड़ा सा वक्फा लीजिए। सब्जियां और फल जो हैं वो ज़्यादा कर दीजिए। आँखों को पानी और आराम दीजिए। बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल ना करें या कोई भी डिवाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल ना करें। और अगर आपकी जो नज़र है, आई साइट है, वो ख़राब है, तो फौरन आप जो माहिर डॉक्टर हैं उनसे रुजू कीजिए और आप उन्हें दिखाइए कि क्या मसला है। क्योंकि आंखें अगर आपकी महफूज हैं तो ज़िंदगी रोशन है, तो अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए और आज ही से शुरू कीजिए। Health for all.
1: Qatar National Health Strategy. Health for all. FM 107. Dil se Desi.
2: Qatar ka pehla Desi radio station. FM 107. Dil se Desi.

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे यूनुस अहमद के बारे में। यूनुस अहमद कतर के तारीखी गोलकीपर्स में से एक हैं और उनका नाम अल रायान क्लब के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। 17 जुलाई 1963 को पैदा होने वाले यूनुस ने सिर्फ 14 साल की उम्र में 1977 में अल रायान को ज्वाइन किया और 1998 तक लगातार 21 साल क्लब के लिए गोलकीपिंग की। ये वफादारी उन्हें कतर फुटबॉल के सबसे लॉयल प्लेयर्स में शुमार करती है। अल रायान क्लब के साथ उन्होंने 6 लीग टाइटल्स, 2 आमिर कप और नेशनल टीम के लिए भी उन्होंने 75 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेले और 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में कतर की नुमाइंदगी की। 1981 में यूथ नेशनल टीम के लिए डेब्यू करने के बाद उन्होंने हर लेवल पर अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। उनकी रिफ्लेक्सेस, लीडरशिप और कंसिस्टेंसी की वजह से उन्हें कतर की तारीख ही बेहतरीन गोलकीपर्स में शुमार किया जाता है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और अजीम खिलाड़ी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: 107 FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक अपनाने जा रहे हैं जो तेज रफ्तार और मसरूफ जिंदगी में हमारी ज़हनी और जज्बाती सेहत के लिए बेहद अहम है, और वो है मुराकबा या मेडिटेशन। मुराकबा एक ऐसी मशक है जिसमें इंसान चंद मिनट के लिए सुकून से बैठकर अपनी ब्रीदिंग, ख्यालात या किसी मुस्बत एहसास पर तवज्जो मरकूज करता है। इसका मकसद जहन को पुरसकून करना और मौजूदा लम्हे पर तवज्जो देना है। आज के दौर में जहनी दबाव, बेचैनी और थकन आम मसाइल बनते जा रहे हैं। काम का दबाव, माली परेशानियां, घरेलू जिम्मेदारियां और मुसलसल मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे जहन को थका देता है। ऐसे में मुराकबा एक मौसर और आसान तरीका है जो जहनी सुकून फराहम कर सकता है। बहुत सी रिसर्च की गई और उसे मालूम हुआ कि बाकायदगी से मुराकबा करने से जहनी दबाव कम होता है, और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जिस्म में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स कॉर्टिसोल की सतह कम होने लगती है, जिससे सुकून और राहत का एहसास होता है। मेडिटेशन या मुराकबा के अहम फवायद ये हैं कि जहनी दबाव में कमी वाकई हो जाती है, बेचैनी और घबराहट में भी कमी आती है, तवज्जो और इर्तकाज में बेहतरी आ जाती है, याददाश्त को बेहतर बनाना शुरू कर देती है, और इसी तरह से जो हमारी मुस्बित सोच है वो ज्यादा होती चली जाती है, नींद के मायार को बेहतर भी बनाती है। बहुत से अफराद समझते हैं कि मेडिटेशन या मुराकबा बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हकीकत में रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट भी काफी हो सकते हैं। मुराकबा शुरू करने का आसान सा तरीका ये है कि किसी पुरसकून जगह पर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांसों पर यानी अपनी ब्रीदिंग पर तवज्जो दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता सांस अंदर लें और बाहर निकालें। अगर जहन भटक जाए तो परेशान ना हो, दोबारा जो आपकी ब्रीदिंग है उस पर तवज्जो मरकूज कर लीजिए। चंद मिनट की ये जो एक्सरसाइज है वो रोजमर्रा जिंदगी में सुकून और तवाज़ुन पैदा कर सकती है। लिसनर्स, जहनी सेहत भी इतनी ही अहम है जितनी जिस्मानी सेहत, और मेडिटेशन या मुराकबा एक सादा मगर ताकतवर आदत है जो जहन को मजबूत और पुरसकून बनाने में मदद देती है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें। आज ही राबता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. Main hoon aapki host Nazia.
0: One Step to 2030.
1: दोस्तों आज के सेगमेंट में बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ. सोचिए अगर आपकी कार बिल्कुल ठीक चल रही हो तो क्या आप उसका ऑयल चेंज कराना या फिर सर्विसेज करवाना बंद कर देंगे? शायद नहीं ना, क्योंकि हम जानते हैं कि रेगुलर मेंटेनेंस से बड़ी खराबी से बचा जा सकता है. बिल्कुल इसी तरह हमारा जिस्म भी है. जब हम बीमारी का इंतजार करने की बजाय पहले से अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो इसे कहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर. जी हाँ, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का सिंपल मतलब है कि बीमारी होने से पहले उससे बचने के लिए कदम उठाना. ये सोच ट्रीटमेंट से बेहतर प्रिवेंशन, ये हमने पढ़ा भी है, जाना भी है और यहीं से ये सोच भी निकलती है. आज के दौर में जब लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज हो, हार्ट डिजीज हो, ओबेसिटी है, ये चीजें बढ़ रही हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की अहमियत और ज्यादा हो गई है. अक्सर लोग डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब उन्हें कोई तकलीफ महसूस होती है. लेकिन कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो शुरू में कोई साइन या सिग्नल नहीं दिखाती. जैसे हाई ब्लड प्रेशर को ही आप देख लीजिए, कहाँ पता चलता है. कई लोगों को सालों तक पता ही नहीं चलता कि उनका बीपी या उनका ब्लड प्रेशर हाई है. जब तक पता चलता है शायद तब तक दिल, किडनी या दूसरे ऑर्गन्स भी मुतासर हो सकते हैं या हो जाते हैं. इसीलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स बहुत जरूरी हैं. छोटा सा ब्लड टेस्ट या फिर मेडिकल स्क्रीनिंग कई बड़ी बीमारियों को जल्दी आइडेंटिफाई कर सकता है. अगर बीमारी का पता शुरू में चल जाए तो उसका ट्रीटमेंट आसान हो जाता है, कम खर्च और ज्यादा सक्सेसफुल भी होता है. और शायद इसी वजह से डॉक्टर्स रेगुलर चेकअप्स की हमेशा सलाह देते हैं. दोस्तों प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे आज मैं बात कर रही हूँ और ये

0: का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिर्फ हॉस्पिटल्स या क्लिनिक तक महदूद नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर हेल्दी डाइट लेना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना, ज्यादा पानी पीना, जंक फूड्स को बिल्कुल कम कर देना। जब हम अपने जिस्म को सही न्यूट्रिशन देते हैं तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। वहीं एक्सरसाइज भी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आपको जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, रोजाना 30 मिनट वॉक भी बहुत फायदेमंद हो सकती है। और वॉकिंग ना सिर्फ वेट कंट्रोल करती है बल्कि दिल को मजबूत बनाती है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है और स्ट्रेस को कम करती है। जी हाँ, कई रिसर्चर्स ये बताती हैं कि एक्टिव लाइफस्टाइल से क्रॉनिक डिजीजेस का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। आजकल स्ट्रेस एक बड़ा कॉमन मसला बन चुका है, चाहे ऑफिस का प्रेशर हो, स्टडीज हो या फिर डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब के चलते मेंटली हम थक जाते हैं। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना भी शामिल है। अगर हमारी नींद प्रॉपर है, फैमिली के साथ हम ठीक ठाक वक्त गुजार रहे हैं, शायद मौका मिलता है तो हॉबीज अडॉप्ट कर सकते हैं या उन्हें परस्यू कर सकते हैं, ये सारी चीजें पॉजिटिव थिंकिंग और आपकी मेंटल वेलबींग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, वैक्सीनेशंस, जी हाँ, वैक्सीनेशन भी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का एक बेहतरीन मिसाल है। वैक्सीन्स हमारे जिस्म को कई डेंजरस डिजीजेस के खिलाफ प्रोटेक्शन देती हैं। बचपन की वैक्सीनेशन से लेकर फ्लू शॉट्स तक, ये सब प्रिवेंटिव केयर का हिस्सा है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पैसे भी बचाती है। सोचिए, अगर किसी शख्स को डायबिटीज या हार्ट डिजीज एडवांस स्टेज में डायग्नोस हो तो उसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा हो सकता है, लेकिन अगर वो पहले से हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करे और रेगुलर चेकअप्स करवाए तो वो बड़े मेडिकल एक्सपेंसेस से बच सकता है। देखिए, वर्कप्लेस हो या फिर घर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को प्रमोट करना आपकी हमारी जिम्मेदारी है। आखिर में ये कहना चाहूंगी कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। जिस तरह हम अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स करते हैं, ठीक उसी तरह से अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो ये हमारी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है। रोजाना की छोटी छोटी हेल्दी चॉइसेस, जैसे बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट और रेगुलर चेकअप्स, हमें बड़ी बीमारियों से महफूज रखते हैं। दोस्तों, याद रखिए, सेहत सिर्फ बीमारी ना होने का नाम नहीं है बल्कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग का भी नाम है। अगर हम आज अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो कल एक ज्यादा हेल्दी, एक्टिव और खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। इसीलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए और सेहतमंद मुस्तकबिल का ख्वाब देखना हम सब के लिए बड़ा ज़रूरी है और शायद ये ख्वाब सेहतमंद मुस्तकबिल की तरफ हमारा पहला कदम भी हो। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Yeah.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

मद्देनज़र है। तो इसके हिफाज उसकी सिक्योरिटी के लिए वो काम करते हैं। सिलसिले में उन्होंने बताया कि उनके यानी इदारत अमन मालूमात इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंडर में 3 इस तरह के अकसाम हैं, और इसमें ये भी बताया गया है कि इसमें एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी अमन मालूमात के ऑपरेशंस के हवाले से जो काम करते हैं, मज़ीद ये कि सिस्टम यूज़र सिक्योरिटी एक डिपार्टमेंट है, सेक्शन है। मज़ीद उन्होंने कहा जिस तीसरे किस्म से उनका ताल्लुक भी है और वो है पॉलिसीज़ एंड कंट्रोल सेक्शन के साथ क़िस्म सियासत व दवाबित। तो उन्होंने कहा कि वक्तन फ़ोक्तन वो इस तरह के मज़ीद सियासी और पॉलिसीज़ पर काम करते हैं, मज़ीद स्ट्रेटजी लाते हैं ताकि मज़ीद प्रोटेक्शन मिल सके बुनियाद तहतिया को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो किसी तरह के साइबर हमले से इन्हें बचाया जा सके। वैसे इन तीनों शोबे की अलग अलग जिम्मेदारियाँ हैं, वो ओवरऑल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से ये काम करते हैं। और जैसे कि उन्होंने कहा हमें कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इदारे का ये काम रहता है कि वो इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं, उसकी मुहाफ़ज़ा और इसकी राजदारी का ख्याल करना, और मज़ीद उन तमाम हमलों से निमटने की कोशिश रहती है वो जो हमले किसी टेक्निकली अनसिक्योर कोई सिस्टम कोई यूजेज की बिना पर कुछ इस तरह के साइबर हमले अगर होते हैं तो इससे हम कैसे बचें, तो इस सिलसिले में भी वो लगातार काम करते हैं। ओवरऑल हमने ये जाना उनसे कि इदारत अमन मालूमात इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का दायरा कार क्या है। तो चलें अब हम रुख करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात जब आ जाती है तो इसके जो अहम मफाहीम हैं वो क्या हैं। हमारे फर्स्ट लेफ्टिनेंट खालिद नासर अलमारिफी इस सिलसिले में हमें वजाहत पेश करेंगे। सैयद अलमुलाज़िम अव्वल खालिद नासर अलमारिफी मिन इदारत अमन अलमालूमात अत्ताबिअ लवज़ारत अद-दाखिलिय बिदौलत क़तर। ننتقل الى المحور التالي بخصوص المفاهيم

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत है उस शो में जो पब्लिक के लिए है, पब्लिक से ही जुड़ा हुआ है और मुझे भी पब्लिक ही समझ रही है जो पब्लिक पब्लिक को बता रही है। कुल मिलाके ये जो शो है ये आपको गर्मी में भी घर से बाहर निकालने के लिए है, मगर मुझे उम्मीद है जब आप ये सुन रहे होंगे तो मौसम शायद बढ़िया हो चुका होगा, एटलीस्ट मैं पॉजिटिविटी के साथ तो बोल ही सकता हूँ। सो वेलकम टू कतर 2026,
3: कतर 2026, कतर 2026।
2: और आज भी मैं आपको बताऊंगा कतर में कहां कहां क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो चुका है और क्या अभी आने वाले वक्त में होगा, ताकि आप तैयार रहें। कुछ ऐसे इवेंट है जिनके लिए फीते आपको अभी से बांध लेने चाहिए, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि क्योंकि आप गए नहीं, और कुछ इवेंट्स अभी हैं जिनके लिए मैं कहूंगा पहुंचिए भाई, थोड़ी क्या कहते हैं उसे गुम्मी गुम्मी करिए, बड़ा जरूरी है। सबसे पहले मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे इस शो के दौरान आपको बहुत सारे इवेंट्स बताऊंगा, लेकिन पहले शुरुआत करूंगा यहाँ के स्टेकेशन से। मौसम अभी थोड़ा सा ठीक है, बेहतर है, गर्मी है तो क्या कर सकते हैं, और शायद आप मुझे सुन रहे होंगे तो मौसम थोड़ा सा सुहाना हो चुका होगा, विच एवर वे यू वॉन्ट टू टेक इट या कोई भी कुछ होगा, मगर स्टेकेशन कतर में अगस्त के एंड तक बढ़िया रहेंगे। प्राइसेस बहुत शानदार हैं, बहुत सारी चीजों पर हैं, बुफे से लेकर पूल साइड पार्टी से लेकर हर एक चीज तक। तो फैमिली दोस्तों के साथ बच्चों को लेके जाएं, ग्रुप में जाएं, इकट्ठे जाएं, अकेले जाएं, करें मगर ये कतर में। कतर में स्टेकेशन इज अ पार्ट ऑफ इट, मतलब ऐसा नहीं है कि ओ ये तो अंग्रेज करते हैं हम लोग नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफर्स आर देयर, आप फायदा उठाइए, पांच छह दोस्त चले जाइए, पांच छह फैमिली मेंबर्स को ले जाइए, कपल चले जाएं, बच्चों को लेकर जाइए, सैर सपाटा भी हो जाएगा और एसी की हवा भी लग जाएगी और थोड़ा बहुत पूल वगैरह मिल जाएगा। तो जो अभी तक स्टेकेशन का मजा नहीं ले पाए कतर में, प्लीज जाइए, क्योंकि इसके लिए आपको ज्यादा टाइम निकालना नहीं पड़ता। अगर आपके पास वीकेंड है, एक है, दो है, छुट्टियां हैं, यू कैन स्टिल गो आउट एंड जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, कंट्रोल हो जाए। और रिजॉर्ट्स में भी आप जा सकते हैं, स्टेकेशन सिर्फ होटल्स में नहीं है, रिजॉर्ट्स में भी है और यहाँ के रिजॉर्ट्स बहुत शानदार हैं। मेरे जितने भी एक्सपीरियंस रहा है कतर में 10 सालों में, सारे के सारे रिजॉर्ट, जितने भी रिजॉर्ट्स में आज तक देखे हैं मैंने, सब एक नंबर है यार, मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता। कहीं पर कुछ अच्छा है तो कहीं पर कुछ ज़्यादा ही कुछ अच्छा है, कहीं पर कुछ अच्छा है, कंपेरिजन भी करेंगे तो हर कोई अलग अलग निकलेगा। So that is the beauty of it. तो सबसे पहले मैं स्टेकेशन के बारे में भी जिक्र करना चाह रहा था, एंड ऑल्सो आपको इन्वाइट करता हूँ कि आप मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ पे आप जा चुके हैं, या कोई सजेशन देना चाहें स्टेकेशन के लिहाज से, या कोई

0: ऐसा इवेंट जो आपकी नजर में है. सो 666-22-107 नंबर है, ये तो हमारा व्हाट्सएप हो गया, लेकिन सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आए. FM 107 Qatar इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं. प्लीज प्लीज गेट इन टच विद अस और हमें बताइए कोई इवेंट आपके हाथ लगा हो जो हमसे छुप गया. आए चलो आगे बढ़ते हैं.
1: Qatar 2026.
0: तो अगला जो इवेंट है वो आपको ले जाएगा ईस्टर्न स्क्वायर सूक वाकिफ की तरफ, जो 25 जुलाई से शुरू हो चुका है, जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ तारीफें ही तारीफें आ रही हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं भाई इस इवेंट के जरिए. ये जो डेट फेस्टिवल है ये इस बार हर साल तो बढ़ता ही बढ़ता है, इस साल और भी जबरदस्त गया है. तकरीबन 1,08,000 किलोग्राम डेट्स जो है वो बेचे गए हैं, और ये मैंने डेटा पढ़ा था, आई थिंक 9 दिनों का डेटा था ये. अभी तो बहुत ज्यादा हो गया होगा डेटा, जब मैंने पढ़ा था तो 1,08,000 ऑलरेडी पड़ चुका था और 60,000 से ज्यादा लोग पहुंच चुके थे. सो ये 25 जुलाई को शुरू हुआ था और 10 अगस्त तक है. तो अभी भी अगर आप नहीं गए और अगर आप मुझे सुन रहे हो टाइम है तो प्लीज प्लीज जाइए. शाम को 4 बजे से रात के 10 बजे तक है डेट फेस्टिवल. एंड इंटरनेशनल डेट फेस्टिवल की खास बात यह है कि इट्स ओपन टू ऑल, इट्स फ्री. आप कोई पास, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई फीस नहीं देनी है. अंदर जाके अपने मर्जी से देखिए आप क्या पसंद आता है, फिर खरीदिए. तो अंदर आपको अलग अलग किस्म के खजूर मिलेंगे. और कतर का जो लोकल डेट है उसकी तो बात ही कुछ और है भाई. बहुत सारे खजूर ऐसे जो मुंह में घुल जाते हैं, ओए ओए क्या बताऊं. और अंदर खजूरों के क्या क्या आइटम्स होते हैं, जैम है, उसके अलावा खजूर का शेक है, न जाने क्या क्या चीजें बना रखी हैं भाई. मैं बहुत इंप्रेस होता हूँ कतर के इंटरनेशनल डेट्स फेस्टिवल से. आई रिमेम्बर मैं पिछले साल गया था, मैं गया था कवर करने के लिए, और कवर करने के लिहाज से तो पहुंचा था, लेकिन मैं वहीं पर रह गया. मैंने कहा मजा आ रहा है, आराम से काम करेंगे भाई, काम डिले करना पड़ गया, इतनी बढ़िया चीज़ है. सो इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस द रिच हेरिटेज ऑफ कतर और डिस्कवर करना चाहते हैं कुछ फाइनली लोकली ग्रोन डेट्स, तो ये एक्सपीरियंस है भाई. दिस इज नॉट जस्ट अबाउट खजूर और डेट्स, इट इज़ एन एक्सपीरियंस ऑन इट्स ओन. एंड ये डायरेक्टली क्योंकि लोकल फार्म से निकले हैं तो बहुत ताज़ा तरीन है, खुशबूदार हैं और कमाल के हैं और अलग अलग किस्म के हैं. तो ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट करता है क्वालिटी को जो नेशन वाइड प्रोड्यूस होता है कतर में, और कंट्री के एग्रीकल्चरल लेगेसी को आगे बढ़ाता है. तो हम चूंकि यहाँ पे रह रहे हैं एज रेजिडेंट्स ऑफ दिस कंट्री, ये हमारा वैसे ही बनता है जाना, ये ऑलरेडी वी फील प्राउड दैट वी आर इन कतर. मगर कतर को भी हेल्प होगी, कतर के फार्मर्स, कतर के जो एग्रीकल्चरल लेगेसी से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी तवज्जो की जरूरत है. एंड ऑफ कोर्स वी आर देयर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लेगेसी. सो जरूर जरूर विजिट कीजिएगा. संडे टू थर्सडे इसकी टाइमिंग्स रही 4 से रात के 9 और फ्राइडे और सैटरडे 4 से 10. इसके अलावा यहाँ पर एक और कॉम्पिटिशन रहा है जो उसका नाम था गोल्डन डेट्स बास्केट कॉम्पिटिशन. मैं नाम भूल गया था, इसका भी याद आया. सो गोल्डन डेट्स बास्केट फेस्टिवल कॉम्पिटिशन ये सूक वाकिफ की तरफ से लॉन्च किया गया है, और इसमें जो फार्म्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन लोकल डेट्स फेस्टिवल सूक वाकिफ 2026 वो ईस्टर्न स्क्वायर, जहां पर वो शोकेस कर रहे हैं बास्केट्स जिसके अंदर 5 अलग अलग किस्म के खजूर हैं. और मौका मिलेगा इन लोगों को जीतने का कैश प्राइज. इट्स अ ह्यूज ह्यूज थिंग, क्योंकि इससे पहले भी कॉम्पिटिशन किए गए हैं लेकिन इस बार कैश प्राइजेस को ही बढ़ाया गया है और कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है. तो ये जो कॉम्पिटिशन है ये भी आप विटनेस कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट. आप जिसको ज्यादा तवज्जो देंगे, जिसकी तारीफ करेंगे, ये बिल्कुल वैसा है कि जनता जनार्दन से पूछते हैं वोटिंग लाइन्स खुली हुई है, ये उस टाइप कैसे है. पर वोटिंग लाइन्स नहीं खुली हुई है, जस्ट दैट यू गो देयर, यू एंजॉय, और आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आपने रिव्यू देते हैं, एंड पीपल लव इट, एंड देन द कंपटीशन इज आल्सो कमेंस. तो बहुत बहुत बढ़िया जगह है यार, यहाँ पर आप जरूर जाइए. और अगर आप कतर में नए नए आए हैं तो मैं तो पहली फुर्सत में कहूँगा आपको कि इन फेस्टिवल्स को ना छोड़ें, क्योंकि ये कोई वो फेस्टिवल नहीं है जो आपका इंतजार करेगा या मौसम का इंतजार करेगा कि भाई जब ठंड आएगी तब आ जाना. नहीं, ये अभी का ही मौसम है, ये खजूरों का मौसम है, खजूरों का फेस्टिवल है, एंड वन शुड नॉट इग्नोर दिस एट ऑल. तो जाइए, शाम का वक्त भी है, गर्मी लगने वाली है, एंड इट्स ओपन टू ऑल. सो घूमते फिरते आराम से जा सकते हैं, और कतर की खूबसूरती यही है कि कहीं से कहीं तक जाने में कोई टाइम लगता है, कहीं से कहीं तक भी चले जाओ. सो दिस इज अबाउट इंटरनेशनल फूड डेट्स फेस्टिवल. खाने की बात करें, मेरा गला भराया. तो इसके पेज पे भी जाके आप देख सकते हैं अगर आपको सिर्फ एक व्यू देखना है उसके बाद जाना है. और वैसे तो मैं कहूँगा जाइए, गो ब्लाइंडली, एंड आपको सच में मज़ा ही आएगा, ये तो 100% गारंटी है. ठीक है, चलो भाई. आगे बढ़ते हैं।
1: कतर 2026, कतर 2026।
0: अब देखिए कतर कैलेंडर में बहुत कुछ है लॉन्च किया जा रहा है काफी कुछ, और इस बीच लॉन्च किया गया था कलर वर्स एक्सपीरियंस, और कलर वर्स एक्सपीरियंस जो है ये नेक्स्ट जनरेशन इमर्सिव एंटरटेनमेंट अट्रैक्शन है, इसकी मैंने हमेशा तारीफ करी है। ये जो एक्सपीरियंस है कलर वर्स एक्सपीरियंस, ये विजिटर्स को इनवाइट करता है और हिस्सा बनाता है, सिर्फ इनवाइट नहीं करता, एक इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग जर्नी पर ले जाता है। समटाइम्स आपके सामने कोई बैठा होता है पर या आप कुछ सुना रहे होते हैं, मैं आपको कहानी सुनाता हूं, आप उसका पार्ट नहीं है मगर आप उसे सुन के आपको अच्छा लगता है। व्हाट इफ जो मैं आपको सुना रहा हूं आप उससे इंटरैक्ट कर पाए तो सोचिए कितना मजा आएगा। एंड ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस देता है ताकि आप उससे जुड़ पाए। यू आर नॉट जस्ट लिसनिंग और वॉचिंग अ स्टोरी, you are a part of the story that has been unfolded in front of your eyes. तो ये जो amazing journey है world of Kalorama की, इसका आप हिस्सा बनिए। बहुत ही vibrant realm बनाई गई है और इसमें दिखाया गया कि रंग नहीं है कहानी के अंदर, और पर वो रंग आप भरेंगे, उसकी रंग और वाइटैलिटी को दूर कर दिया गया है। सो जो थ्रू आउट आपका एक्सपीरियंस रहेगा, विजिटर्स बनेंगे रेस्टोरर्स, आप रिस्टोर करेंगे, और जो रिस्टोरर्स होंगे वो सारे के सारे टास्क को फॉलो करेंगे, और जो कलर आरजीबी कलर सिस्टम है उससे इंटरेक्ट करके रीएक्टिवेट करेंगे और ओवरकम करेंगे कलर कंज्यूमिंग क्रिएचर्स को जिन्हें नाम दिया गया है मंचर्स। या मुझे रोल मिल जाता काश एक आधा ऐसा वॉइस ओवर करने का, बट एनी अल्टीमेटली रिस्टोर करेंगे आप बैलेंस को, और आपके सामने जो कहानी अनफोल्ड हो रही है उसमें डालेंगे जान, उसमें डालेंगे आप रंग, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस दैट यू कैन हैव। अभी तक आपने ऐसा, मैं नहीं मानता जिंदगी में सबने ये चीज़ देखी होगी, आधे से ज़्यादा लोगों ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ कलरवर्स एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है यार ये। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने बच्चों को लेके जाएं एंड गो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, इवन इफ यू डोंट हैव अ फैमिली हियर, बैचलर्स जाएं, मजे करें भाई। ये अपने आप में ऐसा एक्सपीरियंस है ना जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये कतर में हो रहा है अभी, इससे इसके बाद फिर ये पता नहीं कहीं हो रहा होगा। आप कह रहे होंगे वाह अंग्रेज क्या क्या करते हैं, जब आंखों के सामने हो रहा है तो प्लीज़ इसका हिस्सा बनिए। इसके अलावा जो टीम्स हैं उनके लिए है, बेसिकली जो नौजवान लोग हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनको बुलाया जा रहा है। सो यू कैन सी देम, वॉच देम पार्टिसिपेट इन दिस एंड यू कैन हैव अ लुक। जो टीन आर्ट अवार्ड्स हैं वो भी रखे गए हैं, और ये 13 से 17 साल के बच्चों के लिए। मगर इससे पहले मैं कलर वर्स के बारे में बता रहा था, वो कंप्लीट कर देता हूँ। तो कलर वर्स जो है ये एक्सपीरियंस 19 जुलाई से शुरू हुआ है और 15 सितंबर तक है। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस वन, अभी बहुत टाइम है, अभी भी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो 19 जुलाई को शुरू हुआ था और 15 सितंबर 2026 पे खत्म हो जाएगा। ये शाम के 4 बजे से रात के 11 बजे तक है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फेस्टिवल्स, तो इसका हिस्सा जरूर बने। अब जरा मैं आगे बढ़ना चाहूँगा क्योंकि जो टीनेजर्स हैं जैसे मैंने कहा वो उसके लिए इनवाइट किए जा रहे हैं, एक और चीज़ के लिए इनवाइट किए जा रहे हैं, और ये 13 से 17 साल के बच्चों के लिए इवेंट है। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट कंट्री यू बिलोंग टू, आप किसी के रेजिडेंस है, इट डज नॉट मैटर। थीम जो है, थीम रखी गई है बिलोंगिंग, और ये रिफ्लेक्ट करती है आपकी खुद की आइडेंटिटी पे, एक मेमोरी कनेक्शन बनाने के लिए, और जो कांस्टेंट कनेक्शन है बदलती दुनिया के साथ। ये थीम यंग आर्टिस्ट को मौका देती है, एक मंच देती है, स्टेज देती है ताकि वो एक्सप्लोर कर सकें व्हाट इट मींस टू बिलोंग टू अ प्लेस, टू अ कल्चर, टू अ कम्युनिटी और टू देमसेल्व्स। बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं जिनके जरिए आर्टिस्ट अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, पेंटिंग, ड्राइंग्स के जरिए, फोटोग्राफी के जरिए, वीडियोग्राफी के जरिए, डिजिटल आर्ट बनाकर, क्राफ्ट के थ्रू, फैशन के थ्रू एंड इवन AI। यू नो आपकी शहर की या मेरे शहर की एक पहचान होती है, द मोमेंट यू से इट यू नो व्हाट आई मीन। जैसे मैं बोलूँ कि बल्ली मारा तो मैं सीधा दिल्ली ले जा सकता हूँ आपको सिर्फ एक फोटो दिखा के। सो दैट फोटो और अ पेंटिंग फ्रॉम माई प्लेस विल टेक यू देयर। तो वो जो लोगों को मौका दिया है या आर्टिस्ट को मौका दिया जा रहा है, ये बड़ा कमाल का है। उससे वो इस बदलती दुनिया में भी अपने कल्चर, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डिफरेंट आर्ट फॉर्म से। और कमाल की पेंटिंग करते हैं यार ये लोग, कमाल की पेंटर्स हैं। मैंने देखे इन लोगों से, एक दो लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मेरी जो समझ है पेंटिंग की ऑलमोस्ट माइनस में होगी, बट द वे दे टेल यू अबाउट पेंटिंग्स इज जस्ट अमेजिंग। पहले मैं भी समझता था यार ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग क्या होती है, बड़ी फैंसी सी चीज़ है, बट देन आई मेट फ्यू आर्टिस्ट और जिस तरीके से वो अपने पेंटिंग्स को समझाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो कमाल का है। आई टेल यू वन थिंग, एक बंदा था, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, आई एम मेट दिस गाय, और वो इटली के थे वो, और पेंटिंग करते हैं वो, तो उन्होंने सिसिली जो इटली में है उस जगह के बारे में कुछ चीज़ें बनाई थी, एंड वो उसको दिखा रहे थे एंड ही वाज टेलिंग मी व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस और मैं इतना खो गया था, उन्होंने कहा यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि पेंटिंग को देख के ऐसा असर होगा। तो आपके भी घर में अगर आर्टिस्ट हैं एंड दे कैन एक्सप्रेस थ्रू पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डिजिटल आर्ट, इवन फैशन और AI, क्योंकि हर जगह की अलग अलग पहचान होती है, तो उनको ये मौका जरूर मिलना चाहिए। ये जो है इट ओपन्स फ्रॉम 1st of August, डेडलाइन है 1 नवंबर की, और एग्जीबिशन जो है वो लगी है पूरे दिसंबर में। तो दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड सिचुएशन जहाँ पे आपको इसका हिस्सा ज़रूर बनना चाहिए। एंड इसके अलावा जो यंग विजिटर्स हैं, देर ऑल्सो इन्वाइटेड टू कॉन्ट्रीब्यूट इन अ जायंट कोलेबरेटिव आर्टवर्क। ये बहुत बड़ा एक आर्टवर्क बनाया जा रहा है जिसमें ड्रॉ किए जा रहे हैं सेल्फ पोर्ट्रेट्स ऑन अ लार्जर पोस्टर और कलर मार्कर्स की मदद से लोग बनाएंगे। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन इंडिविजुअल ड्राइंग्स एक साथ बनेंगी और क्रिएट करेंगी एक वाइब्रेंट म्यूरियल जो सेलिब्रेट करेगा इस एक्टिविटी को। जस्ट इमेजिन हाउ क्रिएटिव कतर इज, और एक कम्युनिटी और यूथ को एक साथ लाने का ये जो तरीका है ये बड़ा कमाल का है। ये इवेंट नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में है। इट इज़ डेटेड टू बी हेल्ड ऑन 29th of August एंड सुबह के 11 से रात के 12 बजे नहीं सुबह के 11 से दोपहर के 12 तक घंटे का है, सॉरी मैंने रात बोल दिया। रात तक कौन पेंटिंग करेगा, वो मेरी ना समझी है, प्लीज इग्नोर दैट। और म्यूजियम एंट्रेंस इस वक्त इस दौरान फ्री रहेगी, तो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट दिस इज योर चांस टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ओके नाउ मूविंग ऑन, कतर ब्यूटी एंड वेलचर की तरफ बढ़ते हैं जिससे मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन बहुतों का ताल्लुक इससे हो सकता है। आप सुन रहे हैं कतर 2026 सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। बड़े ही कोलैबोरेटिव एफर्ट्स कतर में होते रहते हैं एंड स्पेशली इन जगहों पे जैसे QNCC और DECC, बहुत सारे इवेंट्स अभी आने बाकी हैं और बहुत सारे अभी चल रहे हैं, तो आने वाले इवेंट्स में ये वाला शामिल है, कतर ब्यूटी एंड वेलकेयर 2026। ये कतर में प्रीमियर होगा इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन के जरिए और ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड है ब्यूटी, वेलनेस और होलिस्टिक सेल्फ केयर पर। ये जो इवेंट है शोकेस करेगा जो नए नए इनोवेशन होते नहीं रहते उन इनोवेशंस को। अब इनोवेशंस किन किन में, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, स्किन केयर है, कॉस्मेटिक्स है, फिटनेस जुड़ी हुई चीज़ें हैं और स्पा की तो टेक्नोलॉजीज लगातार बढ़ी रही हैं, हर किसी के वहाँ पर अपना तरीका है भाई। तो स्पा टेक्नोलॉजीज, वेलनेस सॉल्यूशंस और एक डायनेमिक प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, ब्रांड्स के पास मौका है कि वो भी इन चीज़ों को अपनाएं, इनफैक्ट इनोवेट करें, एंड प्रोफेशनल्स के पास मौका है जितने प्रोफेशनल्स हैं टू कनेक्ट, कोलैबोरेट और साथ में एक साथ बढ़े। और ये जो ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है ये मिलेगी कतर के दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में DECC, और 14 अगस्त को इवेंट होगा, 14 अगस्त से इनफैक्ट शुरू होगा और 2 दिन तक चलेगा, सो 14 से 16 दिसंबर तक सुबह के 11 से शाम के 6 बजे तक, एंड एंट्री अगेन इट्स फ्री। तो डेफिनेटली जाने वाला इवेंट तो है, आपको भले ही स्किन प्रोडक्ट्स और इन सब चीज़ों को कोई लेना देना ना हो मगर टू सी समथिंग न्यू, टू सी इनोवेशंस, ये भी अपने आप में एक्सपीरियंस होता है। एंड दिसंबर में तो वैसे भी बहुत सारे इवेंट्स लाइनअप हैं, उनमें से एक ये है, सो इसको भी ना छोड़ें। इन केस आप जाएं तो जरूर हमें टैग कीजिएगा, FM 107 कतर ये हमारा पेज रहेगा। ओके अब मुद्दे की बात कर लेते हैं भाई, अब अपनी बात कर लें, आ जाओ जरा, अब आपको खाने पीने की बात बताते हैं बढ़िया वाली भाई। तो फूड कतर 2026 भी आने वाला है, यस ये तो मैंने ऐड कर दिया, यस आज ही आइए फूड कतर 2026 में। वैसे ही आने वाला है, अक्टूबर के महीने में आएगा, 2 दिन के लिए आएगा, 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में। ये जो है क्या कर रहा है, ये जितने प्रोफेशनल्स हैं ना फूड और बेवरेज सेक्टर से, उनको मौका मिलेगा कि वो एक्सप्लोर कर सकें डिफरेंट मार्केट अपॉर्चुनिटीज को और अपने प्रोडक्ट जो कटिंग एज प्रोडक्ट्स उन्होंने सालों साल तैयार किए हैं, टेक्नोलॉजीज लेके आए हैं, सर्विसेज लेके आए हैं जिससे फूड प्रोसेसिंग होती है, पैकेजिंग होती है, और अपने जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस कनेक्शंस हैं उनको शोकेस करेंगे इसी जगह दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में। बहुत बिजी रहने वाला है भाई DECC, सो अक्टूबर 12 से 14 अक्टूबर तक सुबह के 11 बजे से रात के 9 बजे तक ये इवेंट होगा फूड कतर 2026। एंड इन द फील्ड ऑफ फूड एंड बेवरेजेस आई थिंक पिछले सालों में इतना ग्रो कर गया है, देर आर मेनी मेथड्स दैट हैव बीन दैट हैव कम आउट और इतना इनोवेशन हुआ है कि इन सबको इकट्ठा एक रूफ के नीचे देखने की खुशनसीबी जो है वो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए. आप देखेंगे इस वक्त दुनिया भर में पैकेजिंग जैसे यहाँ पे होती है वैसी किसी और कंट्री में अलग होती है, वैसे कहीं और अलग हो रही होगी, इंडिया में अलग हो रही होगी. एंड ये सब देख के आपको नॉट ओनली ये जी के है वो काम आ सकता है, उसलिए नहीं है, इट जस्ट फैसिनेट्स यू, इट कीप्स यू अप.

अपडेटेड, आपका सॉफ्टवेयर अपडेटेड रहता है, आपको पता रहता है कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। तो वैसे तो अभी इवेंट में टाइम है, अक्टूबर में आएगा, लेकिन जब आएगा तो बता दूंगा। 12 अक्टूबर को है फिलहाल, इन केस यू वांट टू मार्क इट डाउन फॉर यू। सो 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर सुबह की 11 से रात के 9 बजे फूड कतर 2026। ऑलराइट, मूव ऑन करते हैं। कतर 2026। अब एक बहुत ही खास जगह है जहां पर ईमेल के जरिए आप रजिस्टर कर सकते हैं फॉर फ्री। असल में एक इवेंट होने जा रहा है दोहा एयरबेस ऑफिसर्स क्लब में। ये एक पूरे के पूरे महीने चलने वाला लॉन्ग रनिंग इवेंट है जहां पर यंग पार्टिसिपेंट्स को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, जो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये एक्टिविटीज जो फोकस करती हैं लीडरशिप क्वालिटीज पे, कि आप टीम वर्क में कैसे हैं, कैन यू लीड अ टीम और बी अ पार्ट ऑफ इट, और नेशनल वैल्यूज के साथ साथ, मतलब आप सीखते भी रहेंगे, पार्टिसिपेट करते भी रहेंगे। सो टीन हब यूथ वॉलंटियर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इनके साथ देने के लिए कतर अमीरी एयरफोर्स जो है वो रहेंगे, एंड दे विल बी गाइडेड, दे विल बी अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस लीडर्स एंड ट्रेनर्स। सो ये जो फ्यूचर फैल्कन जर्नी है ये तय करने के लिए आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। और आप कुछ जानना चाहें, पूछना चाहें, तो उन्होंने ईमेल दिया है teenhub.support@qm.org.qa। फिर से बता देता हूं, teenhub.support@qm.org.qa। वैसे लोकेशन रही है दोहा एयरबेस ऑफिसर्स क्लब, और ये इवेंट जैसे मैंने कहा पूरे महीने चलने वाला है। इसके अपडेट जैसे जैसे बीच में आती रहेंगे बताता रहूंगा। 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक शाम के 4 बजे से रात के 8 बजे। एंड इसके जो पार्टिसिपेशन का है वो ईमेल के जरिए ही है, जैसे मैंने आपको ईमेल दिया, teenhub.support@qm.org.qa। तो यस, ये कुछ मेजर इवेंट्स है जिनके अंदर पार्टिसिपेशन थोड़ा सा एक्सक्लूसिव है, बट इन केस आप किसी को जानते हैं किसी के काम का है ये इवेंट, तो उन्हें जरूर जरूर बताएं। नाउ मूविंग ऑन टू समथिंग दैट आई रियली रियली लव, और वो है सिनेमा एंड फिल्म मेकिंग। सो दोहा फिल्म फेस्टिवल वापस आ रहा है एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड यार। तो दोहा फिल्म फेस्टिवल इज रिटर्निंग और 19 नवंबर से 27 नवंबर तक। एंड इट विल बी गाइडेड बाय द बिलीफ कि सिनेमा जो है वो एक जगह बनाता है जहां पे डायलॉग्स, रिफ्लेक्शंस और कनेक्शंस बनते हैं।

0: हैं, लोकल जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने बनाई हैं, पहले भी बहुत बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में शोकेस हो चुकी हैं, एंड दिस टाइम अराउंड इट इज गोइंग टू हैपन येट अगेन. सो सबमिशंस जो चालू हो चुके हैं वो उसमें टाइम हो गया, अभी भी सबमिशन दोहा फिल्म फेस्टिवल 2026 के वो 10 मई को ओपन कर दिए गए थे. इसमें सिर्फ शॉर्ट मूवीज को मौका दिया गया, तो अगर आपके पास शॉर्ट मूवी है और आप इसमें पार्टिसिपेट करें तो उसमें कैटेगरी भी दी गई है, मेड इन कतर, उसके बाद है इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन, और फिर रखा गया है अजियाल फिल्म कॉम्पिटिशन, शॉर्ट मूवीज ओनली, जो छोटी छोटी मूवीज होती हैं, फीचर फिल्म्स नहीं. सो दोहा फिल्म फेस्टिवल इसके साथ साथ ओरिजिनल फिल्म मेकर्स को जो शॉर्ट मूवीज बनाते हैं उन्हें एक क्लियर कट क्रिएटिव विजन भी दिखाता है, और नैरेटिव डॉक्यूमेंट्रीज भी काफ़ी सारी दिखाई जाएंगी, और कुछ ऐसे काम है फिल्म मेकिंग में जो अभी भी एक्सपेरिमेंट्स के लिए स्पेशली काम कर रहे हैं. जैसे हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, क्रिस्टोफर नोलन तो भाई आईमैक्स कैमरा यूज़ करते हैं, वाह, तो क्रिस्टोफर नोलन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, दैट्स व्हाई ही कुड यूज इट. तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वर्क्स किए जा रहे हैं सिनेमा की दुनिया में, वो भी आपको जान के मज़ा आएगा कि कौन कौन से कैमराज, किस किस तरीके की फिल्म मेकिंग होने लगी है. स्टोरीज आर सो चेंजिंग, एवरी सिंगल मूवी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ फिल्म मेकिंग. एंड सारे के सारे फिल्म जो सबमिट हो जानी चाहिए और सारे के सारे क्राइटेरिया को मैच करनी चाहिए. फेस्टिवल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आप वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, दोहा फिल्म इंस्टीट्यूट जब आप टाइप करेंगे तो दोहा फिल्म फेस्टिवल के बारे में पढ़ पाएंगे. इसमें जो सिलेक्टेड वर्क्स होंगे, जो काम होगा, जो पसंद आएगा उसे कंसिडर किया जाएगा फॉर इंक्लूजन इन द फेस्टिवल, और जो ऑफिशियल प्रोग्राम है उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएगा फॉर द ज्यूरी अवार्ड्स. सो 10 मई को टाइमलाइन बताता हूँ, 10 मई 2026 कुछ महीनों पहले फेस्टिवल सबमिशन ओपन हुए थे शॉर्ट फिल्म्स के लिए. 1 अगस्त 2026 को सबमिशन डेडलाइन थी फॉर इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म्स एंड अजियाल फिल्म शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन. 1 सितंबर को सबमिशन डेडलाइन है फॉर मेड इन कतर, जो मूवीज बनाएंगे छोटी वाली, और उसके बाद 19-27 नवंबर को दोहा फिल्म फेस्टिवल पूरी तरह से शोकेस किया जाएगा. तो उसमें शॉर्ट मूवीज जो सबमिट की गई हैं, जो आने वाली हैं, एवरीथिंग विल बी शोकेस्ड इन द इवेंट. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन.
1: Qatar 2026.
0: अच्छा, आप जो है एक कमाल की शाम जो है वो एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाइए. आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड द नेम, सुहानी शाह का नाम सुना है आपने? सुहानी शाह बहुत दिनों से वायरल हो रही हैं और काफी ज्यादा इंटरनेशनल परफॉर्म भी कर चुकी हैं. सुहानी शाह कतर में परफॉर्म करने वाली हैं. तो ये क्या करती हैं, आपका सवाल होगा अगर आपने नहीं सुना है, तो ये माइंड रीडिंग करती हैं, एंड शी डज इट रियली रियली वेल. साइकोलॉजिकल इल्यूजन्स ये क्रिएट करती हैं, इंटरैक्टिव परफॉर्मेंसेस दिखाती हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ ये परफॉर्म कर चुकी हैं, और वो चैलेंज करेंगी सीधा ऑडियंस के साथ, इंटरेक्ट करेंगी आपके परसेप्शन के साथ, और यू विल बी जस्ट लेफ्ट अमेज्ड. एक थ्रिलिंग लाइव शो होने वाला है फिल्ड विद मिस्ट्री, एंटरटेनमेंट एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स. इसके लिए एंट्री जो होगी, आपको एक वैलिड खतर आईडी चाहिए और ड्रेस कोड कैजुअल चाहिए, अबायाज आर परमिटेड ऑफ कोर्स, और चिल्ड्रन जो 5 साल के हैं और उससे नीचे के हैं उनके लिए फ्री ऑफ चार्जेस, तो नो चार्ज फॉर देम एट ऑल, और कोई सेपरेट सीट नहीं है. इट मस्ट बी सीटेड ऑन द पेरेंट और गार्जियंस लैप, तो कोई अलग से सीट नहीं मिलेगी, बट उनके लिए फीस नहीं लगेगी. और फूड और बेवरेजेस स्टॉल्स इसके वेन्यू पे लगाए जाएंगे. वेन्यू जो है वो रखा गया है कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर, QNCC हॉल नंबर 1. और ये इवेंट बस होने वाला है, एक महीना बचा है. ये इवेंट होगा 25 सितंबर 2026 को शाम के 5 बजे से 7 बजे तक. सुहानी शाह के बारे में पहले आप देख लीजिएगा, इनके बहुत सारे वीडियोस हैं ऑल ओवर द इंटरनेट, एंड शी हैज डन अ ग्रेट जॉब इन माइंड रीडिंग. एंड जैसे मैंने कहा, शी इज मेकिंग ऑल द इंडियंस प्राउड. इन्होंने इंटरनेशनली भी काफी काम किया है, तो जरूर जरूर देखिएगा इन केस यू गेट इंटरेस्टेड. तो ये इवेंट जैसे ही करीब आएगा वैसे ही मैं अलार्म बजा के आपको बता दूंगा. ठीक है जी, आगे बढ़ जाए हम. तो ऐसे ही इवेंट्स में अगर आप भी जाते हैं, हिस्सा बनते हैं, तो हमें भी जरूर जरूर बताएं. वी वुड लव टू नो कि कौन कौन से इवेंट का हिस्सा आप बने हैं. अच्छा, इसके अलावा ये कागज क्यों जारी होगी आपको, माजरत चाहता हूँ, इस पर लिखने पड़ते हैं ना इवेंट्स आपको बताने के लिए, जो कि छूट ना जाए भाई, इतनी तगड़ी मेमोरी को नहीं भाई हमारी. तो कतर नेशनल लाइब्रेरी जो है वहां पर ही बहुत कुछ है. यहाँ पर बुक चैट वर्कशॉप रखा गया है, और ऐसे नहीं कि बस आपस में बात कर लो भाई देख लो, नहीं, इसमें एंगेजमेंट के लिए एक ऑथर भी हैं, रूबी कपूर, जो पार्टिसिपेट करेंगी. वही उन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा जो वर्कशॉप है वो रखा गया है. एंड उनकी एक किताब है जिसका नाम है लेट्स टॉक अबाउट लाइफ. ये एक टाइमलेस हैंडबुक है, एक किस्म का जर्नल है जो डिज़ाइन किया गया है. पर्सनल स्पेस के बारे में बात करता है ये, जो जो कहते हैं ना लोग, I want my space.

0: आई वांट माय पर्सनल स्पेस, उस पे बात करता है, रिफ्लेक्ट करता है पॉजिटिव थिंकिंग पे, और एक इंगेजिंग कॉन्वर्सेशन की जाएगी वहां पे एक वर्कशॉप के थ्रू विच विल बी गाइडेड बाय जर्नलिंग एक्टिविटीज. आपको सिखाया जाएगा जर्नल कैसे बनाते हैं. पार्टिसिपेंट जो है वो एक्सप्लोर करेंगे पर्सनल ग्रोथ की थीम्स पे, माइंडफुलनेस पे, ग्रेटिट्यूड पे, और एक चीज होती है फाइंडिंग पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग दैट यू सी, उस बारे में भी बात की होगी इस वर्कशॉप के जरिए. डेफिनेटली जब आप निकलेंगे तो यू फील रियली रियली नाइस. ये इंटरेक्टिव सेशन जो है बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है, और ये ऑथर से तो जोड़ेगा ही, उनकी किताब से भी जोड़ेगा, पर आपको भी अपने आप से जोड़ेगा जरूर. सो कतर नेशनल लाइब्रेरी में इवेंट होगा, और ये इवेंट रखा गया है 29 अगस्त को शाम 4 बजे से 6 बजे तक. इसके लिए भी कोई टिकट्स की ज़रूरत नहीं है. कतर नेशनल लाइब्रेरी का आपके पास ऑफकोर्स पास होगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी, तो ज़रूर ज़रूर इसका भी हिस्सा बने. एंड ऐसे इवेंट का हिस्सा बनना भी अपने आप में एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज हार्डली हम लोग इन चीज़ों में जाते ही हैं, और जब जाते हैं लगता है यार वो बढ़िया था यार. तो अगर आप ये कहना चाहते हैं यार बहुत बढ़िया चीज़ थी पहली मरतबा देखी, तो ये ऐसे इवेंट जिनका हिस्सा बन सकते हैं, स्पेशली दोज हु रीड बुक्स. आपको तो जाना ही जाना चाहिए. ठीक है, मूविंग ऑन. Qatar 2026. So 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum जो है वो स्टूडेंट्स के लिए काफी कुछ कर रहा है, काफी सारे इवेंट्स हो चुके हैं और काफी सारे इवेंट्स होने वाले हैं. तो अभी जो हो रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं. स्टूडेंट्स के लिए पार्टिसिपेशन, एंगेजमेंट, एजुकेशनल गेम्स सारे तैयार किए गए. हर एक स्टूडेंट को स्पेशल एक्टिविटी का हिस्सा बनाया गया, और एक कार्ड भी दिया गया, इमेज ऑफ म्यूजियम ऑब्जेक्ट, साथ में बहुत सारे सवाल भी दिए गए और बहुत अच्छे अच्छे मौके दिए गए ताकि वो अपने आप को एक्सप्लोर करें. और जो एग्जीबिशन है ये पूरी तरह से उनके लिए हो, तो वो हर सवाल का जवाब दें, उनका जो विजन है वो बड़े जिंदगी को लेके, कतर को लेके. और जब टास्क कंप्लीट हुए तो हर पार्टिसिपेंट के कार्ड को स्टैम्प किया गया विद द टाइटल ऑफ म्यूजियम एक्सप्लोरर. ये एक किस्म का रिकग्निशन है जो म्यूजियम की तरफ से बच्चों को दिया जा रहा है फॉर देयर एंगेजमेंट एंड अचीवमेंट, जो कि एक बड़ी कमाल चीज है. इट्स सच अ क्यूट थिंग टू डू, बहुत बढ़िया है. अरे ऐसे क्यूट चीजें करते रहा करो, मेरे को भी दे दो ये. तो डेट्स इसकी रही हैं 3, 4, 10, 12 अगस्त. अभी तो सारी की सारी निकल गई हैं, एक बचा है बस इवेंट 12 अगस्त वाला, तो उसका आप हिस्सा बन सकते हैं सुबह के 10 से रात के 12 बजे तक, सॉरी दोपहर के 12 बजे तक. मैं पीएम ईएम में कंफ्यूज हो जाता हूँ, प्लीज माफी. सुबह के 10 से दोपहर के 12, ठीक है. और ये होगा 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अनदर वन. Qatar 2026. MIA की तरफ आ जाते हैं. म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट लाइब्रेरी जो है इसकी फिल्म क्लब, वो इनवाइट करती है सिनेमा के दीवानों को, मुझसे बात हो रही है यहाँ पे, टू एक्सप्लोर इस्लामिक आर्ट कल्चर एंड हिस्ट्री थ्रू सिलेक्टेड फिल्म्स. बहुत सारी फिल्म्स ऐसी होती हैं जो आपको एराज मिल जाती है, और इस महीने अगस्त के महीने क्या फिल्म चुनी है भाई, जोधा अकबर. वो भी मेरे बर्थडे के दिन हो रहा है भाई ये इवेंट, एंड दे आर ऑफरिंग सिनेमेटिक पर्सपेक्टिव हर एक चीज़ पे, चाहे वो हेरिटेज हो, आइडेंटिटी हो, कल्चरल रिचनेस हो, इस्लामिक वर्ल्ड की, वो उसमें शोकेस की जाएगी. और साथ में जो आपके फेलो फिल्म एंथुजियास्ट हैं, आप हैं, आपके दोस्त होंगे, सबके सब इसका हिस्सा बनेंगे, और एक हिस्टोरिकल एपिक को सेलिब्रेट करेंगे फिल्म लाइक जोधा अकबर. तो म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट मेरे बर्थडे के दिन यानी 30 अगस्त 2026 को शाम के 5 बजे से 6 बजे तक, 1 घंटे का ये इवेंट है, बहुत बहुत खास होने वाला है. एंड अगेन रजिस्ट्रेशन इज फ्री, एंड आई एम सो हैप्पी दैट इट्स फ्री. बर्थडे के दिन खर्चा कौन करे. थैंक यू सो मच कतर फॉर ऑल दीज यू नो अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज. तो ये था भाई कतर 2026. अगर आपके पास भी कोई इवेंट है, आप कहीं घूम फिर के आए हैं, हमें जरूर जरूर बताएं. जैसे मैंने कहा स्टेकेशंस के मामले में बहुत सारे ऑफर्स हैं, बहुत सारे होटल्स, रिजॉर्ट्स, इवन रेस्टोरेंट्स आर गिविंग अवे अ लॉट ऑफ ऑफर्स, जिसमें बूफेज शामिल हैं, जिसमें पार्टीज, थीम पार्टीज, जैसा मर्जी आप चाहें कर सकते हैं. और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं. प्लीज़ हमसे भी जुड़ें और किसी भी जगह पर जाएं, और आपको लगता है कि ज़रा बताऊँ तो सही कबीर को कि उसके बताने के बाद में गया, या फिर मैं चढ़ा तो दूँ कि कबीर यहाँ पे नहीं गया, तो ज़रूर टैग कीजिएगा. एंड आई वुड लव टू सी योर टैग्स. सो FM107 Qatar, FM107 Qatar. इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ. तो कबीर आपसे ज़्यादा चाहेगा, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं. मास्सलाम.
1: Qatar 2026. FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 448

0: 888-8808-06 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: हर मंडे सुबह 10 बजे से आज नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
4: आप सुन रहे हैं FM 107।
5: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। अस्सलाम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कतरी गोल्फर दानील सोकोलोव के बारे में। यहां दोस्तों, कतर के उभरते हुए गोल्फर दानील सोकोलोव ने पिछले दो सालों में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से मुल्क का नाम रोशन किया है। सिर्फ कम उम्र में उन्होंने अरब और इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट्स में कई यादगार कामयाबियाँ हासिल की। 2024 में उन्होंने अरब जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इंटरनेशनल सीरीज कतर में दुनिया के मशहूर गोल्फर्स के साथ खेलकर कीमती तजुर्बा हासिल किया। सन 2025 उनके लिए और भी कामयाब साल साबित हुआ। दानील ने पैन अरब जूनियर चैंपियनशिप के खिताब अपने नाम किया और बाद में जॉर्डन ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीतकर कतर के लिए एक तारीखी कामयाबी हासिल की। इसके अलावा वो US जूनियर अमेचर चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले चंद कतरी गोल्फर्स में शुमार हुए जो उनके रोशन मुस्तकबिल की निशानी है। दानील सोकोलोव की मेहनत, डिसिप्लिन और लगातार बेहतरी ने उन्हें कतर के सबसे बाउमीद यंग गोल्फर्स में शुमार कर दिया है। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर वो इसी तरह परफॉर्मेंस देते रहे तो मुस्तकबिल में एशियन और दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेशनल गोल्फ टूर्स में कतर की नुमाइंदगी करते नजर आ सकते हैं। उनकी कामयाबियां कतर में गोल्फ के फरोग और नई जनरेशन के प्लेयर्स के लिए एक ह्यूज इंस्पिरेशन है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और अजीम खिलाड़ी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107। FM 107
2: दिल से देसी।
3: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है।

0: रास्ते ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं, रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
4: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम एक नहायत ही अहम मौजू पर बात करेंगे, यानी इब्तदाई तिबी अमदाद या फर्स्ट एड। हादसात और हंगामी हालात किसी भी वक्त और किसी भी जगह पेश आ सकते हैं। ऐसे मौकों पर हर वक्त और दुरुस्त इब्तदाई जो इमदाद है, किसी की जान बचाने या मजीद नुकसान से बचाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। फर्स्ट एड से मुराद है वो फौरी मदद है जो किसी जख्मी या बीमार शख्स को पेशावराना जो तिबी इमदाद है पहुंचने से पहले दी जाती है। फर्स्ट एड या इब्तदाई तिबी इमदाद के बुनियादी उसूल कुछ हैं। वो ये कि खुद को और मुतासर शख्स को महफूज रखिए, घबराने के बजाय पुरसकून रहिए, सूरत हाल का जायजा लीजिए, जरूरत पड़ने पर फौरी तौर पर इमरजेंसी सर्विसेज से राबता कीजिए। अगर किसी शख्स को चोट लग जाए और ब्लीडिंग होने लगे तो साफ कपड़े या पट्टी से जख्म पर प्रेशर डालिए। जो जख्मी हिस्सा है उसको मुमकिन हो तो दिल की सतह से बुलंद रखिए, और अगर ब्लीडिंग ना रुके तो फौरी तिब्बी इमदाद हासिल कीजिए। अगर किसी का हाथ या जिस्म का हिस्सा जल जाए तो मुतासर हिस्से को 10 से 20 मिनट तक ठंडे पानी के नीचे रखिए। बर्फ बराह रास्त इस्तेमाल ना कीजिए, जलने वाली जगह पर टूथपेस्ट, घी या जो दीगर घरेलू अशिया हैं वो लगाने से गुरेज कीजिए। शदीद जलन की सूरत में फौरन डॉक्टर से रजू करिए, और अगर नाक से खून आना शुरू हो जाए तो सीधे बैठ जाइए, सर को हल्का सा आगे की तरफ झुका लीजिए, नाक के नर्म हिस्से को तकरीबन 10 मिनट तक दबाइए, सर पीछे ना झुकाइए क्योंकि खून हलक में जा सकता है। याद रखिए, दुरुस्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद मरीज की हालत को मजीद बिगड़ने से बचा सकती है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियां मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है।

लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकता, सबको लेकर ही कुछ करना है। तो माशरे में अगर आप कोई इस्लाहाना काम करना चाहें तो इसलिए भी आपको, उसके लिए भी आपको जमात की ज़रूरत होती है। एक मजमुआ मिलकर जब काम करेंगे तो फिर वो आगे इस तरह बढ़ सकते हैं। तो इस सिलसिले में सबसे बड़ी बात ये होती है कि सोच को बदलना, फिर आगे जाकर आप लोगों को उस सोच के बिना पर, क्योंकि तहरीक तो सिर्फ ये नहीं कि आप तकरीर कर ली और ये वो, आज मैंने कोई तकरीर कर ली और फिर 10 लोग जमा हो गए और फिर बस हमारे यहाँ जिस तरह के आप देखेंगे मुख्तलिफ मुजाहरे वगैरह होते हैं, तो लोग इस तरह तकरीर वकरीर करके लोगों को थोड़ा बहुत इकट्ठा करके निकलते हैं, लेकिन जब थोड़ा वो मुजाहमत आ जाए तो सारे अपनी अपनी जगह अपने अपने ठिकाने की तरफ भाग जाते हैं। तो देखिए मसला ये है कि तकरीर के बिना पर तो हम यानी आपस में मजमुआ और ये जमात वाली कैफियत बाकी नहीं रह सकती। सोच के बलबूते पर, सोच की क़ुव्वत पर, और ये जब क़ुव्वत ये इकट्ठे होंगे तब जाकर हम एक इस्लाह, ये मुआशरे की सतह पर हम वो इस्लाह के अमल को वजूद में ला सकते हैं और सब मिलकर आगे बढ़ सकेंगे। तो आज के दौर के जो चैलेंजेस हैं वो तो जैसे कि माल और शोहरत के हवाले से है कि हर कोई चाह रहा है कि वो माल ज़्यादा कमाए, हर किसी की ये तमन्ना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत हासिल करे। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिस तरह आपको शोहरत के हवाले से एक वो एक नया जाविया खोला है, क्योंकि पहले लोग इतने मशहूर नहीं हो पाते थे, वो काफ़ी समाजी तौर पर काफ़ी जो बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने के बिना पर, या फिर यानी मुस्बत माने में हो या मनफी माने में हो, वाकई ज़िंदगी में अगर वो कोई इस तरह के कारनामे या किसी भयानक किस्म के कोई इस तरह का कोई काम अंजाम दिया होता है तो फिर उसकी शोहरत होती थी। यहाँ तक कि जितना मैं जानता हूँ पहले बड़े बड़े डाकुओं के नाम भी मशहूर होते थे, हाँ वो इतना बड़ा डाकू है, इतना बड़ा वो है। लेकिन इस दौर में शोहरत ये काफ़ी आसान एक बात बन गई है, हर कोई जो है ना कुछ भी सोशल मीडिया कोई पेज खोल ले और ये कर ले वो कर ले और ये फजूल के कामों में मुब्तला रहे और काफ़ी लोग इसमें मज़ा भी लेते हैं और मशहूर हो जाते हैं। तो ये है कि अब शोहरत हर किसी को मिल रही है, यानी थोड़ी कोशिश रहती है, फजूल कामों से शोहरत मिल जाती है ये वो। तो शोहरत और माल ये चैलेंज बन गए हैं इस दौर में। शोहरत के बिना पर फिर माल भी यानी अक्सर व बेशतर अब मिल रहे हैं, चूँकि जितनी शोहरत हो रही है इस तशहर के बिना पर वो सोशल मीडिया के वो आपको पे भी कर रहे हैं और पैसे भी मिल रहे हैं। तो अब ये जो एक गलत यानी चैलेंजेस आ गए हैं तो इनको हम कैसे, इनका कैसे मुकाबला करें, ये हमारे इस दौर के चैलेंजेस हम कह सकते हैं। आगे जाके फिर ये रहेगा कि माल और शोहरत वो कोई चैलेंज नहीं रहेगा, वो कुछ अलग किस्म का मसला आ जाएगा, क्योंकि माल इतना ज़्यादा हो जाएगा, शोहरत इतनी यानी तीखी बात हो जाएगी कि बस अब लोग उससे भी यानी किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे, उससे दूर भागने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल एक मोमिन, एक मुसलमान अगर वो ईमान का दावा करता है तो कुरान उससे फरमाता, कुरान उससे मुखातिब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इदा दआकुम लिमा युहयीकुम, ए ईमान वालो अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो जब वो तुम्हें उस चीज़ की तरफ बुलाएं जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शती है, इदा दआकुम लिमा युहयीकुम। तो यहाँ देखें ये काफ़ी एक अहम नुक्ता है कि ज़िंदगी सिर्फ ये नहीं कि सांस लेना, एक इंसान चल फिर रहा है, खा रहा है, सोता है, काम कर रहा है, मगर फिर भी अंदर से मुर्दा हो सकता है। एक मोमिन शायद वसाइल में कमज़ोर हो मगर उसका दिल ज़िंदा है, ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह को जानता है, उसके पास मकसद है, उसके पास ज़िक्र है, उसके पास अमल साल है, उसके पास ये एहसास है कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरे लिए नहीं और यही हकीकी हयात है। जैसे कि अल्लाह सुब्हान तआला ने एक आयत में यह भी फरमाया, ओ मन कान मैतन फहयैनाहु وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها।

में जिसकी जिसका गलबा है उसी की बात सुनी जाएगी, और जो इससे यानी पीछे है उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। मामला इस हद तक पहुंच जाएगा और आज पहुंच भी गया है। आज जो मुख्तलिफ मुल्क हैं यानी यहाँ एआई के हवाले से जो जितना आगे है उस पर यानी उसको लोग मुख्तलिफ उमूर में हर यानी तमाम तर दुनियावी पहलू में लोग उसका एहतराम करते हैं क्योंकि वो एआई में आगे है। जो एआई में पीछे है तो उसकी जो है ना उतनी कीमत नहीं जितना होता है, वो वतन और मुल्क जितना भी बड़ा क्यों ना हो यानी जोग्राफियाई हैसियत से। तो बड़ी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है जितना ये शऊर है कि ख़तरा काफ़ी बड़ा है, बड़ा ख़तरा है, बहुत ही यानी बड़ा ख़तरा है अगर हम इसको सही से इस्तेमाल न करें और इसके सही अवकात को न समझें तो मामला जो है ना आहिस्ता आहिस्ता और भी ज़्यादा बिगड़ेगा। आज जिस तरह हम इस ज़िंदगी में जी रहे हैं, हमें जब वाकई ज़िंदगी में पता लगता है कि हाँ कोई इस तरह के गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, भाई इसको रोकने के लिए हम कैंपेन करें, ये करें वो करें, लेकिन आज वो इंसान की तरह सोचने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो अगर एआई ही ख़ुद बहुत कुछ कह रही है और वो ख़ुद अपने से सोच रही है, और यहाँ तक कि वो 100% तो नहीं कहेंगे लेकिन अगर देखा जाए तो 80% तो हम कह सकते हैं कि वो सब तो इतने ज़हीन नहीं होते, लेकिन इस सोशल मीडिया की मदद से अब 80% लोग जो कहने की सलाहियत ही नहीं रखते थे या फिर उस बातों को उस तरह पेश करने की सलाहियत नहीं रखते थे, तो वो आज और भी उम्दा तरीके से कह रहे हैं। तो पता ही नहीं चल रहा कि यानी यहाँ असल हाकिमियत किसकी है, ये पता ही नहीं चल रहा कि ये चीज़ वाज़ह है कि नहीं, क्योंकि इन लोगों की हकीकी ज़िंदगी में अगर हम इनसे आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई शख्सियत कुछ और ही है, लेकिन चूँकि एआई की सपोर्ट में वो बाद में कह रहे होते हैं तो वो शख्सियत कुछ और निकलती है सोशल मीडिया के बिना पर। तो गोया कि एआई हाकिम हो गई ना इस सिलसिले में, अब लोग एआई के पीछे छुप रहे हैं, हर चीज़ एआई के थ्रू से हो रही है, तो आगे जाके मामला जो है ना हम इब्तिदा में जब एआई आई थी तो लोग कुछ यानी इसमें शर्मिंदगी महसूस करते थे कि हाँ एआई से लेकर उसने ये किया, एआई से लेकर उसने वो किया, एआई से। अब भाई ये बात नहीं रही, ख़त्म ये मामला, अब एआई यूज़ करना ही नहीं, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी का तकाजा बन गया है। ये आगे जाकर अब एआई के अलावा अगर कुछ कहेंगे तो लोग कह रहे बेवकूफ़ तुम्हारे पास एआई के कितने वसाइल मौजूद है, अरे देख लो ना वहाँ से सही तौर पर सही चीज़ बताओ हमें, यानी अपने बात को और भी वजनी बनाकर एआई का सहारा लेकर बताओ। अब तुम अपनी तरह एक कुछ भी कह रहे हो, तखमीना लगा के अंदाज़ा लगा के, हालांकि उससे बेहतर अंदाज़ा लगा के एआई कह सकती है, ठीक है ना। आप ऐसे बैठे हैं बग़ैर किसी मुताले के, अगर आप कोई बात करने जाएं तो आप उतनी गहराई से बात नहीं कर पाएंगे जितना वो एआई, एआई के मुताले पर तो हम डिपेंड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो जितना कहता है उस पर जो यानी काफ़ी उसकी हैसियत है, तो इस वजह से यानी वो शर्मिंदगी भी चली गई, वो अब मौजू एहसास कम तरीने रहती है कि मैं एआई से देखकर कुछ कह रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ बाकी भी नहीं रहेगी। तो हम अपने आप को, अपने ज़हनियत को, अपने सब कुछ को, हाँ जो एआई से भी बढ़कर जिनकी आईक्यू है वो तो है, हाँ इंसान को तो वो बीट नहीं कर सकता, जितना भी ऊपर चला जाए जका इस तरह वो आर्टिफिशियल ही है, हाँ लेकिन एक हद तक यानी जैसे 80% लोगों के जहन पर अगर वो हावी हो और उनके सलाहियत को वो बीट कर सके तो इट मीन्स मेजोरिटी जो है ना उसकी हाकिमियत को तस्लीम कर रही है, और उसके बिना पर जो है ना आपके साथ बात करें, आपके साथ वो मुख्तलिफ डिस्कशन पे आ रहे, तो ये पता चलता है कि यानी ख़तरा कितना ज़्यादा है, ख़तरा कितना ज़्यादा है आगे। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, ये बार बार इसका जो है ना हमें सही जायज़ा लेना है। जैसे देखें अगर हम इसको मिसाल के तौर पर इस यानी इस बात को मद्दनज़र रखें कि मुख्तलिफ जो वायरस

वगैरह, तो इसके लिए वैक्सीनेशन वगैरह नए नए जो है ना वो क्या कहते हैं इसको, अरे कोरोना के ज़माने में हमने लिया था वो वैक्सीन वगैरह लेते हैं, तो नई नई वैक्सीन आती है ना। अच्छा, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एआई हम यूज़ करेंगे इस दौर में। अब चूंकि शोहरत का दौर है, तो इस शोहरत के दौर में यानी मैं तो ये कहूँगा कि अब माल से बढ़कर शोहरत तलब, लोग शोहरत तलब हैं ज़्यादा। तो शोहरत के लिए कि क्या वैक्सीन है आपको इस सिलसिले में सोचना है, और उस वैक्सीन ये लगवानी है हर किसी को, यानी अपने बच्चों की तरबियत में इसका ख्याल रखना है, वो इम्यूनिटी तैयार करनी है। इम्यूनिटी कहते हैं ना मनात, मुदाफात की कुव्वत। तो ये हर हम अपने अंदर इसके सतह को बढ़ाएं और समझने की कोशिश करें कि हम इसको किस तरह वो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार रखते हुए, अपने मबादे अपने उसूल को बरकरार रखते हुए हम ख़ुद भी आगे बढ़ें और बच्चों की तरबियत में अपने जो माशरा है उसके इस्लाम में उस तरह जो है ना मुहतात रहें और एहतियाती इकदामात, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है, और कुरानी जो हमारे पास जो रहनुमाई है वो तो मैं शुरू से इस प्रोग्राम के शुरू से मैं कह रहा था कि कुरान तो कहता है कि मारिफत, अल्लाह की मारिफत के हवाले से और इबादत का जो एक खला है अपने दिल की सुकून के लिए, ये आपकी यानी बेहद ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। चूँकि देखें आप यानी मुख्तलिफ चैलेंजेस आएंगे और तसव्वुर बदलेगा, आज शोहरत तलब लोग हैं, कल जो है ना कुछ शोहरत उनकी अपनी ज़ाती शख्सियत तक महदूद नहीं रहेगी, तब आ जाएगा हर किसी के पास अपना रोबोट होगा, अपने यानी पहले जिस तरह यानी लोगों के पास जब बड़े बड़े मालदार होते थे उनके आसपास काफ़ी खादिम वगैरह इस तरह बैठे होते थे चारों तरफ, और यहाँ तक कि उनके पास अपने मुशीर भी होते थे जो माली और मुख्तलिफ मैदान में उनको मशवरा देते थे। आगे जाके ये होगा कि एक के पास दो तीन रोबोट्स होंगे और वो उन्हें मशवरा देगा और ये करेगा वो करेगा। तो जिसके जिसके पास जितने रोबोट हैं, जितने वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा है, तो वो ज़्यादा कवि कहलाएगा, वो ज़्यादा स्ट्रांग कहलाएगा। तो इस तरह जब हम यानी इस हालत तक पहुंच जाएंगे, तब तो मामला आहिस्ता आहिस्ता यानी वो सवाल पैदा हो जाएगा जो इंसानियत के हवाले से, कि पहले इंसानियत ग़ुलामियत के दायरे से जो इस्लाम ने निकाला है, अब रोबोट को ग़ुलाम बनाना शुरू कर, ये वो इसकी बात आ जाएगी, या फिर रोबोट के ग़ुलाम हो जाएंगे। तो मामला कहाँ जा रहा है इसको समझने की कोशिश करें और इस चैलेंजेस के हवाले से अपने इकदाम करें। अल्लाह सुबहान तआला हमें तमाम फितन से दूर रखें। तो सामिन कराम यानी मज़बूत ईमान वाला इंसान जो है ना उसके दिल में ये सवालात होते हैं कि क्या जो भी मैं कर रहा हूँ मेरे उसूलों के मुताबिक है, क्या ये अल्लाह को पसंद है। तो वो जो है ना अपने बाहर की आवाज़ों से, दुनिया की आवाज़ों से पहले इस्लाम की मीज़ान को देखता है। तो ये बात नहीं, मतलब नहीं कि हर नई चीज़ गलत है, इस्लाम नई चीज़ का दुश्मन नहीं, मसला सिर्फ ये कि इंसान के डायरेक्शन कौन तय कर रहा है इसको वो क्लियर कर ले। क़ुरान तय कर रहा है या सिर्फ अक़ल, यानी क़ुरान और अक़ल को तो हम दो तजाद इस पहलू पर नहीं ला सकते, क्योंकि क़ुरान अक़ल की ही बात करती है, लेकिन ये कि जो चीज़ हमारे महदूद अक़ल में ऐसी कोई बात अगर समझ में आ जाए या फिर ऐसा लग रहा हो कि वो सही है जो कुरान के ख़िलाफ़ हो, तो समझना चाहिए कि हमारी महदूदियत की वजह से है, वरना तो फिर अक़ल की बात तो वही है जो कुरान कहता है। और इसी तरह यानी ट्रेंड के सिलसिले में सिर्फ ट्रेंड पर चलने की जो एक वो एक हमारी एक नज़गा है, नज़गा यानी वसवसा है, और ये चलने के लिए अपने हर वक्त हम मुतहर्रिक रहते हैं, तो ये बहुत गलत है। ट्रेंड पर और लोगों की बातों पर ये ज़िंदगी अगर हम इस तरह गुजारेंगे तो कभी भी वो हमें सही सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रेंड आज कल दो फिर तीसरा चौथा इस तरह एक के बाद दूसरा आता जाएगा, लेकिन आखिर आपको चैन और सुकून कहाँ मिलेगा आपको,

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन इकराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामिन किराम, आज हम अक्सर कहते हैं कि मैंने इतने पारे पढ़ लिए, मैंने इतनी मरतबा कुरान ख़त्म किया, ये यकीनन बायस अजर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात नमाज में सिर्फ एक ही आयत दोहराते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। वो आयत थी इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अगर तू उन्हें अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं और अगर तू उन्हें माफ़ फरमा दे तो बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। सोचिए सामने किराम, पूरा कुरान आप सल्लम को पढ़ना आता था, याद था, लेकिन एक आयत ने आपके दिल पर ऐसा असर किया कि पूरी रात उसी को दोहराते रहे। यही तदब्बुर है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, कुरान को शेर की तरह तेज़ी से न पढ़ो,

और न खजूर के दानों की तरह जल्दी जल्दी बखेर दो, बल्कि उसके अजायब पर ठहरो, उसके जरिए दिलों को हरकत दो, और तुम में से किसी की फिक्र सिर्फ सूरत खत्म करना न हो। कितनी खूबसूरत नसीहत है सामने कराम। हमारी तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझसे क्या फरमा रहे हैं। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ़ुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मअ सलामा।

ويسألونك عن

0: सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामीने किराम, खाना हमेशा दाहिने हाथ से खाना चाहिए। खाना खाने के लिए बायां हाथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता पीता है और मुसलमान जब बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो शैतान उसके खाने में शरीक हो जाता है, और जब वो बाएं हाथ से खाए पिए तो शैतान के मुशाबे हो जाता है। उसकी दलील अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी बाएं हाथ के साथ हरगिज़ न खाए न बाएं हाथ से पिए, क्योंकि शैतान बाएं हाथ के साथ खाता है और उसी के साथ पीता है। रावी हदीस कहते हैं कि नाफ़े रहमतुल्लाह इस रिवायत में यह भी इजाफा करते थे, न बाएं हाथ से कोई शय ले न बाएं हाथ से कोई शय दे। सामने कलाम, ताज्जुब खेस बात यह है कि शैतान को घरों में दाखिल होने, वहां रात बसर करने और अहले खाना के खाने पीने में शरीक होने का बहुत शौक है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब आदमी अपने घर में दाखिल होता है, वो दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान अपने साथियों से कहता है, तुम्हारे लिए यहाँ न रात बसर करने का ठिकाना है और न रात का खाना है। जब वो घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेता तो शैतान अपने साथियों से कहता है, तुम्हें रात बसर करने का ठिकाना मिल गया है। जब वो खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेता तो शैतान कहता है, तुम्हें रात बसर करने का ठिकाना भी मिल गया और रात का खाना भी। रिवायत है सही मुस्लिम की।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
4: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है जल्दी माफ करने की अहमियत के बारे में। माफ कर देना एक ऐसी खूबी है जो दिल को हल्का और जिंदगी को आसान बनाती है। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों को दिल पर लेकर बैठ जाते हैं और अंदर ही अंदर टेंशन और दुख का सबब बनता रहता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि माफी देना बदला लेने से ज्यादा बेहतर है। जब हम किसी को माफ कर देते हैं तो असल में हम अपने आप को आजाद कर लेते हैं। जल्दी माफ करने वाला इंसान ज्यादा सुकून में रहता है और उसके रिश्ते भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। हर किसी से गलती होती है, इसलिए दूसरों की गलतियों को इग्नोर करना और उन्हें समझना जरूरी है। आज का अमल ये है कि किसी एक शख्स को दिल से माफ कर दें और अपने दिल को हल्का करें। आज का मैसेज, आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 1।

0: 107 पर। मैं हूं आरजे मावश, फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने किराम, आज हम एक ऐसे दुआ पर बात करेंगे जो हर मुसलमान की दिल की गहराइयों से निकलती है। वालिदैन के हक और उनके अजीम कुर्बानियों की याद दहानी है इस दुआ में, और इस दुआ का जिक्र कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में आया है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझे मोहब्बत व शफ़क़त से पाला है। अमीन कराम, इस दुआ के दो पहलू हैं। एक तो हमें अपने माँ बाप और वालिदैन के लिए भी इस तरह की दुआएं ज़रूर करनी चाहिए, साथ साथ हमें अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से भी वो ख्याल रखना है कि ये बड़े होकर मुझे यही दुआ करेंगे मेरे लिए, तो मुझे भी रहमत के साथ, शफ़क़त के साथ, सब्र के साथ इनकी तरबियत करनी है, इनके साथ रहम करम का मामला करना है। वैसे अमूमी तौर पर, फितरी तौर पर माँ बाप हर कोई अपने बच्चों के साथ शफ़क़त और नरमी का ही मामला करता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम भी कुछ ज़्यादती कर लेते हैं, तो उस वक्त हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस दुआ को याद रखें कि भाई हम जैसे ही मामला कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे लिए यही दुआ करेंगे। रब्बी, ए रब, ए मेरे रब, यानी वो ज़ात जिसने मुझे पैदा किया, पाला और नेमतें अता फरमाई, इरहमहुमा, वालिदैन पर अपनी ख़ास रहमत फरमा दुनिया में भी और आखिरत में भी, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला, मेरी ज़रूरियात पूरी की, मेरी तकलीफ़ें बर्दाश्त की और अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके मेरी परवरिश की। तो सामने किराम, वालिदैन के एहसानात का बदला देना तो मुमकिन नहीं, तो उनके लिए हर वक्त हमारी तरफ से सबसे बड़ी खिदमत यही हो सकती है कि उनके लिए हम रहमत और मग़फ़रत की दुआ करते रहें, सेहत व आफ़ियत की दुआ करें, और मग़फ़रत के हवाले से वालिदैन के लिए काफ़ी सारे ऐसी दुआएं आई हैं क़ुरान में जहां मुख्तलिफ क़िस्सों में मुख्तलिफ तरीक़े से वालिदैन के लिए बिलख़ुसूस दुआ का ज़िक्र है। तो सामने किराम, इस दुआ का जो तरबियती पहलू है, इस पर मैंने पहले भी कहा कि यहाँ कुरान ने इंसान को उसकी तफूलियत याद दिलाई कि जब वो बिल्कुल बेबस था, वालिदैन ने उसकी हर ज़रूरत पूरी की, तो यहाँ हर एक के लिए बचपन की याद दहानी है ताकि हम अपने बड़ों के साथ सही मामला करें। जब वालिदैन ज़ईफ़ हो जाए, उनकी तबीयत में कमज़ोरी या चिड़चिड़ापन आ जाए, तो भी उनके साथ शफ़क़त, एहतराम और सब्र का मामला करना ज़रूरी है, ख़ुसूसन उनके बुढ़ापे के ज़माने में इसकी अहमियत तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वालिदैन की खिदमत और उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना, हुस्न सलूक करना, तो ये दुआ हमें कई कीमती सबक देते हैं। इसमें वालिदैन की खिदमत की बात आई है, कुरान ने बराह रास्त दुआ के ज़रिए उनकी अजमत को उजागर किया। इसी तरह औलाद के फ़र्ज के हवाले से भी यहाँ बताया गया कि वालिदैन ने जैसे बचपन में कुर्बानियाँ दी, ऐसे ही बुढ़ापे में औलाद को उनकी खिदमत और दिलजोई करनी चाहिए। इसी तरह रहमत की दुआ, ये सबसे बड़ी खिदमत है। वालिदैन के हुकूक सिर्फ दुनिया में नहीं, मरने के बाद भी उनके लिए दुआ करना, और ये उनका हक है, लाजमी तौर पर हम उनके लिए दुआ करें, और रहमत की दुआ ये तो सबसे बड़ी खिदमत हम इसे कह सकते हैं। مزید اس دعا میں عاجزی اور شکر گزاری کا ایک پیغام ہے, چونکہ یہ دعا انسان کے دل میں والدین کی قربانیوں کو یاد دلا کر شکر اور عاجزی کا جو جذبہ اسے پیدا کرتی ہے, مزید نسلوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اس دعا کی اپنی اہمیت ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی سرمایہ ہیں, نیک اولاد ہوگی تو یہی اولاد جو ہے نا آگے ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے, اللہ سے سوال کریں گے اور ہمیں ہماری تربیت کا پھل اور ثمارہ ملے گا. اس چھوٹے سے مگر کافی اہم اور بہت ہی بڑی شان والی یہ دعا آئیے عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, آمین یا رب العالمین. انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं। आइए तलहा अशरफ जमा के साथ सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन किराम, आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो कतर का खूबसूरत प्रोग्राम कससुल कुरान। इस प्रोग्राम में हम कुरानी वाकयात को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि हम कुरान मजीद के इन वाकयात से अपने ईमान, अखलाक और किरदार को संवारें। आज का वाकया कुरान करीम की सबसे हसास और जज्बाती वाकयात में से एक है। एक वाकया जिसने मदीने के माशरे को हिला कर रख दिया। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और पूरे माशरे की अखलाकी बुनियादें आजमाई गईं। यह है हादसा इफ्क या वाकया इफ्क, झूठे इल्ज़ाम का वाकया, जिसका जिक्र सूरत नूर में किया गया है। ये वाकया हमें सिखाता है कि अफवाहों और बहतानों का एक जुमला किसी की जिंदगी, इज्जत और खानदान को तबाह कर सकता है, और ये भी सिखाता है कि सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन आखिरकार फतह याब होता है। तो जी हाँ, शुरू करते हैं आज का ये ईमान अफरोज वाकया। ये वाकया सन 6 हिजरी में पेश आया। उसे बुखारी और मुस्लिम समेत तमाम मोतबर मुहदिसीन ने रिवायत किया है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद इस वाकये को तफसील से बयान करती हैं। फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सफर पर तशरीफ ले जाते तो अपनी अजवाज मुतहरात के दरमियान कुरान अंदाजी फरमाते, जिसका नाम निकलता वो आपके साथ सफर में शामिल होती। एक गजवे के मौके पर मेरा नाम निकला और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह निकली। ये वो वक्त था जब आयत हिजाब नाजिल हो चुकी थी। मैं अपने हौदज यानी डोली में सफर करती थी और उसी में सवार और नुजूल करती। गजवा मुकम्मल हुआ और हम मदीने की तरफ वापस लौट रहे थे। और सामीन को यह भी बता दें कि यह गजवा था गजवाए बनिल मुस्तलक। गजवा मुकम्मल होने के बाद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अब मदीने की तरफ वापस लौटने का वक्त आ गया। एक रात कोच का ऐलान हुआ। मैं अपनी ज़रूरियात के लिए काफिले से कुछ आगे चली गई। जब वापस आई तो मेरे गले में मौजूद हार, जो यमन के पत्थर जज़ा ज़फ़ार से बना था, गुम हो चुका था। मैं वापस गई और हार तलाश करने लगी। इसी दौरान काफिले वाले, जो मेरा हौदज डोली उठाया करते थे, आए और हौदज को ऊँट पर रख दिया। उन्हें लगा कि मैं अंदर मौजूद हूँ, क्योंकि उस जमाने में औरतें हल्की फुल्की होती थी, न मोटापा न ज्यादा खुराक, तो उन्हें हौदज के हल्का होने का एहसास न हुआ। मैं अभी हार तलाश कर रही थी कि काफिला चल पड़ा। आखिरकार मेरा हार मिल गया। मैं वापस आई मगर काफिला जा चुका था। मैं वहीं बैठ गई ये सोचकर कि जब वो मुझे न पाएंगे तो वापस आ जाएंगे। इसी हालत में मुझे नींद आ गई। सफ़वान इब्न मुअत्तल अस-सिलमी अज़्ज़क़वानी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो काफिले के पीछे चल रहे थे, मेरे करीब पहुंचे। उन्होंने एक इंसान का साया देखा, पहचान लिया कि मैं हूं, क्योंकि वो मुझे हिजाब से पहले देख चुके थे। वो चौंक गए और फौरन बोले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं फौरन अपना चेहरा ढांप लिया। अल्लाह की कसम, न उन्होंने

पीछे हट गए। मैं ऊंट पर सवार हो गई। वो खामोशी से ऊंट की लगाम थामे चलते रहे, यहां तक कि हम दोपहर के वक्त काफिले से जा मिले। जब हम काफिले में पहुंचे तो मदीना में एक फितना उठ खड़ा हुआ। अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल, जो मुनाफिकीन का सरदार था, उसने एक घिनौना इल्ज़ाम तराश दिया कि सफवान और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के दरमियान कुछ हुआ है। ये बात कुछ कमज़ोर ईमान वाले लोगों के कानों तक पहुंची और जबानों से जबानों तक चलती गई। यूं हादसा इफ़्क़ इस्लाम की तारीख का एक बड़ा इम्तिहान बन गया। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, अफसोस जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया उनमें चंद मारूफ नाम भी आए, हसान बिन साबित, मुस्तह बिन उसासा और हमना बिन तजहश, और उन सब का सरगना वही मुनाफिक था, अब्दुल्लाह बिन उबई। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हम मदीना वापस आए तो मैं बीमार पड़ गई। पूरा महीना बीमारी में गुजरा और लोगों में वाकई इफ की बातें फैलती जा रही थी मगर मुझे कुछ खबर न थी। अलबत्ता एक बात मुझे हैरान करती थी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नरमी, वो शफ़क़त जो मैं अपनी बीमारी के वक्त महसूस किया करती थी, अब कुछ कम महसूस हो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते, सलाम करते और सिर्फ इतना फरमाते, कैफ़तीकुम, तुम्हारा हाल कैसा है, फिर खामोशी से वापस तशरीफ़ ले जाते। मुझे ये अंदाज़ मोहब्बत में तब्दीली दिल ही दिल में फ़िक्र में डाल देती, मगर मैं किसी शर या बदगुमानी का गुमान न करती थी। समझकर मजीद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बाद में क्या हुआ। बस छोटा सा एक वक्फा ले लेते हैं। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद बिज़्निल्लाही ताला।

जान रदी अल्लाह अन्हा मुझे देखते ही चौंक गई। मैंने पूछा, अम्मी जान लोग क्या बातें कर रहे हैं, मदीने में मेरे बारे में क्या कहा जा रहा है? अम्मी ने नरमी से कहा, बेटी सब्र करो, ऐसा अक्सर होता है। जब कोई औरत खूबसूरत हो और उसका शौहर उससे मोहब्बत करता हो और उसकी दूसरी बीवियां या ख्वातीन हो तो कुछ लोग हसद में बातें बना लेते हैं। मैंने बेइख्तियार कहा, सुभान अल्लाह, क्या वाकई लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, और फिर मैं रोने लगी, इतना रोई कि आंसू थमने का नाम न लेते थे। रात भर जागती रही, न नींद आई न दिल को सुकून। समीन, ये वो वक्त था जब आसमान से वही के आने में ताखीर हो रही थी और ज़मीन पर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम और फिक्र में डूबे हुए थे। मजीद वाक़े को आगे बढ़ाएंगे मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi. Dil se, desi.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ministry of Interior ne public places mein pets ke liye kuch laws rakhe hain. जैसे डॉग्स को अक्सर पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क्स और कॉर्निश में अलाउड नहीं है, और परमिटेड एरियाज में भी लीज्ड होना जरूरी है। इसके साथ पेट आइडेंटिफिकेशन, जिसमें ओनर्स को मशवरा दिया जाता है कि माइक्रोचिप्स, टैग्स या टैटूज के जरिए आइडेंटिफिकेशन करें। डेंजरस एनिमल्स के लिए भी कुछ रेगुलेशंस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर डेंजरस स्पीशीज को रेगुलेट करती है, जिनमें रॉटवीलर्स, डोबरमैन्स और दूसरे एनिमल्स शामिल हैं जो पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट बन सकते हैं। ऐसे में स्ट्रे डॉग्स को फीड ना करें, क्योंकि ये टेरिटोरियल बिहेवियर को इंकरेज करता है। अगर आपको ये बाइट करें तो फौरन नियरेस्ट हॉस्पिटल जाकर रेबीज वैक्सीन लगवाएं। अग्रेसिव डॉग्स की गैदरिंग को अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। ये गाइडलाइंस पब्लिक सेफ्टी और पेट ओनरशिप के रूल्स को हाईलाइट करती हैं, जो रिसेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एडवाइजरी में शामिल है।
0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
4: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम एक नहायत ही अहम मौजू पर बात करेंगे, यानी इब्तदाई तिबी अमदाद या फर्स्ट एड। हादसात और हंगामी हालात किसी भी वक्त और किसी भी जगह पेश आ सकते हैं। ऐसे मौकों पर हर वक्त और दुरुस्त इब्तदाई जो इमदाद है किसी की जान बचाने या मजीद नुकसान से बचाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। फर्स्ट एड से मुराद है वो फौरी मदद है जो किसी जख्मी या बीमार शख्स को पेशावराना जो तिबी इमदाद है पहुंचने से पहले दी जाती है। फर्स्ट एड या इब्तदाई तिबी इमदाद के बुनियादी उसूल कुछ हैं, वो ये कि खुद को और मुतासर शख्स को महफूज रखिए। घबराने के बजाय पुरसकून रहिए, सूरत हाल का जायजा लीजिए, जरूरत पड़ने पर फौरी तौर पर इमरजेंसी सर्विसेज से राबता कीजिए। अगर किसी शख्स को चोट लग जाए और ब्लीडिंग होने लगे तो साफ कपड़े या पट्टी से जख्म पर प्रेशर डालिए। जो जख्मी हिस्सा है उसको मुमकिन हो तो दिल की सतह से बुलंद रखिए और अगर ब्लीडिंग ना रुके तो फौरी तिबी इमदाद हासिल कीजिए। अगर किसी का हाथ या जिस्म का हिस्सा जल जाए तो मुतासर हिस्से को 10 से 20 मिनट तक ठंडे पानी के नीचे रखिए। बर्फ बराह रास्त इस्तेमाल ना कीजिए, जलने वाली जगह पर टूथपेस्ट, घी या जो दीगर घरेलू अशिया हैं वो लगाने से गुरेज कीजिए। शदीद जलन की सूरत में फौरन डॉक्टर से रजू करिए और अगर नाक से खून आना शुरू हो जाए तो सीधे बैठ जाइए, सर को हल्का सा आगे की तरफ झुका लीजिए, नाक के नर्म हिस्से को तकरीबन 10 मिनट तक दबाइए, सर पीछे ना झुकाइए क्योंकि खून हलक में जा सकता है। याद रखिए दुरुस्त इब्तदाई तिबी इमदाद मरीज की हालत को मजीद बिगड़ने से बचा सकती है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का नए जमाने के नए स्कैम्स के बारे में। हर हफ्ते मैं आता हूँ और आपको नए स्कैम्स या फ्रॉड के बारे में अवेयर करता हूँ, और इस हफ्ते भी एक ऐसे ही स्कैम के

0: बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑल्दो ये स्कैम आपके साथ कतर में हो या ना हो, लेकिन आपके अपने मुल्क में या फिर जो खेती से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनके साथ इस तरह का स्कैम होना आसान होता है या उनके साथ स्कैम हो सकता है। तो इसलिए ये आपके लिए नहीं लेकिन आपके फैमिली मेंबर के लिए या फिर आपके अपने घर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेंबर को इस तरह के स्कैम के लिए अवेयर जरूर करना चाहिए। वेल, ये है फेक स्मार्ट एग्रीकल्चरल आईओटी डिवाइस स्कैम, जो आमतौर पे गांव के एरियाज में ज्यादा होता है। रूरल एरियाज के फार्मर्स को टारगेट करने के लिए स्कैमर्स मॉडर्न स्मार्ट आईओटी एग्रीकल्चर डिवाइस जैसे कि सॉयल टेस्टर या ऑटोमेटेड वाटर कंट्रोलर्स सस्ते दाम पर बेचने आते हैं। वो दिखाने के लिए एक सस्ती या नकली मशीन दे देते हैं और कहते हैं कि इसका हाईटेक सॉफ्टवेयर एक्टिव करने के लिए अभी कार्ड स्वाइप करें या एडवांस पेमेंट जरूर करें। एडवांस लेने के बाद वो गायब हो जाते हैं और डिवाइस बिल्कुल कचरा निकलती है, और आप उनको पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक हेडक्वार्टर नहीं है, ना ही कोई ऑफिस है, तो ऐसे लोगों को आप सामने से पकड़ भी नहीं सकते। इसकी एक और वजह ये भी है कि जब वो आपको डिवाइस देते हैं, वो डिवाइस कुछ वक्त बाद आपको कहते हैं कि एक्टिव होगी, जो कि कंपनी से एक्टिव होती है, और वो दुनिया भर की चीजें बताते हैं, लेकिन ये तब कहते हैं जब आप पेमेंट करेंगे तब, यानी कि पेमेंट करने के बाद ये डिवाइस एक्टिव होगी, और वो यानी कि वो शख्स जो आपको डिवाइस बेचने आए वो वहां से चले जाते हैं। फिर आपको एहसास होता है कि ये तो डिवाइस खराब है। ये स्कैमर्स अक्सर फेक गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम्स का झांसा देते हैं ताकि किसान जल्दी भरोसा कर रहे। वो कहते हैं कि अगर अभी स्कीम का फायदा नहीं उठाया तो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। बहुत से भोले किसान इसका शिकार हो जाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई गवा देते हैं। ये नकली डिवाइस ना तो कोई सही डेटा दिखाती है और ना ही खेती में किसी तरह से भी काम आती है। उल्टा इनमें लगाए गए कार्ड से बैंकिंग फ्रॉड का खतरा भी बढ़ जाता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। खेती बाड़ी के लिए ऐसी कोई भी स्मार्ट डिवाइस हमेशा रजिस्टर्ड डीलर या गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी से ही खरीदें। किसी भी आने वाले अनजान सेल्समैन को फील्ड में कैश या कार्ड एडवांस पेमेंट बिल्कुल ना करें। किसी भी डील को फाइनलाइज करने से पहले हमेशा लोकल एग्रीकल्चर ऑफिसर से राब्ता करके स्कीम की सच्चाई का जरूर पता लगाएं। उसके अलावा आप बाकी के किसानों से, आसपास के लोगों से राब्ता रखें कि क्या इस तरह की कोई स्कीम चल रही है जिसमें आपको डिवाइस दिया जाता है और उसमें सॉयल टेस्ट करना या फिर तमाम जो चीजें हैं वो क्या शामिल होती हैं या नहीं। इसके साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। तब तक होशियार रहें और सतर्क रहें इस तरह के फ्रॉड से, और अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर इत्तला करें। और सुनते रहें FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें

0: पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आप सुन रहे हैं जूनियर जनाब, एक ऐसा शो जिसमें हम शोकेस करते हैं यंग अचीवर्स को। और आज हमारे साथ इस शो में हैं एक बहुत ही ऑसम से अचीवर जिनसे मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। इन्होंने ना सिर्फ अपने स्कूल का नाम रोशन किया है इस उम्र में बल्कि पूरे कतर का भी इन्होंने नाम रोशन किया है। साथियों मिलते हैं सहल से। अच्छा, इनका नाम मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने पहली दफा सुना इनका नाम और मुझे अच्छा लगा भाई, मतलब भी मैंने इनसे पूछा तो बड़ा अच्छा सा नाम था। तो इनका नाम है सहल, ये 12th ग्रेड में एक स्टूडेंट हैं और जिन्होंने रिसेंटली कतर नेशनल हैंडबॉल टीम को भी रिप्रेजेंट किया है फर्स्ट एशियन मेंस अंडर 17 हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने हिस्सा लिया जो कि अमान जॉर्डन में हुआ था। साथियों सहल ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही जबरदस्त सी परफॉर्मेंस दी और अपनी टीम को सेमीफाइनल्स तक ले गए। अगर मैं इनके स्कोर के बारे में बात करूं तो भाई मैं इनके स्कोर से बड़ी इम्प्रेस थी। जॉर्डन में जो इन्होंने गेम खेला तो इन्होंने स्कोर किया 32/25 और कुवैत में 26/22 से। और भाई इनके यही स्कोर्स इनकी डेडिकेशन और इनकी स्किल्स का सबूत है। और तो आज इन्होंने जब चाइना के खिलाफ गेम खेला तो 38/34 स्कोर हुआ था भाई, विच आई थिंक इज वेरी इंप्रेसिव। और इन्होंने सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट भी गेम खेला है जिसमें इन्होंने स्कोर किया 27/23 और इन्होंने जीत हासिल की। तो भाई इनकी यही कंसिस्टेंसी हमें ये साबित कर देती है कि भाई ही इज अ वेरी डेडिकेटेड प्लेयर। और सबसे एक्साइटिंग बात तो ये है कि सहल अब अंडर 17 हैंडबॉल वर्ल्ड कप 2025 के लिए मोरक्को जा रहे हैं। तो साथियों ये यंग अचीवर हर छोटे एथलीट के लिए एक मिसाल है कि हार्ड वर्क और पैशन आपके ख्वाबों को पूरा कर ही देता है। तो भाई तैयार हो जाइए क्योंकि हम इस एपिसोड में आपकी इस यंग अचीवर से मुलाकात कराने लगे हैं ताकि आपको ये पता चले कि आपकी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए स्ट्रगल्स भी होती हैं, हार्ड वर्क भी होता है, लेकिन जो इंसान कोशिश करता है वो दूसरों को भी इंस्पायर करता है और खुद के ड्रीम्स को भी अचीव करता है। तो भाई चलते हैं हम डायरेक्ट सहल के साथ। तो सहल कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन।
2: अच्छा सहल, सहल से मैंने शो शुरू करने से पहले पूछा सहल कौन सी लैंग्वेज में बात करेंगे, तो सहल ने कहा देखिए आई कैन अंडरस्टैंड उर्दू बट आई एम गुड वेरी गुड एट इंग्लिश एंड अरबिक। सो अरबिक मुझे थोड़ी बहुत आती है, पूरी नहीं आती, तो हम इंग्लिश पे आ जाते हैं, ठीक है? तो अच्छा ये बताएं मैं अगर उर्दू में सवाल करूंगी तो समझ में आ जाएंगे?
3: मैम प्रोबेबली
2: आ जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएं, कुछ तो मैंने बता दिया कि कुछ मुझे आप खुद भी बताएं कि आपकी हॉबीज क्या हैं। सहल असल में अपने लिए सहल कौन है?
3: सो आई एम सहल, आई एम फ्रॉम कतर एंड आई प्ले फॉर अंडर 17 हैंडबॉल कतर टीम। I have represented Qatar in many tournaments before. I went and played in Serbia, Bosnia, played in Saudi, so many places. And I started my journey maybe before like 8 years. I started playing handball. I played the game. I loved the game. It's my passion.
2: Okay. It's my good. Passion. Good. Good. Good. Good. अच्छा ये बताएं कि अगर मैं कहूँ कि आप handball में कौन सी position पे खेलते हैं?
3: So I am playmaker.
2: ओके। अच्छा कुछ कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं ना कि वो कहते हैं भाई हमारा, अब जैसे क्रिकेट में भी होता है, मुख्तलिफ गेम्स में होता है, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारी कोई एक एक बॉल या कोई एक चीज हमारा लकी चार्म होती है। आपके साथ ये है कि आप किसी चीज को अपना कोई लकी चार्म मानते
3: हैं? I am an assister, the best.
2: अच्छा,
3: I'm the best assister, you can ask.
2: ओके। अगर अगर अगर हैंडबॉल का तो हम सबको पता चल रहा है माशाल्लाह से यू आर वेरी गुड एट इट, डेफिनेटली दैट्स व्हाई यू आर इन द टीम। सो ये बताएं कि हैंडबॉल के अलावा कोई

0: ऐसा स्पोर्ट है जिसको आप कहेंगे हाँ मैं देख सकता हूँ, सोच सकता हूँ, मुझे ये चीज अच्छी लगती है, समथिंग?
1: फर्स्ट ऑफ ऑल हैंडबॉल बी द बेस्ट फॉर मी.
0: ओके.
1: एट द सेकंड आई कैन टेल फुटबॉल. इवन फुटबॉल इज अमेजिंग गेम. आई एम गुड एट इट. Okay. I started even before playing handball, I started playing football.
0: अच्छा, मुझे याद पड़ता है मेसी का भी कुछ ऐसा ही था कि वो कहते थे कि मुझे फुटबॉलर नहीं बनना था, मुझे बाइसाइकिलिस्ट या समथिंग, ही सेड दैट आई वांटेड टू बी दैट एंड बट पता नहीं क्यों फुटबॉलर बन गया. मुझे फुटबॉल अच्छी लगती है लेकिन आई एम गुड एट हैंडबॉल एज वेल. अच्छा, ये बताइएगा कि आप जो अपने मैचेस वगैरह शुरू करते हैं तो उससे पहले कोई रूटीन होती है, कुछ ऐसा होता है जिसको आप कहते हैं कि नहीं भाई ये मेरी एक ट्रिक है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, ये मेरी रूटीन है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, तभी आई एम डेडिकेटेड टू व्हाट आई डू?
1: सो ऑफ कोर्स बिफोर एनी मैच यू शुड हैव अ प्रॉपर रूटीन. मोस्ट ऑफ द एथलीट्स बिफोर द मैच बाय 2 आवर्स दे डोंट स्लीप, दे शुड बी अवेक एंड लाइक फुल 100% अटेंशन फॉर द मैच. एंड यू शुड बी लाइक I won't say 100%, but like you should give your best to stay in proper attention and to focus your trainers as we have before every match we have a video play.
0: Okay.
1: So we watch that video play, we see what we should do in the match, the tactics, depending on the coach. And yeah, that's more of the...
0: अच्छा रूटीन में रहते हैं क्योंकि कभी कभी ये होता है खासतौर पे बच्चों में होता है कि दे आर नॉट डेली रूटीन, वी आर गॉन यूज टू इट सो वी नो इट ऑल. आपको कभी ऐसा लगा कि आपके अंदर ये चीज आई है कि आई नो इट ऑल, मैं जो होगा देख लेंगे?
1: एवरी एथलीट हैज दिस फीलिंग दैट दैट वी नो एवरीथिंग राइट नाउ हाउ, बट वी हैव टू फॉलो आवर इंस्ट्रक्शंस. लाइक
0: कभी कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट फील किया?
1: Yeah, it happens.
0: अच्छा, I'm very glad that I'm talking to an athlete, a person who is honest. अच्छा ऐसा होता है. हाँ ऐसा होता है क्योंकि लोग क्या करते हैं, हाइड कर जाते हैं चीजों को. अच्छा ये बताएं कि ये जो हैंडबॉल का पैशन है, आई वुड से पैशन, यू हैव अ पैशन ऑफ हैंडबॉल, तो ये कब कब शुरू हुआ, कौन सी एज में, क्या क्या दिमाग में आया था ऐसे ही रैंडमली?
1: सो आई वाज 7 इयर्स ओल्ड मे बी. And before it, I started playing football actually.
0: Uh-huh.
1: Yeah, so I had my different friends. Hmm. They were playing handball. So once I tried it. When I tried handball, I liked the game. So now I love it.
0: जैसे हम कहते हैं ना, ऐसे गलती से चला गया था, दोस्तों के चक्कर में गलती से चला गया था. अच्छा देखा, दिस इज व्हाट वी से, दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट, हैव गुड फ्रेंड्स, यू नेवर नो कि आपको कौन कहाँ ले जाए. अच्छा कोई एक ऐसा आपका कोच या कोई एक ऐसा नाम जो आपके दिमाग में आता है जिसने आपको कभी बहुत ज्यादा इंस्पायर किया?
1: Yeah, there is one of my coaches. His name is Coach Hazm. Hmm. He's from Egypt. He's the one who helped me a lot. He improved me. And because of him, because of Allah, first of all, of course, and then him, Alhamdulillah, I reached this level.
0: Good. चले, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जो आपके ऊपर जितनी मेहनत करता है, आपसे क्रेडिट देते हो. इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक.
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब. यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को. सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ. जूनियर जनाब विद आरजे सफा.
0: अच्छा ये एक बात बताएं कि गुड थिंग्स हैपन राइट, गुड थिंग्स हैपन, लेकिन एक गुड थिंग्स के बारे में तो हम पूछते रहेंगे, लेकिन एक चीज बताएं कि ये जो ट्रेनिंग होती है जिसको आप इतना, हम कहते हैं ना वो साउंड गुड और इजी बता रहे हैं, आपके लिए चैलेंजेस क्या होते हैं ये जो गेम्स में, या अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल के लिए बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपके लिए अपनी गेम में, even though you're perfect in it as per you, to uske andar kuch na kuch challenge to hota hoga aapke liye, wo kya hai?
1: So first of the challenges is like I'm the playmaker of the team, right? If the playmaker is not 100% present in the team, probably the team will lose that game.
0: Okay.
1: Yeah, so the playmaker's role in the game is very important.
0: Okay.
1: So like my role Sahel as in the team, I should be 100% ready.
0: Uh-huh.
1: And if I'm not 100%, even if I'm less than 100%, like 99%, then there's an issue.
0: Crash.
1: Yeah. So for me, I should be like 100% ready for every match.
0: Chalein bhai.
1: And motivate my team. Give them hype.

0: in the beginning, like in the training, like that. But you should not stop. You should continue like until you reach your goal.
1: अच्छा ये बात बताएं कि जैसे कि आपने कहा कि ट्रेनिंग्स आर टफ, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा भाई बस बहुत हो गया अब मुझसे नहीं हो रहा, दिस इज टू मच टफ फॉर मी, होता है ऐसा?
0: बहुत बार होता है,
1: बहुत बार होता
0: है, मोस्टली इट हैपेंड अ लॉट, मे बी नाउ आल्सो इट्स हैपनिंग, बट दिस इज
1: पार्ट ऑफ द गेम,
0: दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, this is when you know the true athlete when he stops, when he continues.
1: acha sahi acha mujhe ek baat bataye ki abhi tak aapne jitne bhi matches khele na uske se aapka favorite tareen message bol rahi hu main, aapka favorite tareen match kaun sa hai?
0: My favorite match I played until now, till today, it was against Kuwait in the Asian Championship. Yeah.
1: Okay.
0: This match was the match which made us qualify to the semifinals.
1: Oh, yeah,
0: we
1: nice.
0: We won like 26-22.
1: Good, yes. good. अच्छा ये वही match था जो ऊपर तक ले गया भाई. अच्छा ये बताइएगा कि ये सवाल तो आपसे हर कोई कहीं ना कहीं हर किसी ने ही पूछा होगा. ये बताओ बेटा मैनेज कैसे करते हो अपने स्केड्यूल को, पढ़ाई भी कर रहे हो माशाल्लाह से, बिकॉज यू आर आई बिलीव यू आर इन 12th ग्रेड राइट, सो पढ़ाई भी माशाल्लाह साथ साथ चल रही है और गेम्स भी साथ साथ चल रही हैं, तो ऐसा कैसे है?
0: सो व्हेनेवर आई ट्रैवल आई गेट मे बी इन अ डे मे बी आई गेट 1 आवर 1 एंड 1/2 आवर in between free. So that time I utilize it with my studies. So that when I come back to Doha and I go back to my school, I don't be like, oh, this is a lot for me, yeah, and I'm lost everywhere. So I try like getting back and like slowly.
1: ये अपने आप को खुद motivate करते हैं भाई. अच्छा कुछ आगे चलकर future में आपका कोई plan है कि इसी चीज को continue करना है या कुछ और? जैसे लोग कहते हैं ना कि study हमने medicine कर लिया लेकिन बनेंगे हम RJ. तो ऐसा है कुछ या आपने आपने कहा आपको कोई particular एक vision है अपने लिए?
0: So in studies right now, maybe in future I would like to study IT field. In IT field, yeah. And inshallah, continue handball too. I want to play in better places like in Europe, example. Of course, Europe is very known in handball. So inshallah, in future, planning to play in Europe. Yeah.
1: सही. अच्छा आपको देखकर और सुनकर ना मुझे हमारे बहुत अच्छे एक रेसर हैं कार्स के कतर के बहुत नोन नासर अल अतिया. आई रियली जब मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ और जानती हूँ ना जितना, तो आई रियली रियली एडमायर हिम हिज पैशन फॉर. अच्छा ये भी नहीं कि कुछ छोड़ दिया हो कुछ रह गया हो, माशाल्लाह ही इज वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट ही इज डूइंग. अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं तो जो हमारे पास आपने देखा होगा कि आपके साथ साथ दूसरे भी और कोई जब आप खेलते हैं तो आप देखते हैं ना दूसरे आपसे छोटे होंगे दे लुक अप टू यू राइट, तो अगर उन बच्चों के बारे में बात करें जो दे आर लुकिंग अप टू यू तो उनको क्या एडवाइस देंगे अपने पास से?
0: The small athletes, you mean? So small athletes. Example, I have my brother also. He looks, yeah, he looks up to me like that, and he'll be like, one day I will reach to you, and I'll play against you. Yeah.
1: MashaAllah.
0: So to the young athletes, the biggest difficulty they face is first of all their studies, and then how to manage their timings. So I will advise them that this is life. You have to sacrifice sometimes. So you should try your best in focusing both on sports and studies.
1: अच्छा क्या आप इस चीज को मानते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये उनको, या मुझे नहीं पता मैकेनिज्म दिमाग का कुछ ऐसा होता है कि उनको लगता है थिंग्स शुड बी इजी, तो आप क्या इस बात को मानते हैं कि लाइफ इज अनफेयर, लाइफ इज नॉट द वे आई वांटेड इट टू बी, या कुछ कभी ऐसी चीजें आती हैं दिमाग में?
0: नहीं, ऑफ कोर्स इट कम्स समटाइम्स, बट देन दिस इज लाइक एवरीथिंग, इट्स अबाउट नेगेटिव फीलिंग्स.
1: हाउ डू यू काम योरसेल्फ फॉर इट एंड यू शो ग्रेटिट्यूड टू लाइफ, हाउ डू यू डू दैट?
0: इट कम्स थ्रू ट्रेनिंग. We train, we forget about all these negative impacts we get. We focus more on what our goal is, like that.
1: अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ये बताएं कि आपके लिए सक्सेस क्या चीज है लाइफ में, अचीवमेंट और सक्सेस क्या चीज है, what is it?
0: So for every athlete, if you ask, they'll say success is every time like you when you, for example, now I'm playing in Asian Championship, but right, I want to win World Cup now, like that. So every athlete wants to win bigger and bigger. After World Cup, I want to win Olympic Games. This is the biggest maybe an athlete can guess. An achievement. Yeah. So every athlete will get will want to win more and more.
1: अच्छा आपके लिए आप कह रहे हैं कि मेरे लिए achievement और मेरे लिए success ये है कि मेरा जो

0: चैनल में उसके अंदर और से और और से और और से और करता चला जाऊंगा. ठीक है.
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब. यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को. सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ. जूनियर जनाब विद आरजे सफा.
0: अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे. लेकिन कभी ऐसा भी तो होता है वो रिजल्ट्स आते हैं जो हमें नहीं ना मंजूर होते. सो लेट्स से इफ इट्स अ गेम एंड यू रियली वांटेड टू विन इट एंड यू वर क्लोज इनफ टू विन इट, बट जैसे कि वो आपने बताया ना वो आपका कोरिया के साथ मैच था, बट यू डिड नॉट, इट वॉज अनफॉर्चुनेटली यू डिड नॉट. सो उस वक्त कैसे कोप अप करते हैं?
2: सो एवरी एथलीट फेस दिस थिंग इन देयर लाइफ, बट दिस इज पार्ट ऑफ द गेम. दिस इज लाइक they say, right, failure is the way to success.
0: Mm-hmm.
2: Every failure
0: acceptance.
2: You get, yes, yes, you should accept it. Today you're failing, today, tomorrow, inshallah, you win.
0: अच्छा ये बताइएगा कि कि आप जो है जब जब आप tough practices करते हैं तो जाहिर बात है जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई सबके पास ये time आता है कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, तो अपने आप को कैसे encourage करते हैं? कुछ तो होगा, कुछ दिमाग में रखते होंगे, कुछ सोचते होंगे.
2: So when I've been with my team, example for the national team, we get that feeling that, oh, for me it's over now like this. But I think about others.
0: Hmm.
2: Others have goals. And for them to reach their goals, I should even help them. I should support them. Yes.
0: Teamwork.
2: Yes, teamwork. Teamwork. Achha. If one is not focusing on his goal or passion like that, the other other teams will get affected too because we are a team game. We are not an individual game.
0: सही. अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे जरा ये बताएं कि एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, आपको क्या लगता है हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो आप उंगलियों पर गिनते हैं? चाहे आप दोस्त भी बनाते हैं ना तो आप कहते हैं नहीं, अगर मैं दोस्त भी बनाऊंगा ना किसी को तो ये 1 2 3 चीजें उसके अंदर होनी चाहिए. तो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के अंदर आप क्या देखते हैं?
2: देयर आर सो मेनी क्वालिटीज एक्चुअली. But one of them, I would say that should be the to be human, to be to love others. Yeah,
0: तो लोगों के साथ sympathy, empathy होनी जरूरी है.
2: Yes.
0: और एक चीज, एक दो को भी, एक तो आपने बता दी, चले empathy, sympathy, आपको दूसरों का एहसास होना ज्यादा जरूरी है. दूसरी चीज क्या होगी?
2: तो दूसरी चीज में भी it will be to love what you love for yourself to others. Yes. For example, I want to reach higher levels in future. I should.
0: आपको वो वाले लोग पसंद हैं जो दूसरों को भी pull up करते हैं.
2: Yes, yes, yes.
0: कुछ
2: yes.
0: कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को drag down करते हैं. भाई उनको पता ही नहीं होता कि वो चले में. ये भी एक अच्छी quality है जो हमें खास तौर पे दोस्त बनाने से पहले देखनी चाहिए कि भाई कौन कैसा है आपको. क्योंकि जाहिर सी बात है कि जैसे आप दोस्त बनाते हैं आप वैसे भी कहीं ना कहीं खुद भी बन जाते हैं. वेरी गुड. अच्छा ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है इन फ्यूचर आप अगर अपनी गेम पे रखते हुए देखते हैं तो आपको कौन सी टीम ऐसी लगती है कि विच इज अ टफ कंपटीशन
2: एज अ नेशनल टीम और
0: आप चले आप क्लब के बारे में बता दें
2: club,
0: और इंटरनेशनल टीम या नेशनल टीम के बारे में भी बता दें.
2: एज अ क्लब द बेस्ट टीम टू फेयर लाइक द बेस्ट टीम इन हैंडबॉल मेबी यू कैन से बार्सिलोना.
0: Barcelona,
2: they are the best. Yeah.
0: Okay.
2: So facing Barcelona is a big, tough game. Yeah.
0: Okay.
2: But in future, inshallah, we can.
0: Inshallah.
2: And national team, of course, the toughest team is Denmark.
0: Denmark
2: is the toughest team. But why not in future? We never know.
0: Inshallah. Practice makes us all perfect. और वही वाली बात है कि आप अपने आप को अगर positive रखते हैं ना किसी चीज के लिए तो वो फिर आप इंशाल्लाह उसको अचीव कर ही जाते हैं. अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा हैबिट ऐसा है जो इंसान को डिसिप्लिन्ड रखता है या आपको डिसिप्लिन्ड रखती है, कौन सी ऐसी हैबिट है जिसको आप कहेंगे भाई ये चीज़ मेरे अंदर है तो मैं बहुत डिसिप्लिन्ड रहता हूँ, मैं एक सिंप में रहता हूँ?
2: इट्स मोर मोस्टली अबाउट फॉलोइंग व्हाट यू लाइक फॉर like when you have a free time example you should utilize it. This will gain you discipline, this will gain you so many
0: aapke mutabik agar aapke paas free time hota hai to aap uske andar kya karte
2: hain? So mostly training, studying like that, reading books, Yeah.
0: चलें ठीक है.
2: Just utilizing your time.
0: अच्छा अगर अगर मैं कहूँ कि आपका in future कोई एक बहुत बड़ा ख्वाब मेरे साथ शेयर करें, जो विजन आपने अपने लिए देखा है कि where would you stand, what would you be doing, तो वो क्या होगा?
2: Oh, my future plans is first of all to make Qatar's name higher and higher.
0: Inshallah.
2: To raise our flag higher and higher in better fields.
0: सही सही सही. अच्छा स्ट्रेंथ तो आपने बहुत सारी बताई, कोई एक ऐसी चीज होगी जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं वीकनेस जरूर होती है, तो आपको क्या लगता है कोई एक ऐसी चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने अंदर और ज्यादा बेहतर, देखिए मामला ये होता है कि जो इंसान अपनी वीकनेस को पहचान लेता है ना, वो उसको ओवरकम यू मिनटों में करता है. तो आपको क्या लगता है आपके अंदर ऐसी कौन सी वीकनेस है जो आपको, जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है? And you know it's there and you're still working on it.
2: If you see most of the handball athletes, they are like, if you see their body, they're like more bigger in size. Yeah. So my weakness is in that. But still I have an advantage, because when you play against big people, they can't control small people. Yes, they just control big people. So it's an advantage. At the same time, it's like in this...
0: अच्छा ये अपनी अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर चलते हैं. अरे आई लाइक इट. इंसान वही जो हर चीज में मसले का हल निकाल ले. भाई ये इन्होंने मसले का हल निकाल लिया. साथियों हमारा जो है वो तकरीबन टाइम ओवर होने को आ गया है बातचीत में, और जाने से पहले मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगी कि जाने से पहले आपको एक अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस जितने भी बच्चे आपको सुन रहे हैं उनको देना चाहेंगे, उनको बताना चाहेंगे कि लाइफ में किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाए या क्या चीज़ ज़रूरी है या एक्स वाई ज़ेड आपके दिल में जो आता है, जो आप अपने पास से मैसेज देना चाहते हैं सबको.
2: As I said to the young athletes, first you should follow your passion. Passion is everything. If you love what you're doing, exactly. So when you love what you're doing, then you can succeed more and more. Yes.
0: सही. अच्छा ये भी एक बड़ी बात होती है कि इंसान अपने टैलेंट को पहचान जाए या सामने वाला उसके टैलेंट को पहचान जाए. अक्सर औकात बच्चे, मुझे ऐसा लगता है 60-70% बच्चे ऐसे ही जाया चले जाते हैं क्योंकि उनको टैलेंट को पहचाना ही नहीं जाता, या वो खुद नहीं पहचान पा रहे होते या उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल रहा होता. आपको किसने सपोर्ट किया था भाई इस चीज के लिए?
2: My parents, of course.
0: और अगर मैं पूछूं, ऐसे बच्चों वाला सवाल हो जाएगा लेकिन मैं पूछूं, मजा आता है मुझे सवाल पूछने में, कि अम्मी और अब्बू में से सबसे प्यारा कौन?
2: अम्मी
0: प्यारी. चलें भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, माँ के कदमों में जन्नत. और अम्मी की खिदमत वगैरह करते हैं?
2: ऑफ कोर्स.
0: चलें भाई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए. साथियों अब जो है हम आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे. देखिए ये मैंने आज सहल से बात की है, तो सहल हमारे लिए एक फुल फाइनल डेफिनेशन है इस बात की कि आपको ये हक भी है कि आप ख्वाब देखें, आपको ये हक भी है कि आप बड़े बड़े ख्वाब देखें, और आपको ये हक भी है कि आप उन्हें अचीव करें. बस मामला ये आता है कि आप उन्हें कैसे अचीव करना है. वो कैसे अचीव करना ये होता है कि कुछ हमारे बड़े हमारा साथ देते हैं, हमें प्रमोट करते हैं, हमारे लिए रास्ते ढूंढते हैं, और फिर हमारी बारी आती है कि जब वो रास्ते ढूंढ लेते हैं ना कि अच्छा बेटा फलाने ग्रुप को ज्वाइन कर लो, अच्छा बेटा फलानी एक्टिविटी कर लो, वो आपको फॉर अ टाइम बीइंग एक ज़बरदस्ती पुश नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर आपके अंदर, जैसे कहते हैं ना हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, तो वो आपका टैलेंट निकल कर सामने आता है जिसके बारे में आपको खुद को भी नहीं पता होता. तो भाई हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अम्मा के ऊपर यकीन रखें कि वो आपको थोड़ा बहुत जो पुश देते हैं ना जिंदगी में, जो आप कहते हैं कि ज़बरदस्ती हमें धक्का देकर यहाँ भेज दिया, ज़बरदस्ती हमसे ये एक्टिविटी करवा ली, मेरा इंटरेस्ट नहीं है मुझसे ये करवा लिया, कुछ टाइम बाद जाकर आफ्टर अ मंथ और टू आपको प्रॉपरली आप उसके अंदर सेट होते हो ना, तो आपको पता चलता है दैट यू वर गुड इन दिस थिंग एंड दे एक्चुअली सॉ दैट थिंग इन यू बिफोर यू इवन न्यू. तो अपने पेरेंट्स के ऊपर आप भरोसा रखें, खुश रहें, और जिस चीज़ का आपको पैशन है अपने ड्रीम्स को फॉलो करें. ये याद रखें लाइफ में कोई भी चीज़ आसान नहीं होती. क्या कहते हैं साल? कोई भी चीज़ आसान नहीं होती. इवन मैंने एक बड़ी खूबसूरत सी बात सुनी थी कि इवन फेलियर नीड्स एफर्ट्स, कि फेल भी आप ऐसे नहीं हो सकते, आपको फेल होने के लिए भी एफर्ट करना पड़ता है, लेजी होना पड़ता है, यूजलेस होना पड़ता है. तो भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों से प्यार से रहें, और सबसे ज्यादा ख्याल अपना रखें. याद रखें कि यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरों का भी ख्याल नहीं रख सकता. हमें दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और साइनिंग आउट फ्रॉम जूनियर जनरेशन. जनाब, इंशाल्लाह क्या पता आप भी एक यंग अचीवर बने आगे जाकर, और क्या पता नेक्स्ट, अभी सहल बैठे हैं हमारे साथ, नेक्स्ट यंग अचीवर आप हो। तो भाई सुनते रहे एफएम 107, अल्लाह हाफिज।
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन एफएम 107। साथियों, गर्मी का मौसम हो या सफर का वक्त हो, ठंडी ड्रिंक या ठंडे पानी की बोतल अक्सर ही हमारी पहली चॉइस होती है। अच्छा, मार्केट, ऑफिस, जिम या ट्रैवल के दौरान हम अक्सर एक प्लास्टिक की बोतल खरीद लेते हैं क्योंकि हमें वो बहुत कन्वीनियंट लगता है। लेकिन बोतल खरीदी, पानी पिया और फिर अक्सर औकात क्या होता है, वो बोतल कहाँ जाती है भाई? इट एंड्स अप इन द ट्रैश। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सिर्फ कुछ मिनट्स के इस्तेमाल के बाद इस प्लास्टिक बोतल का सफर कहाँ तक जाता है? तो भाई, प्लास्टिक बॉटल्स हमारी डेली लाइफ का आम हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन इनका एनवायरनमेंट पर असर भी होता है साथियों। तो भाई, मैंने सोचा क्यों ना आज की इको स्विच में बात कर ली जाए अवॉइडिंग प्लास्टिक बॉटल्स, यानी सिंगल यूज बॉटल्स को कम करना और बेहतर अल्टरनेटिव्स चूज करना। लेकिन साथियों, प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है भाई। देखिए, बॉटल ड्रिंक्स और बॉटल्ड वाटर का सबसे बड़ा मसला ये है सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट। हर साल दुनिया भर में बहुत

0: ज्यादा प्लास्टिक बॉटल्स यूज होती हैं भाई, इनमें से तो बहुत सारी प्लास्टिक बॉटल्स रिसाइकल हो ही नहीं पाती और फिर लैंडफिल या एनवायरमेंट में चली जाती हैं। प्लास्टिक बनाने के लिए भी रिसोर्सेज और एनर्जी इस्तेमाल होती है भाई, सीधी सी बात है। फिर इन बॉटल्स को फैक्ट्रीज से स्टोर्स तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट को भी जरूरी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका एनवायरमेंट पर असर होता है। एक और मसला ये भी है कि अक्सर हम बॉटल सिर्फ एक बार ही यूज करते हैं, यानी एक ऐसी चीज जो कुछ देर के लिए हमारी जरूरत पूरी करती है, वो बहुत लंबी मुद्दत तक के लिए वेस्ट की सूरत में एनवायरमेंट में रह सकती है। अच्छा, यहाँ पर सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन अपनाते हैं। तो साथियों, बॉटल ड्रिंक्स को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज तो ये कर सकते हैं भाई, रीयूज वाटर बॉटल अपनाएं। यानी कि सबसे आसान इको स्विच है कि अपनी रीयूजेबल बॉटल कैरी करें। आजकल स्टेनलेस स्टील और रीयूजेबल बॉटल्स आसानी से अवेलेबल हैं, जो बार बार यूज की जा सकती हैं। अच्छा, घर से पानी कैरी करें, बाहर निकलते वक्त पानी की बॉटल साथ रखने की आदत डालें, इससे इमरजेंसी में प्लास्टिक बॉटल्स खरीदने की जरूरत कम होती है। तीसरी चीज ये, रिफिल ऑप्शंस चूज करें। जहां रिफिल स्टेशंस या वाटर डिस्पेंसर्स अवेलेबल हों, वहां बॉटल दोबारा फिल करें। ये सिंपल हैबिट प्लास्टिक वेस्ट को बहुत कम कर सकती है। चौथी चीज ये कि शुगरी बॉटल ड्रिंक कम करें। यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स और पैकेज ड्रिंक्स सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट नहीं होते, बल्कि हेल्थ के लिए भी हमेशा बेहतरीन चॉइस नहीं होते। फ्रेश ड्रिंक्स हो गई, होममेड बेवरेजेस हो गए, या सिंपल वाटर को, सिंपल सा पानी जो होता है, नॉर्मल पानी, उसी का तरीका अपनाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवेयरनेस शेयर करें। जब हम खुद रीयूजेबल बॉटल्स कैरी करते हैं, तो अक्सर दूसरे लोग भी हमसे इंस्पायर हो जाते हैं और एक छोटी सी आदत किसी को एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट कर देती है। और भाई, इसी की अगर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दी जाए, तो आजकल बहुत से लोग अपनी डेली रूटीन में रीयूजेबल बॉटल्स शामिल कर रहे हैं। ऑफिस जाने वाले लोग अपनी बॉटल्स डेस्क पर रखते हैं, स्टूडेंट्स जो स्कूल में होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, वो अपनी वाटर बॉटल्स कैरी करते हैं। अच्छा, अक्सर औकात तो ट्रैवल करने वाले लोग भी रीयूजेबल बॉटल्स कैरी करते हैं, ताकि हर जगह नई प्लास्टिक की बॉटल खरीदने की जरूरत ना पड़े। सोचिए, अगर एक इंसान रोज एक प्लास्टिक बॉटल कम यूज करे और फिर हजारों लोग ऐसा ही करें, तो कितना प्लास्टिक वेस्ट कम हो सकता है? बहुत भाई, बहुत। जरा सोचिए ना, एक छोटी सी आदत का कलेक्टिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। तो साथियों, आज का इको स्विच का चैलेंज ये है कि अगले 7 दिन के लिए कोशिश करें कि प्लास्टिक बॉटल्स खरीदने के बजाय अपनी रीयूजेबल बॉटल साथ रखें, और हमें बताएं क्या आप अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में रीयूजेबल बॉटल्स यूज करते हैं, या अभी भी अक्सर बॉटल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं भाई। मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107 कतर। याद रखिए, एक बॉटल जो हम दोबारा यूज करते हैं, वो सिर्फ प्लास्टिक नहीं बचाती, बल्कि नेचर पर एक छोटा सा बोझ भी कम कर देती है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देश से।
1: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें। आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें, छुरियां

0: और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छोटी-छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों। गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है। मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ हो। ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107। FM 107
2: दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है जल्दी माफ करने की अहमियत के बारे में। माफ कर देना एक ऐसी खूबी है जो दिल को हल्का और जिंदगी को आसान बनाती है। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों को दिल पर लेकर बैठ जाते हैं और अंदर ही अंदर टेंशन और दुख का सबब बनता रहता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि माफी देना बदला लेने से ज्यादा बेहतर है। जब हम किसी को माफ कर देते हैं तो असल में हम अपने आप को आजाद कर लेते हैं। जल्दी माफ करने वाला इंसान ज्यादा सुकून में रहता है और उसके रिश्ते भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। हर किसी से गलती होती है, इसलिए दूसरों की गलतियों को इग्नोर करना और उन्हें समझना जरूरी है। आज का अमल ये है कि किसी एक शख्स को दिल से माफ कर दें और अपने दिल को हल्का करें। आज का मैसेज, आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आरजे मावश, फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
1: आप सुन रहे हैं FM 107। FM 107
2: दिल से देसी। One step to 2030.
4: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया। और आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर पर। एआई किस तरह से आने वाले दिनों में बिजनेसेस को और मजीद स्मार्टर और फास्टर बनाएगा। देखिए, आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रेंड नहीं है बल्कि बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का आज के दौर में सबसे ज्यादा पावरफुल टूल बन चुका है। पहले कंपनीज को डेटा एनालाइज करने, कस्टमर क्वेरीज हैंडल करने और बिजनेस डिसीजंस लेने में बड़ा वक्त लग जाता था, लेकिन एआई ने इन तमाम कामों को ज्यादा फास्ट, एक्यूरेट और एफिशिएंट बना दिया है। अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा जादुई चिराग है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने पर, सीखने पर और फैसला लेने में मदद करता है। इसका मकसद इंसान को रिप्लेस करना नहीं है बल्कि उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। देखिए, आज हर कंपनी के पास बहुत ज्यादा डेटा होता है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन सिर्फ डेटा रखना काफी नहीं, उस डेटा से सही इंफॉर्मेशन निकालना जरूरी होता है। AI कुछ सेकंड्स में लाखों रिकॉर्ड्स एनालाइज करके कंपनीज को वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकती है। मिसाल के तौर पे, अगर एक रिटेल कंपनी के पास हजारों कस्टमर्स का परचेज डेटा मौजूद है, AI ये प्रिडिक्ट कर सकती है कि अगले महीने कस्टमर्स किस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा करेंगे। इससे कंपनी अपना जो इन्वेंट्री प्लानिंग है वो बेहतर कर सकती है और स्टॉक आउट या ओवर स्टॉकिंग से भी बचा जा सकता है ना? इसी तरह अगर मैं बैंक्स के एग्जांपल दूं, तो बैंक्स एआई के जरिए फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है तो एआई फॉरन अलर्ट जनरेट कर देता है, इससे कस्टमर्स का पैसा और डेटा दोनों सिक्योर रहते हैं। वहीं अगर बिजनेसेस में कस्टमर सर्विस की मैं बात करूं, तो आजकल बहुत सी कंपनीज AI-powered chatbots यूज करती हैं।

जब कस्टमर वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप पर सवाल करते हैं तो चैट बॉट फौरन जवाब दे देता है. सोचिए अगर एक टेलीकॉम कंपनी के पास रोजाना 10,000 कस्टमर्स क्वेरी आती हैं और अगर हर कस्टमर को ह्यूमन एजेंट मतलब ह्यूमन ही हैंडल करे तो बहुत वक्त लगेगा. लेकिन AI चैटबॉट जो है वो 24/7 काम करता है, इंस्टेंट रिस्पांस देता है और सिंपल इश्यूज को तो खुद अपने ही लेवल पर फौरन सॉल्व कर देता है. इसका फायदा ये होता है कि कस्टमर्स को वेट नहीं करना पड़ता और कंपनी की ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो जाती है. वहीं अगर मैं बात करूँ रिटेल इंडस्ट्री में AI की, तो रिटेल सेक्टर AI से सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है. अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि वेबसाइट आपको कुछ रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स भी दिखाती है. ये AI का ही तो काम है भाई, AI का कमाल है ये. मिसाल के तौर पे अगर कस्टमर ने सोफा परचेज किया तो AI उसको मैचिंग कर्टन्स, कारपेट्स, होम एक्सेसरीज खुद ब खुद सजेस्ट करते हैं. इससे होता ये है कि कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर होता है और कंपनी की सेल्स भी इंक्रीज होती है. बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इसको पर्सनलाइज भी कर चुकी हैं. वहीं अगर मैं हेल्थ केयर में बात करूं तो AI सिर्फ बिजनेस तक नहीं है, हेल्थ केयर सेक्टर में भी AI रेवोल्यूशन ला रहा है. डॉक्टर्स AI की मदद से एक्सरेज, मेडिकल रिपोर्ट्स और तेजी से चीजों को एनालाइज करते हैं. कई केसेस में AI डिजीजेस के अर्ली सिम्टम्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो इंसान की नजर से मिस हो जाते हैं. इसका मतलब है बेटर डायग्नोस, फास्टर ट्रीटमेंट एंड बेटर हेल्थ. यस, तो देखिए यहाँ पर AI का रोल जो है वो बड़ा ही कमाल का चल रहा है. स्मार्ट सिटीज पत्थर जैसी कंट्री में स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव्स जो है वो तेजी से ग्रो कर रहे हैं. AI ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, एनर्जी सेविंग हो या पब्लिक सर्विसेज हो, इन सबको बेहतर बनाने में AI का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. मिसाल के तौर पे AI ट्रैफिक कैमरा से डेटा कलेक्ट करके सिग्नल्स को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकती है जिससे ट्रैफिक कंजेशन बच सकता है. इसी तरह स्मार्ट बिल्डिंग्स में AI इलेक्ट्रिसिटी और एयर कंडीशनिंग को ऑप्टिमाइज करती है जिससे एनर्जी सेव होती है. वहीं पर AI फ्यूचर जॉब्स को लेकर कितनी डिबेट होती है. देखिए बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि AI जॉब्स खत्म कर देगा. हकीकत ये है कि AI कुछ रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट करेगा लेकिन साथ ही नई जॉब्स, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी. फ्यूचर में AI स्पेशलिस्ट, डेटा एनालिसिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट्स की डिमांड बहुत ज्यादा होगी. इसीलिए प्रोफेशनल्स को AI से डरने की बजाय उसे सीखना चाहिए और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए. ये दोस्तों आने वाले 5 से 10 सालों में AI हर इंडस्ट्री की बुनियादी हिस्सा होगा. कंपनीज जो AI को अडॉप्ट कर लेंगी वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव, इफिशेंट और प्रॉफिटेबल होंगी. AI आपके डिसीजन मेकिंग को फास्टर बनाएगी, कस्टमर एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करेगी और इनोवेशन के नए दरवाजे खोलेगी. तो बस एकदम कंक्लूड करते करते मैं यही कहूंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेसेस को स्मार्टर बनाती है क्योंकि ये डेटा को समझने का एक बेहतर तरीका प्रोवाइड करती है और फास्टर होती है जिससे टाइम की जो है वो बचत होती है. AI मिनट्स में, सेकेंड्स में सारी चीजों को कम्प्लीट कर देता है. फ्यूचर इन कंपनीज का होगा जो टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करेंगी, इनोवेशन को अपनाएंगी और AI को अपनी बिजनेस ग्रोथ का पार्टनर बनाएंगी. AI अब फ्यूचर नहीं, आज की रियलिटी है और जो इसे समझ लेगा वो कल की रेस में सबसे आगे दौड़ रहा होगा शकीब भाई की तरह. फिलहाल मुझे और शकीब भाई हम दोनों को यहाँ से दीजिए इजाजत. देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107। दिल से

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो कतर पर खसूसी प्रोग्राम MOI, जहां हम आप तक पहुंचाते हैं रियासत कतर की वजारत दाखिला की जानिब से शाये की गई अहम तरीन खबरें और अवामी खिदमात से मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात। तो आइए शुरू करते हैं हफ्तावार प्रोग्राम MOI की न्यूज अपडेट्स।
3: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर।
2: वज़ीर मम्लकत बराए उमूर दाखिला शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन फैसल बिन मोहम्मद अल सानी ने मुतअद्दिद फर्स्ट डिप्टी अफसरान को सेकंड लेफ्टिनेंट के ओहदे पर तरक्की देने और उनकी फौजी हल्फ बरदारी की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वज़ारत दाखिला अपने कौमी कैडर्स को आला तरीन पेशावराना मेयार के मुताबिक तैयार करने और उनकी सलाहियतों को फरोग देने के लिए पुरअज़म है। मजीद उन्होंने इस बात की वजाहत की कि फौजी नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी और फराइज की अंजामदही में इखलास सिक्योरिटी निज़ाम की कारकर्दगी और सलाहियत को मजीद बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। वज़ीर मम्लकत बराए उमूर दाखिला ने तरक्की पाने वाले अफसरान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए ये उम्मीद जाहिर की कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ कामयाबी से अंजाम देंगे और वतन की खिदमत में अपना मुअस्सर किरदार अदा करेंगे। रियासत कतर ने कौमी इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी की नुमाइंदगी में खलीज तआवुन काउंसिल की मुत्तहिदा दहशतगर्द फहरिस्त से मुतालिक खलीजी कमेटी के 19वीं इजलास में शिरकत की। ये इजलास ब्रदर मुल्क ममलकत सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में खलीज तआवुन काउंसिल के जनरल सेक्रेटेरिएट के सदर दफ्तर में मुनाकिद हुआ। इजलास में कौमी कमेटी बराए इंसदाद दहशतगर्दी के सेक्रेटरी ब्रिगेडियर खालिद अली अलकावी ने कतरी वफद की क्यादत की। इजलास के दौरान एजेंडे में शामिल मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिनका ताल्लुक इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में खलीज ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक के दरमियान ताउन और हम आहंगी को मजीद मजबूत बनाने से था। इजलास के इख्तिताम पर ज़ेर बहस उमूर से मुतालिक मुनासिब सिफारिशात भी मंजूर की गईं। रियासत कतर ने खलीज ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक की पुलिस स्पोर्ट्स फेडरेशन के सरबराहान की कमेटी के 13वें इजलास में शिरकत की। ये इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुनाकिद हुआ। इजलास में वज़ारत दाखिला के वफद की क्यादत कतर पुलिस स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदर

मेजर जनरल खालिद बिन हमद अल अतिया ने की। इजलास के दौरान एजेंडे में शामिल मुख्तलिफ मौजूआत पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि ज़ेर बहस उमूर से मुतालिक मुनासिब सिफारिशात भी मंजूर की गयी। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ कोस्ट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी के ज़ेर एहतमाम अफसरान के लिए पहले पिस्तौल शूटिंग चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। इनफरादी और टीम मुकाबलों पर मुश्तमिल ये चैंपियनशिप 3 रोज तक जारी रही, जिसमें मुख्तलिफ रैंक्स के 33 अफसरान ने शिरकत की। ये अफसरान जनरल डायरेक्टरेट ऑफ कोस्ट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी के मुख्तलिफ इदारों और शोबों की नुमाइंदगी कर रहे थे। चैंपियनशिप का मकसद अफसरान की फील्ड तैयारी को मजीद बेहतर बनाना, निशानाबाजी की महारतों को फरोग देना और उनके दरमियान मुस्बत मुसाबकत के जज्बे को मजबूत करना था। चैंपियनशिप के अख्तिताम पर जनरल डायरेक्टर ऑफ कोस्ट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी कर्नल स्टाफ मेरिन हसन अहमद असलेती ने कामयाब अफसरान को एजाजात से नवाजा। इस मौके पर मुख्तलिफ इदारों के डायरेक्टर्स और शोबों के सरबराहान भी मौजूद थे। पुलिस एकेडमी ने रॉयल एडिनबरा मिलिट्री टैटो 2026 में शिरकत के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बैनुल अक्वामी शिरकतों के लिए मिलिट्री डिस्प्ले कमेटी के सरबराह कैप्टन अब्दुल्ला अहमद असबेई के मुताबिक पुलिस एकेडमी की टीम इस वक्त एडिनबरा कैसल में मौजूद है, जहां दुनिया के कदीम और मारूफ फौजी फेस्टिवल्स में शुमार होने वाला ये बैनुल अक्वामी इवेंट मुनाकिद हो रहा है। ये फेस्टिवल गुज़श्ता 76 बरसों से जारी है, जिसे सालाना 2,20,000 से ज़ायद अफराद बराह रास्त देखते हैं, जबकि दुनिया भर में उसके नाज़रीन की तादाद तकरीबन 10 करोड़ तक पहुंचती है। पुलिस एकेडमी के एडिनबरा में शिरकत उसके बैनुल अक़वामी सफर का तसलसल है, जिससे कबल टीम स्विट्ज़रलैंड के बाज़ल टैटो फेस्टिवल और दोहा इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ मिलिट्री म्यूजिक एंड परफॉर्मेंस में भी हिस्सा ले चुकी है। इन बैनुल अक़वामी तजुर्बात ने टीम की महारत और तैयारी को मजीद बेहतर बनाया है, जबकि नज़्म व ज़ब्त, अज़्म और इज्तिमाई काम जैसे अकदार को भी मजबूत किया है। पुलिस एकेडमी के मुताबिक फौजी परेड महज हरकत की नुमाइश नहीं, बल्कि सिक्योरिटी अहलकार के नज़्म व ज़ब्त, किरदार और पेशावराना अकदार की अमली तस्वीर है। एडिनबरा में एकेडमी की टीम रियासत कतर की नुमाइंदगी करते हुए ऐसी कारकर्दगी पेश करेगी जो कतरी सिक्योरिटी अहलकारों की महारत और आला सलाहियत की अक्कासी करेगी। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स के सर्च एंड फॉलोअप डिपार्टमेंट ने वाजिबुल अदा रुकून यानी फाइनेंशियल क्लेम्स की अदायगी के लिए एक आसान ऑनलाइन सहूलत फराहम की है, जिसके जरिए मुतालिका अफराद वजारत दाखिला की वेबसाइट या मित्राश ऐप के जरिए अपनी वाजिबुल अदा रुकून अदा कर सकते हैं और इस मकसद के लिए मुतालिका इदारे में जाने की जरूरत नहीं। वजारत दाखिला की वेबसाइट के जरिए सर्विस इस्तेमाल करते हुए सारिफ वीजा नंबर, स्पॉन्सर नंबर या इदारे का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके मुतालिका रिकॉर्ड तलाश कर सकता है। उसके बाद अदा किए जाने वाले वाजिबात मुंतखब किए जाते हैं, जिनमें फीस, जुर्माने और फिजाई टिकट के खराजात शामिल हैं, और फिर क्रेडिट कार्ड की तफसीलात दर्ज करके अदायगी मुकम्मल की जा सकती है। इसी तरह मित्राश ऐप के जरिए अदायगी के लिए सिक्योरिटी सेक्शन में जाकर फाइनेंशियल क्लेम्स का इंतखाब करें, उसके बाद पर्सनल या एस्टेब्लिशमेंट मुंतखब करें, फिर फीस एंड फाइंस या टिकट्स में से मतलूबा ऑप्शन का इंतखाब किया जाए। आखिर में मुतालिका रिकॉर्ड मुंतखब करके वाजिबुल अदा रकम अदा की जा सकती है। मित्राश ऐप ने स्पॉन्सर अप्रूवल के अमल को मजीद आसान बना दिया है। अब चाहे किसी रेसिडेंट को नए एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर करना हो या मुल्क से बाहर क्याम की मुद्दत के हवाले से एक्सेप्शन दरकार हो, ये तमाम कार्रवाई चंद आसान मराहिल में मुकम्मल की जा सकती है। इस सहूलत से फायदा उठाने के लिए सबसे पहले होम स्क्रीन से रेसिडेंसी का ऑप्शन मुंतखब करें, फिर चेंज एम्प्लॉयर पर जाकर इशू स्पॉन्सर अप्रूवल पर टैप करें, उसके बाद मुतल्लिका रेसिडेंट का QID नंबर दर्ज करें। अगर दरख्वास्त नए एम्प्लॉयर के पास मुंतकली के लिए है तो टाइप ऑफ NOC में चेंज टू न्यू एम्प्लॉयर मुंतखब करें, जबकि मुल्क से बाहर कानूनी मुद्दत के हवाले से रियायत दरकार हो तो उसी मेनू से लीगल पीरियड आउटसाइड कंट्री का ऑप्शन मुंतखब किया जा सकता है। आखिर में दरख्वास्त की तमाम तफसीलात अच्छी तरह रिव्यू करें और मालूमात दुरुस्त होने पर नेक्स्ट पर टैप करें, उसके बाद स्पॉन्सर अप्रूवल NOC कामयाबी के साथ इशू हो जाएगी। मौसम गर्मा में सफर, समंदरी सरगर्मियों, स्विमिंग पूल्स और तफरीही मकामात पर आमद और रफ्त के साथ साथ गाड़ियों और अवामी सहूलियात का इस्तेमाल

बढ़ जाता है, जबकि इस दौरान छोटे छोटे हिफाजती इकदामात पर तवज्जो देना भी जरूरी हो जाता है। घर से निकलने से पहले बिजली की तारों और कनेक्शंस की हिफाजत यकीनी बनाएं और गैर जरूरी बर्की आलात बंद करके उनके प्लग निकाल दें। एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बाकायदा देखभाल करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि स्मोक डिटेक्टर दुरुस्त तौर पर काम कर रहा हो। मजीद घर में काबिल इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर भी मौजूद हो। रवाना होने से पहले गाड़ी के टायरों की हालत जरूर चेक करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि गाड़ी के अंदर कोई आतिशगीर मवाद मौजूद न हो। समंदर या स्विमिंग पूल के करीब बच्चों को कभी भी बगैर निगरानी के न छोड़ें। जरूरत के मुताबिक लाइफ जैकेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और अगर समंदरी सफर का इरादा हो तो रवानगी से पहले मौसम की सूरत हाल जरूर मालूम करें।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सुनिए, क्या आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे, हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? फ्रॉम स्मार्ट सिटीज टू सेविंग प्रेशियस वाटर, डेजर्ट को ग्रीन करने के आइडियाज से लेकर सस्टेनेबल लिविंग तक, हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
1: सोचो मत, जुड़ जाओ, बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो कतर को बना रहा है लीडर इन सस्टेनेबिलिटी। ट्यून इन टू कतर ग्रीन बीट विद ए फॉर अमिता। फ्यूचर की आवाज आज सुनो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ कतर ग्रीन बीट पर। तो आज की कतर ग्रीन बीट की बीट्स क्या कहती है, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछूंगी कि कैसे हैं आप, कैसा गुजर रहा है आपका ये वीक? हाँ, और मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ। और आज की जो बात है ना, वो कुछ इस तरह से है कि आज हम अपनी उस लेगेसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका जिक्र अभी सिर्फ हमारे कतर में ही नहीं लेकिन दुनिया भर में हो रहा है। कभी कभी जब मैं शाम को लुसैल या अल जनूब के पास से गुजरती हूँ ना, तो मुझे अब भी वही पुरानी इंटेंसिटी महसूस होती है। वो लोगों का जुनून, स्टेडियम में गूंजते फैंस की आवाज़ें और हिस्ट्री बनते देखने का वो एक अलग ही जुनून, या यूँ कह सकते हैं एक अलग ही खुमार। क्या खूबसूरत बात थी उस टाइम पर, है ना? ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो जब पूरी दुनिया की नज़रें सिर्फ हम पर टिकी थी। लेकिन अब जब फाइनल विसल बज चुकी है और फैंस अपने घर जा चुके हैं ना, तब एक नया सफर शुरू हुआ है। बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि इन बड़े बड़े जायंट्स का क्या होगा, क्या ये स्टेडियम सिर्फ यादों का हिस्सा बनकर रह जाएंगे? नहीं जनाब, कतर ने सिर्फ स्टेडियम्स नहीं बनाए, हमने

0: यूं कहें हमने एक लेगेसी तैयार की है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज हम बात करेंगे स्टेडियम लेगेसी की। हम देखेंगे कि कैसे हर एक ईंट और हर एक सीट को 2030 के फ्यूचर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। तो चलिए इस खूबसूरत खेल के जरिए एक खूबसूरत फ्यूचर की तरफ बढ़ाते हैं हम अपने कदम और अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं कतर ग्रीन बीट पर। तो कहीं ना जाएं, बने रहे FM 107 पर दिल से देसी।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
0: कतर ग्रीन बीट। वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं अमिता आपके साथ। और अब कतर ग्रीन बीट पर चलिए बात करते हैं द ग्रीन वायर की। तो जनाब, क्या आपने कभी सोचा है कि स्टेडियम का DNA कैसा होता है? अक्सर स्टेडियम पत्थर, सीमेंट और कंक्रीट से बनते हैं, भारी भरकम और हमेशा के लिए एक ही जगह टिके हुए। लेकिन आज मेरे पास एक ऐसी इंजीनियरिंग की कहानी है जो किसी साईफाई मूवी या मार्वल फिल्म से कम नहीं लगेगी। मैं बात कर रही हूँ हमारे सबसे अनोखे, सबसे वाइब्रेंट और सबसे स्मार्ट स्टेडियम की, स्टेडियम 974। जब मैं पहली बार राज अबू अबूद के पास से गुजरी और दूर से इस स्टेडियम को देखा तो मुझे यकीन ही नहीं आया। वो कलरफुल कंटेनर्स, वो स्टील का फ्रेमवर्क, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने समुंदर के किनारे एक जायंट, वो जो बच्चों के ब्लॉक्स गेम होते हैं ना, उसका सेट तैयार कर दिया हो। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये कतर के माइंडसेट का एक जीता जागता सबूत है। आपने कभी सोचा है कि इसका नाम 974 ही क्यों रखा गया? इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत फिलॉसफी है। सबसे पहले तो ये हमारा इंटरनेशनल डायलिंग कोड है, कतर की पहचान है। जब भी कोई बाहर से फोन करता है तो 974 डायल करता है। लेकिन इसका दूसरा राज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस स्टेडियम को बनाने में एग्जैक्ट 974 रिसाइकल्ड शिपिंग कंटेनर्स का इस्तेमाल हुआ है। इमेजिन कीजिए वो कंटेनर्स जो कभी समुंदर में बड़े बड़े जहाजों पर सामान ढोते थे, आज उन्होंने मिलकर एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम बना दिया। ये दुनिया का पहला ऐसा कवर्ड फुटबॉल स्टेडियम है जो पूरी तरह डीमाउंटेबल है, यानी इसका एक एक हिस्सा, एक एक कंटेनर और स्टील का एक एक बोल्ट खोला जा सकता है। ये कोई परमानेंट बर्डन नहीं है हमारे ज़मीन पर, बल्कि एक टेम्प्ररी इंतज़ाम है या एक टेम्प्ररी अरेंजमेंट है जो बेमिसाल है। इसने ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट सिस्टम में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। क्या कमाल की बात है। और ये रेटिंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ट्रेडिशनल स्टेडियम को बनाने में जितना कंक्रीट और पानी जाया होता है, 974 ने उसका एक छोटा सा हिस्सा ही यूज किया। इसने कार्बन फुटप्रिंट को इतना कम कर दिया कि दुनिया भर के इंजीनियर्स आज कतर की मिसाल दे रहे हैं। तो जनाब, असली करिश्मा इसकी कंस्ट्रक्शन में नहीं बल्कि इसकी लेगेसी में है। अक्सर बड़े टूर्नामेंट्स के बड़े स्टेडियम वाइट एलिफेंट्स बन जाते हैं, यानी ऐसी इमारतें जो खाली पड़ी रहती हैं और जिनका मेंटेनेंस बहुत महंगा होता है। लेकिन स्टेडियम 974 का डेस्टिनी कुछ और ही है। इसके हिस्सों को बिल्कुल जैसे बच्चों के ब्लॉक गेम्स होते हैं, उसकी तरह अलग किया जाएगा। और पता है क्या होगा, ये कंटेनर्स और ये स्टील फ्रेम्स डेवलपिंग नेशंस में भेज दिए जाएंगे ताकि वहाँ के बच्चों के लिए छोटे स्पोर्टिंग वेन्यू, स्टेडियम या हेल्थ सेंटर्स बनाए जा सकें। हमने सिर्फ कतर के लिए स्टेडियम नहीं बनाया, हमने दुनिया के लिए एक स्टेडियम इन अ बॉक्स तैयार किया है। तसव्वुर कीजिए, आज जो कंटेनर हमारे दोहा में बैठकर हमें मैच दिखा रहा है, कल वही कंटेनर किसी और मुल्क में एक नया स्पोर्ट्स स्टार पैदा कर रहा होगा। क्या ये एनवायरनमेंट और इंसानियत के प्रोटेक्शन के लिए एक बेहतरीन कदम नहीं है? ये है कतर की असली पावर, सोच और अमल का सही मेल। जब मैं 974 के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हम सबको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा 974 होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, रिसोर्सफुल और हमेशा कुछ नया देने के लिए तैयार। हम अक्सर चीज़ों को परमानेंट

0: समझ लेते हैं, लेकिन असली खूबसूरती तब है जब हम रिसोर्सेज को इतने ध्यान से यूज करें कि हमारे जाने के बाद भी वो किसी और के काम आ सके। तो आज का मेरा सवाल आप सबसे यही है कि आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में क्या रीयूज कर सकते हैं? क्या आपके पास भी कोई ऐसी चीज है जो आज आपका काम कर रही है लेकिन कल किसी और की जिंदगी बदल सकती है? स्टेडियम 974 ने हमें सिखाया है कि इंजीनियरिंग सिर्फ लोहे और प्लास्टिक का खेल नहीं है, ये एक वादा है, एक प्रॉमिस हमारी आने वाली नस्लों से है। कीप दिस थॉट इन योर हार्ट, हाँ जी, कि स्टे सस्टेनेबल स्टे ग्रीन, बिल्कुल। और ये जो वादा हमने अभी किया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जरिए, मुझे लगता है कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो भी इसे एक मिसाल की तरह इस्तेमाल करेगी और अपनी लाइफ को और सूदिंग बनाएगी। और मैं हूँ आपकी अमिता, आपके साथ, आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट। आगे भी हमारी बातें बहुत सारी हैं बाकी, सो स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107, दिल से देसी।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
0: कतर ग्रीन बीट, वेलकम वंस अगेन, आप सुन रहे हैं अपनी अमिता को कतर ग्रीन बीट पर। अब वक्त है हमारे प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट का। जी हाँ, आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। याद कीजिए, जब कतर को होस्ट चूज किया गया था इन 2022, तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या था? सब एक ही बात कर रहे थे कि इतनी गर्मी में फुटबॉल कैसे खेला जाएगा। उफ, लोग कह रहे थे कि इस डेजर्ट की धूप में प्लेयर्स थक जाएंगे और फैंस बेहाल हो जाएंगे। लेकिन कतर ने एक बहुत बड़ा वादा किया था, हम ना सिर्फ कूलिंग देंगे बल्कि हमारा टूर्नामेंट कार्बन न्यूट्रल होगा। अब ये तो वही बात हो गई कि आपको आग भी जलानी है और धुआं भी नहीं निकालना। हाँ, बहुत से लोगों को लगा कि ये नामुमकिन है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कतर की मिट्टी में ऐसे जीनेसिस बेस है जो नामुमकिन को एक चैलेंज की तरह लेते हैं। और यहाँ एंट्री होती है हमारे रियल लाइफ सुपर हीरो की, जिन्हें दुनिया आज डॉक्टर कूल के नाम से जानती है, यानी डॉक्टर साउद घानी। उनकी और गल्फ ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम ने दिन रात एक कर दिए, एक ऐसा रास्ता निकाला जो सस्टेनेबल भी हो और असरदार भी। इन्होंने कूलिंग के पुराने तरीकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। डॉक्टर साउद ने सोचा, हमें पूरे आसमान को ठंडा करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ वहां ठंडक चाहिए जहां लोग हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्पॉट कूलिंग। ये एक रेवोल्यूशनरी सोलर पावर्ड सिस्टम है जो कन्वेंशनल एसी मेथड से पूरे 40% कम एनर्जी कंज्यूम करता है। डॉक्टर साउद ने एरोडायनामिक्स का इस्तेमाल करके स्टेडियम को एक असली ठंडी थैली या यूं कहें कूल बबल में बदल दिया, जहां बाहर की गर्म हवा अंदर आ ही नहीं सकती। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी जनाब, ये स्ट्रेटजी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अमिता ये काम कैसे करता है, तो चलिए मेरे साथ इमेजिन कीजिए और अब आगे बढ़ के थोड़ा सा और डिटेल में हम इसकी जानकारी लेते हैं। जैसे कि अल जनूब और एजुकेशन सिटी इनके स्टेडियम्स हैं। स्टेडियम से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा सोलर फार्म लगा है, ठीक है, वहाँ कतर की तेज सूरज की रोशनी से बिजली बनती है। वही बिजली ठंडा पानी जनरेट करती है जो स्टेडियम के अंदर पाइपिंग के जरिए आता है, लेकिन असली मैजिक सीट्स के नीचे है। अगर आप कभी स्टेडियम गए हैं तो आपने देखा होगा कि हर सीट के नीचे छोटे छोटे वेंट्स हैं, वहां से ठंडी हवा बिल्कुल धीरे से निकलती है, इतने धीरे कि प्लेयर्स को या फैन को डिस्टर्ब ना हो, लेकिन इतनी असरदार कि आपको पसीना ना आए। और सबसे बेहतरीन बात, ये सिस्टम हवा को रीसाइकल करता है। ठंडी हवा स्पेक्टेटर लेवल पर आती है, फिर ऊपर जाती है, वहां से मशीन उसे वापस खींच लेती है, दोबारा ठंडा करती है और वापस भेज देती है। कुछ भी जाया नहीं होता, ये एक इटर्नल साइकिल है जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना हमें सुकून देता है। तो जनाब, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ फुटबॉल स्टेडियम के 90 मिनट्स तक लिमिटेड नहीं है, इसकी असली

यूटिलिटी तो अब नजर आ रही है. आज यही टेक्नोलॉजी हमारे लोकल ग्रीन हाउसेस में यूज हो रही है. सोचिए हमारे जो फार्मर्स हैं जो कतर की गर्मी में भी साल भर सब्जियां और फ्रूट्स या यूं कहें फल उगा सकते हैं, वो भी कम एनर्जी खर्च किए. इसका मतलब है हमारी फूड सिक्योरिटी और भी मजबूत हो रही है. इतना ही नहीं, अगर आप कटारा गए हैं या 21 हाई स्ट्रीट पर वॉक कर रहे हैं तो वहाँ की आउटडोर कूलिंग इसी टेक्नोलॉजी की देन है. कतर ने दुनिया को लीड करके दिखा दिया है कि डेजर्ट में रहने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बंद कमरों में रहें. हमने आउटडोर स्पेसेस को सस्टेनेबल बनाया है ताकि हमारी नेचर, हमारा लाइफस्टाइल दोनों साथ साथ चल सके. और जनाब, डॉक्टर कोल की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान की लगन और साइंस मिलते हैं ना, तो कोई भी मौसम हमें रोक नहीं सकता. हमने सूरज की गर्मी को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया, सनलाइट से ही ठंडक पैदा की. ये कतर नेशनल विजन 2030 का एक बहुत बड़ा पिलर है. हम दिखा रहे हैं कि हम सिर्फ कंज्यूम नहीं करते, हम इनोवेट करते हैं. हमने दिखा दिया कि साइंस और नेचर जब एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है. तो अगली बार जब आप स्टेडियम में बैठकर वो ठंडी हवा महसूस करें तो याद रखिएगा, वो सिर्फ एसी नहीं है, वो कतर का एक वादा है एक बेहतर और ठंडे फ्यूचर के लिए. हाँ जी, मैं हूँ अमिता आपके साथ, आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट. अब आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की. आज हमारे स्टेडियम्स का एक ही कहना है, हाँ, रीयूज रीयूज और रीयूज. और यही सबक हमें अपने घरों तक ले जाना है. चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप इस स्टेडियम लेगेसी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. तो द गियर गिव बैक. हाँ जी, आपके पुराने फुटबॉल बूट्स या जर्सी जो अब छोटे हो गए हैं, उन्हें डस्टबिन में मत फेंकिए. कतर चैरिटी और एजुकेशन अबव ऑल के ऐसे ही प्रोग्राम्स हैं जो इस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को उन बच्चों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. तो आपकी पुरानी चीज किसी का ख्वाब बन सकती है. लोकल पिच लव. हाँ जी, हम सब कम्युनिटी पार्क्स और पिचेस यूज करते हैं. याद रखिए, इनमें से कई वेन्यूज वर्ल्ड कप के मटेरियल से ही बने हैं. इन्हें इज्जत दीजिए, वहाँ रिसाइकल बिन्स का इस्तेमाल कीजिए और हमारे ग्रीन स्पेसेस को हमेशा साफ रखिए. होस्ट सस्टेनेबल गेम्स, यानी कि अगली बार जब आप अपने दोस्तों के साथ मैच ऑर्गेनाइज करें तो सिंगल यूज प्लास्टिक वाटर बॉटल्स को बाय बाय कहिए. सब लोग अपनी रीयूजेबल फ्लास्क साथ लेकर आए. अगर सिर्फ 22 प्लेयर्स एक गैलन पानी का यूज करते हैं तो हम साल के 1000 प्लास्टिक बॉटल्स बचा सकते हैं. तो सोचिए कितना बड़ा फर्क है. लुसेल का वो डेजर्ट रोज डिजाइन हो या अल्बेत का टेंट लाइक कैनोपी, हमारे स्टेडियम्स सिर्फ आर्किटेक्चर के नमूने नहीं हैं. ये एक प्रॉमिस है, ये एक वादा है जो पूरा किया गया है. इन्होंने दुनिया को दिखाया है कि मेगा इवेंट्स का मतलब मेगा वेस्ट होना जरूरी नहीं है. जैसे जैसे हम कतर नेशनल विजन 2030 की तरफ बढ़ रहे हैं, ये स्टेडियम्स हमारी इनोवेशन के मॉन्यूमेंट्स बनकर खड़े रहेंगे. ये हमें याद दिलाते रहेंगे कि सबसे बड़ी जीत स्कोरबोर्ड पर नहीं होती, असली जीत वो है जो लेगेसी है, जो हमें आने वाली नस्लों को, जनरेशंस को देनी है और उनके लिए बनानी है. वेल, मैं हूँ अमिता आपके साथ एंड आई एम वेरी सर्टेन कि आज का जो हमारा कतर ग्रीन बीट है उसका एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा. और अगर पसंद आया है तो क्या करना है, आपको अपने फीडबैक्स, अपने सजेशंस, अपने व्यूज हमसे शेयर करने हैं 666-22-107 पर, 666-22-107 पर, अपने नाम के साथ. और डेफिनेटली हम उन्हें ज़रूर कंसिडर करेंगे. और इसी के साथ अब आपको मुझे देना होगी इजाज़त, क्योंकि वक्त हो गया है मेरे जाने का. आपकी मेरी मुलाकात होगी कतर ग्रीन बीट के अब अगले एपिसोड में. तो जाने से पहले कहूँगी, हमारे सोशल मीडिया FM 107 से भी आप जुड़ सकते हैं और अपनी आरजे अमिता को सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं. और अभी के लिए ना खूब सारा ख्याल रखिए और याद रखिए कि ये जो गेम की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये हमारी लाइफस्टाइल है. रिस्पेक्ट द फील्ड, स्टे ग्रीन और कीप द बीट. स्टे ट्यून्ड.

0: FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: क्रिकेट हो
2: and he's hooked that away. That's four runs.
1: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
1: दोस्तों, रेकलेस और लापरवाह ड्राइविंग जिंदगियों और मालो दौलत के लिए एक सीरियस खतरा है और एक संगीन ट्रैफिक वायलेशन भी है, और इसके लिए सख्त सजाएं दी जाती हैं जिनमें कैद और गाड़ी की जब्त शामिल है। वजारत दाखला अपने इरादों का वाज़े तौर पर इजहार करती है कि वो ट्रैफिक कवानीन को मजीद मुसलसल तौर पर नाफिज करेगी ताकि कम्युनिटी की सिक्योरिटी और खुशहाली को महफूज रखा जा सके। रेकलेस और लापरवाह ड्राइविंग ना सिर्फ जिंदगियों को खतरे में डालती है बल्कि ये दूसरे लोगों के लिए भी मुसीबत का सबब बनती है। ऐसे रवैये सिर्फ ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं करते बल्कि समाजी और कौमी अमन और इत्मीनान को भी नुकसान पहुँचाते हैं। FM 107 इस बात की मुसलसल ताकीद करता है ताकि हम सब इससे सीखें और ऐसे रवैये इख्तियार ना करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
5: بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله.

प्रोग्राम्स को प्रमोट करना चाहिए और सिटीजन्स को अपना रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर का रोल प्ले करना चाहिए। टेक्नोलॉजी हमेशा इनोवेट करती रहेगी, नए गैजेट्स आते रहेंगे, लेकिन अगर हमने इस ई वेस्ट को रिस्पॉन्सिबली मैनेज नहीं किया तो हमारा प्लैनेट एक टॉक्सिक जंकयार्ड बन जाएगा। अब जरा कतर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। हम यहाँ रोज देखते हैं कि लोग अपने पुराने फोन्स, खराब फ्रिजेस या ओल्ड टीवीज को नए मॉडल के लिए रिप्लेस कर देते हैं विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। एक और एग्जांपल, घर में वो पुराना माइक्रोवेव जो काम नहीं करता या वो गेमिंग कंसोल जो अब बच्चे यूज नहीं करते, ये सब ई वेस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इन इलेक्ट्रॉनिक्स में जो केमिकल्स होते हैं, अगर हम उन्हें गलत तरीके से डिस्पोज करते हैं तो ये जमीन में जाके सॉइल और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं। ये पोल्यूशन ना सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हार्मफुल है बल्कि हमारे और हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए भी खतरा है। सो व्हाई इज सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट इन दिस केस? क्योंकि अगर हम आज ई वेस्ट को रिस्पॉन्सिबली हैंडल नहीं करेंगे तो कल के लिए साफ मिट्टी, साफ पानी और हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं बचेगा। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल सोच समझ कर करें और अपने प्लैनेट को फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रोटेक्ट करें। अब एक दफा फिर सवाल करते हैं खुद से कि हम कैसे कंट्रीब्यूट करें कतर में रहते हुए। सबसे पहले अवेयरनेस, अपने घर के आसपास देखें, क्या वहाँ कोई पुराना इलेक्ट्रॉनिक आइटम पड़ा है जो आपने सालों से यूज नहीं किया, उसे रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करने का प्लान बनाएं। दूसरा, रिपेयर बिफोर रिप्लेस। अगर आपका फोन या लैपटॉप थोड़ा सा खराब है तो उसे फिक्स करने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे। और तीसरा, लोकल रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स का फायदा उठाएं। कतर में कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो ई वेस्ट कलेक्ट करते हैं और उसे सेफ तरीके से रिसाइकल या डिस्पोज करते हैं। लेट्स टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट। हर एक गैजेट जो हम फेंकते हैं उसका इम्पैक्ट सिर्फ हम पर नहीं बल्कि हमारे प्लैनेट पर पड़ता है। सो लेट्स बी माइंडफुल, लेट्स बी रिस्पॉन्सिबल और लेट्स मेक चॉइसेस जो हमारी अर्थ को बेटर बनाए फॉर जनरेशंस टू कम। तो लिसनर्स, ये था हमारा मेन टॉपिक आज का, ई वेस्ट द हिडन टॉक्सिक प्रॉब्लम। एक तरफ टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ इजी बनाई है लेकिन दूसरी तरफ उसका हिडन साइड इफेक्ट हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए बहुत डेंजरस है। अभी बॉल हमारे कोर्ट में है, हम डिसाइड करते हैं कि हम अपने गैजेट्स को वेस्ट बनाकर एनवायरनमेंट को पॉइजन करते हैं या उन्हें रिस्पॉन्सिबली रिसाइकल करके एक क्लीन और ग्रीन फ्यूचर क्रिएट करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि आज जो फोन हम यूज कर रहे हैं कल वो या तो किसी और के काम आ सकता है या फिर जमीन को पॉइजन करने वाला एक टॉक्सिक बॉम्ब बन सकता है। चॉइस इज योर्स। चलिस्टर्स, यहाँ लेंगे हम एक ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं ग्रीन फ्लैश के साथ। सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
1: जिनसर्स वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर विद आरजे महविश खान. अब चलिए एक क्विक राउंड अप करते हैं दुनिया भर से सस्टेनेबिलिटी की लेटेस्ट अपडेट्स का. ये है हमारा ग्रीन फ्लैश सेगमेंट.
0: ग्रीन फ्लैश
1: स्टोरी नंबर वन है एक कंट्री है जहां रिसर्चर्स ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो ई वेस्ट से प्रीशियस मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर निकाल लेती है. जी हां, पुराने सर्किट बोर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक से ये मेटल्स एक्सट्रैक्ट करके एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से रीयूज किए जा रहे हैं. Isn't that amazing? स्टोरी नंबर टू है एक और सिटी ने रिसेंटली एक ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जहां रेजिडेंट्स अपने पुराने फोन्स और लैपटॉप्स के बदले डिस्काउंट्स या वाउचर्स ले सकते हैं. इससे ना सिर्फ वेस्ट कम होता है बल्कि लोग भी मोटिवेटेड होते हैं टू रिसाइकल रिस्पॉन्सिबली. स्टोरी नंबर थ्री एक ग्लोबल इनिशिएटिव ने अनाउंस किया है कि वो 2030 तक ई वेस्ट को 50% रिड्यूस करने का टारगेट रखते हैं बाय प्रमोटिंग रिपेयर कैफेज और रिसाइकलिंग हब्स दुनिया भर में. ये एक इंस्पायरिंग स्टेप है टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर. ये थी कुछ एक्साइटिंग अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. अगर आप भी कोई सस्टेनेबिलिटी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें 666-22-107 पर या फिर @FM107 कतर पर मैसेज भेजें. अब बारी है हमारे ग्रीन इनोवेशन स्पॉटलाइट की.
0: ग्रीन इनोवेशन.
1: अब हम बात करते हैं ऐसे कटिंग एज आइडिया की जो सस्टेनेबिलिटी के फ्यूचर को शेप कर रही है. ये है हमारा ग्रीन इनोवेशन स्पॉटलाइट. आज हम स्पॉटलाइट डाल रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर जो ई वेस्ट को अपसाइकल करता है. एक ग्रुप ऑफ इनोवेटर्स ने एक प्रोसेस बनाया है जिसमें पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स को ब्रेक डाउन करके

0: नए प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं जैसे रीसाइकल्ड प्लास्टिक से फर्नीचर या इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल्स ये ना सिर्फ वेस्ट को कम करता है बल्कि नए रिसोर्सेज के यूज को भी रिड्यूस करता है ये टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर है क्योंकि ये हमें दिखाती है कि ई वेस्ट सिर्फ कचरा नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड सस्टेनेबल सो लेट्स कीप सपोर्टिंग सच इनोवेशंस
1: इको लिविंग टिप्स
0: अब चलिए बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं टू टैकल ई वेस्ट ये है हमारा इको लिविंग टिप्स सेगमेंट Step number one, repair before you replace. अगर आपका फोन या लैपटॉप थोड़ा सा खराब है तो उसे फेंकने से पहले लोकल रिपेयर शॉप्स में चेक कराएं। शायद एक स्मॉल फिक्स से वो वापस काम करने लगे Tip number two is use recycling programs. कतर में कई सेंटर्स हैं जो e-waste कलेक्ट करते हैं अपने पुराने गैजेट्स वहां ड्रॉप करें instead of throwing them in regular trash. Tip number three is donate या sell. अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम अब भी काम करता है लेकिन आप उसे यूज नहीं करते तो उसे डोनेट कर दें या सेकेंड हैंड मार्केट में सेल कर दें समवन एल्स माइट नीड इट ये छोटे छोटे स्टेप्स आपकी डेली लाइफ में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं सो ट्राई देम आउट और हमें बताएं आपने क्या किया व्हाट्सएप करें 666-22-107 पर और अब हम सुनते हैं एक इंस्पायरिंग वॉइस जो हमारे प्लैनेट के लिए काम कर रही है ये है हमारा वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट सेगमेंट आज हम एक क्लिप सुनेंगे एक यंग एनवायरमेंटलिस्ट की जो ई वेस्ट रिडक्शन के लिए काम कर रही है
1: वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट
2: दिस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैज बिकम क्वाइट अ ह्यूज प्रॉब्लम And there seems to be actually no set protocol that ensures that electronic waste can, we can actually get rid of electronic waste properly. Do you believe that electronic comforts we are deriving, they're more of a trouble rather than convenience?
3: So with coming of technology, certain problems also come. This is with e-waste also.
0: अभी आपने सुना ये क्लिप और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी तरह आप भी खुद को बहुत ही इनकरेज फील कर रहे होंगे और अब आपने डेफिनेटली ये इरादा कर लिया होगा कि आप लोगों को भी इनकरेज करेंगे कि वो अपने जो भी पुराने आइटम्स हैं उनको रिसाइकिल करें रिपेयर करें और उनको इस तरह से ना फेंकें और इस तरह हम अपना रोल अदा कर सकें टू रिड्यूस वेस्ट याद रखिए एवरी स्मॉल स्टेप काउंट्स लेट्स प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट टुगेदर अब हम चलते हैं आज के टेक अवे चैलेंज की तरफ
1: वीकली चैलेंज
0: इस हफ्ते का चैलेंज है नो न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स वीक जी हाँ इस हफ्ते कोशिश करें कि कोई नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना खरीदें इंस्टेड अपने पुराने गैजेट्स को रिपेयर कराएं रिसाइकिल करें या डोनेट करें और अगले हफ्ते हमें बताएं कि आपने ये चैलेंज कैसे कंप्लीट किया व्हाट्सएप करें 666-22-107 पर या @FM107 कतर पर मैसेज भेजें तो लिसनर्स ये था आज का सस्टेन द फ्यूचर का एपिसोड जहां हमने बात की ई वेस्ट के हिडन टॉक्सिक प्रॉब्लम्स के बारे में उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा और आप कुछ नए आइडियाज लेके जा रहे हैं टू लिव मोर सस्टेनेबली शुक्रिया आपका साथ देने के लिए अगला शो भी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है हम बात करेंगे ग्रीन आर्किटेक्चर बिल्डिंग फॉर टुमारो के बारे में हम डिस्कस करेंगे इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स और अर्बन प्लानिंग के बारे में विद एग्जांपल्स लाइक लुसेल सिटी की सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स सो डोंट मिस इट हमें अपना फीडबैक जरूर भेजें @FM107 कतर पर या व्हाट्सएप करें 666-22-107 पे तब तक के लिए स्टे ग्रीन स्टे सस्टेनेबल और अपना और अपने प्लैनेट का ख्याल रखें सी यू नेक्स्ट वीक मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय
1: सस्टेन द फ्यूचर
4: Anytime, anywhere.
5: Yes, anytime, anywhere.
4: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: घर, ऑफिस और हमारा वजूद सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है, तो इसलिए हम ला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म शोकेस करने के लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग वुमेन को। तो ट्यून इन कीजिए इंस्पायरिंग वुमेन विद आरजे नाजिया हर वेंसडे 5 बजे से 6 बजे तक और सुनिए उनके सफर को जो प्रूफ करती है कि पैशन और डेडिकेशन से कुछ भी

0: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं हूं नाज़िया एफएम 107 से एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल शो कॉल्ड इंस्पायरिंग विमेन.
1: इंस्पायरिंग विमेन, उसकी कहानी हर किसी को आगे बढ़ने की ताकत देती है.
0: दोस्तों, इस शो में हम आपको मिलवाते हैं ऐसी विमेन लीडर से जो अपने काम, अपने जज्बे और अपनी अप्रोच से सोसाइटी में फर्क ला रही हैं. आज हमारी मेहमान एक डायनामिक

0: एंटरप्रेन्योर हैं, फैशन, स्किन, सलोन बिजनेस और फिटनेस वर्ल्ड में उनका नाम धीरे धीरे ब्रांड बन रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आयशा राशिद, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन जिन्होंने कतर में अपने सलून चेन स्टैब्लिश की है, स्किन केयर और फैशन की फील्ड में नए स्टैंडर्ड्स को सेट किया है और साथ ही फिटनेस ट्रेनिंग को ब्यूटी इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट किया है। चलिए इनको वेलकम कहेंगे FM 107 पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसी हैं आप?
1: वालेकुम अस्सलाम नाज़िया, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर।
0: Pleasure to have you here and we are really looking forward for some very interesting and exciting conversations, inshallah. So Aisha, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने इतनी सारी fields में जो है वो कामयाबी हासिल की है, फिर चाहे fashion हो, skin care हो या आपका अपना setup हो, अपना initiative हो, इस सभी journey का सबसे बड़ा आपका secret success का क्या है?
1: सबसे बड़ा सीक्रेट जो होता है ना सक्सेस का, वो फैमिली सपोर्ट होती है। सो जब आप कुछ करने को सोचते हैं, कोई नया काम स्टार्ट करने को सोचते हैं एंड एज ए वूमेन, सो सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो होती है ना वो आपके हस्बैंड की होती है। सो हस्बैंड की और बच्चों की, क्योंकि जब कोई औरत बाहर निकलती है काम करने के लिए, उसको अपने घर से थोड़ा सा कट करना पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा जो मुझे सपोर्ट मिलती है वो अपनी फैमिली से मिलती है, क्योंकि उसके लिए आपको ट्रैवल भी करना है, बाहर भी जाना है, पूरे दिन बाहर रहना है।
0: ब्यूटीफुल। अच्छा, कतर का जो मार्केट है या उसका कल्चर जो है वो थोड़ा सा यूनिक है, और अगर सलों की बात की जाए तो ये चेन जो है इसे एस्टैब्लिश करना यहाँ इस कल्चर में थोड़ा सा चैलेंजिंग भी रहा होगा, तो किस तरह के चैलेंजेस को इनिशियली आपने फेस किया?
1: हाँ जी बिल्कुल, एक्चुअली यहाँ पे मिक्स कल्चर के लोग होते हैं, तो जब वो आते हैं सलोन में, सबकी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं, डिफरेंट माइंडसेट होता है उनका, तो उनको हैंडल करना, वो सारा क्रेडिट जो जाता है ना वो मेरी टीम को जाता है। मैं भी हैंडल करती हूँ, बट मोर इज अबाउट माई टीम, जो टीम है मेरी वो मेरी फैमिली है।
0: Oh, wow.
1: So they are with me 16 years. They are very expert के अरब नेशनल को किस तरह ट्रीट करना है, यूरोपियन को किस तरह, क्योंकि हर तरह का हमारे पास क्लाइंट आता है। सो उनको समझाना, उनको चीज़ें एक्सप्लेन करना, क्योंकि हबीब हेयर एंड ब्यूटी इट्स इंडियन फ्रेंचाइज, सो उसमें यूरोपियन भी आते हैं, अमेरिकन भी आते हैं और अरब्स भी आते हैं और हमारी एशियन कम्युनिटी भी आती है। सो सारा क्रेडिट जो है ये मेरी टीम को जाता है, वो बहुत अच्छी तरह उनको हैंडल करती है, उनको एक्सप्लेन करती है कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं। सो या
0: ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आयशा, थोड़ा हम आपको जो है ना आपके पास्ट में लेके जाना चाहेंगे, आपके चाइल्डहुड के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कोई ऐसी दिलचस्प बात आप हमें बताना चाहेंगी जिसने कहीं ना कहीं आपको मुतासर किया इस बिजनेस की तरफ आने के लिए?
1: बहुत ही फनी सी चीज़ है।
0: अच्छा ओके।
1: क्योंकि सलोन्स पे जाने मुझे ना बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना, अपने अच्छे बाल बनाना, अच्छे कपड़े पहनना बहुत शौक था सलोन्स पे जाने का। तो जब मैं सलोन्स पे जाती थी, आई वाज 17 और 18, सो वहाँ पे जब बिल बनता था ना तो मुझे बहुत
0: खलता था।
1: तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं मैं कोई इस तरह से कुछ करूँ, मैं अपना खुद का सलून खोलूँ। तो वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। सो मैंने अपने फैमिली को बोला कि मुझे सलून खोलना है, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। बहुत ही फनी सी चीज है, मुझे पैसे देते भी ना,
0: पैसे खल रहे थे। तो खल रहे थे। और जो सर्विसेज देती हैं वो काफी अफोर्डेबल हैं?
1: अफोर्डेबल बिल्कुल है, अफोर्डेबल। हमारे पास हर तरह के क्लाइंट्स आते हैं, देखिए, तो हमने सबके लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं, तो उसमें उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं अगर हम पैकेजेस देते हैं तो इतना ज़्यादा पेमेंट, क्योंकि सब तरह की कम्युनिटी है, सबको हमें हैंडल करना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी आए और वो सलोन से बिना सर्विस के बाहर जाए। सो 100% देने की कोशिश करती हूँ मैं भी और मेरी टीम भी उनको।
0: एक अच्छे बिजनेसमैन होने की निशानी है, बिजनेसमैन होने की
1: इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बस क्लाइंट हैप्पी होके जाए, सेटिस्फाइड होके जाए।
0: That's first and foremost. Beautiful. बहुत अच्छी बात की। अच्छा, जब आपने पहली बार अपना जो था प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उस वक्त का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? क्या कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि मुझे सब छोड़ देना चाहिए?
1: नहीं, ऐसा फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको खोला था तो एक्सपीरियंस तो मुझे बहुत था, क्योंकि मैं काफ़ी कोर्सेज करती रहती थी रिलेटेड टू ब्यूटी, रिलेटेड टू हेल्थ। आई एम ए योगा इंस्ट्रक्टर ऑल्सो, आई एम ए आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ऑल्सो, सो ये सब कोर्सेज मैंने करे हुए हैं, तो एक्सपीरियंस था, इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री में गई थी। सो

0: कोविड के टाइम पे इस तरह की चीजें हुई थी कि वो हैंडल नहीं हो पा रहा था. सो वो टाइम आया था, वो टाइम काफी डिफिकल्ट था कि हम लोगों के ऑलमोस्ट 5 फ्रंट लोकेशंस थी यहाँ पे जो कोविड टाइम पे हमें काफी मुश्किलें आई हैं. हमने उसको फिर बंद करा है तो आई थी इस तरह की सिचुएशन और काफी स्ट्रगल करना पड़ा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू नॉर्मल
1: अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, जब आप कोई अपना नया फैशन कलेक्शन या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट ऑफ कोर्स लॉन्च करती हैं तो उसका रिसर्च प्रोसेस कैसा होता है? क्या आप पर्सनली टेस्टिंग वगैरह में इन्वॉल्व हो पाती हैं?
0: बिल्कुल, ये स्टार्ट होता है क्लाइंट की फीडबैक से. Okay. कि क्लाइंट को उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको क्या चाहिए, फिर जब हमें पता चलता है तो फिर हम रिसर्च करते हैं. हम लोग ब्यूटी एग्जीबिशंस होती हैं लाइक सऊदी अरब में वर्ल्ड बिगेस्ट ब्यूटी एग्जीबिशन होती है दुबई में, उसको हम अटेंड करते हैं. वहाँ हम जाते हैं, मैं खुद पर्सनली जाती हूँ, अपने स्टाफ को भी लेके जाती हूँ और फिर वहाँ पे रिसर्च होती है, फिर हम उसके एक्सपर्ट से मिलते हैं, फिर हम अपने स्टाफ की ट्रेनिंग कराते हैं और फिर जब कोई चीज़ हमें समझ आती है उसको फिर मैं अपने ऊपर ट्राई करती हूँ. चाहे वो स्किन हो, चाहे वो हेयर हो, चाहे नेल्स हो, कुछ भी हो, सबसे पहले मैं अपने ऊपर उसको ट्राई करती हूँ. जब मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ, जब मुझे समझ आता है कि हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी स्किन केयर है, स्किन के लिए अच्छा है या बालों के लिए अच्छा है, तब मैं उसको उसमें सलून में लेके आती
1: हूँ. बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा इस शॉर्ट सॉन्ग ब्रेक.

0: मेरी जो अभी नई चीज़ है वो इंशाल्लाह दुबई में ओपनिंग होने वाली है. दोहा में प्लान मेरे हैं, नॉट नाउ बट मे बी आफ्टर 2 years और 3 years मैन से रिलेटेड सलून खोलने का.
1: ओके, बातचीत

0: घर, ऑफिस और हमारा वजूद, सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है।
1: आपके नजदीक सक्सेस का एक्चुअल में मतलब क्या है? What is success to you?
2: लोगों का प्यार? लोगों का जो प्यार है वही सक्सेस है। अगर आपको नजर आ रहा है कि हर जगह आपको लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सो आई थिंक मेरे लिए तो वही
1: सबसे इम्पोर्टेंट
2: सबसे इम्पोर्टेंट है।
1: वेरी वेल सर। अच्छा, आप क्या ये मानती हैं, समझती हैं कि जो इनर हीलिंग है या फिर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिजनेस सक्सेस के लिए अहम है?
2: बिल्कुल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनर हीलिंग आपकी जो होती है, जब आप अंदर से हेल्दी फील करेंगे, आप मेंटली रिलैक्स फील करेंगे, सो ऑफ कोर्स
1: इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, आपका खुद का मॉर्निंग रूटीन क्या रहता है? आर यू अ कॉफी पर्सन या फिर आपको चाय पसंद है? किस तरह से आप खुद को जो है ना हेल्दी रखती हैं और अपने मॉर्निंग की स्टार्ट किस तरह से करती हैं?
2: व्हाट डू यू कॉफी
1: विद? ब्लैक कॉफी विद घी। ओके, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आप एग्जैक्टली बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को?
2: ब्लैक कॉफी विद घी इज रिलेटेड टू योर इंटरनल हेल्दी गट, जो आपके अंदर मॉइस्चर और सो जस्ट 1 tablespoon घी विद ब्लैक कॉफी अर्ली मॉर्निंग इज वेरी गुड। या
1: वेरी,
2: इट्स अ वेरी गुड बेनिफिट फॉर दैट एंड आई एम टेकिंग ऑलमोस्ट मोर देन 2-3 years एवरी मॉर्निंग। या
1: एवरी मॉर्निंग बिना कुछ लिए, बिना अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट दिस एंड देन व्हाटएवर,
2: देन व्हाटएवर, देन माय योगा एंड एक्सरसाइज या वर्कआउट कुड बी।
1: अच्छा जी, आफ्टर दैट यू गो फॉर ब्रेकफास्ट?
2: आफ्टर दैट या आई विल हैव ब्रेकफास्ट।
1: ओके, अच्छा स्किन रूटीन के बारे में, अपने स्किन रूटीन के बारे में बताइए कि किस तरह से, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं इतने स्टेप्स हैं, गो फॉर क्लीनिंग देन दिस थिंग, अगर बहुत ही बेसिक्स में और कोई वर्किंग वुमन है वो इतना सारा कुछ नहीं तामझाम कर पाती, तो कौन कौन से रिचुअल्स को आपके हिसाब से फॉलो करना ही करना चाहिए, वो मैंडेटरी है फॉर गुड स्किन?
2: हाँ, देखिए मार्केट में इतनी चीज़ें हैं, वो सब मार्केट मार्केटिंग है प्रोडक्ट्स की, कि आपको 7-8 चीज़ें लगानी है, सो अच्छी स्किन के लिए एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है पानी पीना, बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड जब आप सुबह में बाहर जा रहे हैं तो आपकी क्लीन, आपके फेस अच्छे फेस वॉश से वॉश करिए, देन अच्छा सिरम एंड सन क्रीम एंड दैट्स।
1: अच्छा सिरम, व्हाट डू यू मीन बाय सिरम? मतलब कौन सिरम
2: भी इम्पॉर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा स्किन के लिए, जिसमें विटामिन सी होता है।
1: ओके,
2: जो आपकी स्किन को हेल्दी रखता है विटामिन सी, देन आप उसके ऊपर सन प्रोटेक्शन इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड मॉइस्चराइजर, ये आपके सुबह का रूटीन होना चाहिए। एंड देन रात में इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि पूरा फेस क्लीन करके कोई अच्छा मॉइस्चराइजर लगा के, हमेशा नाइट रूटीन में मॉइस्चराइजर करना स्किन को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप सो जाते हैं तो उसी टाइम आपकी जो स्किन है वो हील हो रही होती है, सो अच्छा प्रोडक्ट लगा के सोना इट्स गुड।
1: अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि द मिनिमम यू स्टिक और यू पुट ऑन योर स्किन, ज़्यादा वो आपकी ग्लो करती है, ज़्यादा अच्छी होगी, तो ट्राई टू बी यू नो।

0: प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए उतना ज्यादा आपकी स्किन जो है वो हेल्दी दिखेगी. तो ये क्या मिथ है या फिर इट रियली वर्क्स?
1: इट रियली वर्क्स अगर आप अच्छी चीजें लगाते हैं. बट फिर मैं दोबारा से बोलूंगी, आपकी अच्छी डाइट आपकी स्किन ग्लो उसी से ही होगी.
0: सो डाइट इज फर्स्ट,
1: डाइट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. पानी एंड द गुड डाइट. आप अगर आप अच्छा पानी पीते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. नॉर्मल एक मॉइस्चराइजर लगाएंगे और आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी.
0: सो दोस्तों देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पैसे इधर उधर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्दी रूटीन. अपनी हेल्दी रूटीन, अपनी डाइट, बैलेंस डाइट पर काम कीजिए. एंड व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय गुड डाइट? किस तरह की डाइट को आप कहती हैं कि एग्जैक्टली गुड है और वो स्किन के लिए अच्छी है?
1: गुड डाइट मीन्स वेजिटेबल्स.
0: ओके.
1: या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लोग आई थिंक इतना ज़्यादा डेली रूटीन में नहीं खाते हैं. सैलड्स का खाना, अच्छे फ्रूट्स का खाना, अच्छे जूसेस पीना, अच्छे स्मूदीज पीना, वो एक आपके स्किन से रिलेटेड, अगर आप स्किन की बात कर रही हैं उससे रिलेटेड है ये वाली जो डाइट है. एंड ऑफ कोर्स आपको अपनी स्किन का बाहर, जैसे इंटरनल आप ख्याल रख रही हैं, इस तरह बाहर भी आपको ख्याल रखना है. आपको फेशियल्स कराने होते हैं रूटीन, जिससे क्योंकि फेशियल के अंदर आपके मसाज होता है फेस का, उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, जिससे आपकी बाहर वाली स्किन पे ग्लो आता है. तो फेशियल्स का भी एवरी मंथ या एवरी आफ्टर 40s या आफ्टर 30s यू हैव टू डू योर फेशियल लाइक मंथली और 15 डेज और 20 डेज आपको कराना बहुत ज़रूरी होता है. कि जैसे आपको इंटरनल ख्याल रखना है, इसी तरह आपको बाहर भी ख्याल रखना है.
0: सो
1: बोथ साइड
0: दोनों तरह से काम करना है तभी आप अच्छी और खूबसूरत नजर आएंगे. अच्छा, व्हाट इज दैट बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट द ब्यूटी इंडस्ट्री व्हिच यू रियली वांटेड टू डिबंक? कोई है ऐसा मिसकंसेप्शन ब्यूटी इंडस्ट्री को लेकर? है
1: अभी तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा.
0: अच्छा, किसी तरह की कोई ऐसे हार्श क्रिटिसिज्म्स या फिर नेगेटिव कमेंट्स आपको सुनने को मिलते हैं फ्रॉम द क्लाइंट एंड हाउ डू यू हैंडल देम?
1: ओह, ये तो बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा. ओके. क्लाइंट्स आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स बहुत मिलते हैं. सो उसको फिर मैं पर्सनली हैंडल करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनकी प्रॉब्लम समझती हूँ और उनको फिर सेटिस्फाइड भी करके भेजती हूँ. उनको मैं नाराज़ करके नहीं भेजती हूँ. होते हैं सब तरह के क्लाइंट्स आते हैं. तो मैं उन सब चीज़ों को मैं पर्सनली हैंडल करती हूँ. टीम भी हैंडल करती है. बट जब एक ओनर होता है ना, कोई आपका क्लाइंट खुश नहीं है, ओनर उनसे बात करता है, उनकी प्रॉब्लम पूछता है, तो वो उससे फिर थोड़े कूल डाउन हो जाते हैं, भूल जाते हैं.
0: हाँ, थोड़ा रिलैक्स होता है, लगता है कि हमारी बात ऊपर तक पहुंच गई है.
1: बट होते हैं लोग,
0: होते हैं,
1: वो किसी भी चीज से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. बहुत लोग ऐसे होते हैं.
0: हाउ टू यू नो सेटिस्फाई फीमेल्स?
1: इस तरह की इंडस्ट्री है.
0: जी जी जी. अच्छा, आप अब बिल्कुल लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह का आप जो है मैसेज या एडवाइस देना चाहती हैं उन इंस्पायरिंग वुमेन को जो इसी फील्ड में अपना करियर परस्यू करना चाहती हैं? कैसे वो स्टार्ट करेंगे इसी तरह का बिजनेस, इसी फील्ड में आना चाहें?
1: इसके लिए आपको खुद को पर्सनली एक्सपीरियंस चाहिए होता है. अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री में या फैशन इंडस्ट्री में या लाइक फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड, उसके लिए आपको खुद को, अगर आप इस तरह का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले आपको खुद को सीखनी है वो चीज़ पर्सनली. सो
0: अपना जो
1: पहले आपको खुद को या होमवर्क करना चाहिए, फिर आपको इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहिए.
0: जाहिर है, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि इट्स वेरी इजी.
1: नो नो,
0: एनीबॉडी कैन स्टार्ट अप दिस काइंड ऑफ अ सैलून और हम रन करा लेंगे, बहुत सारे लोगों को हायर कर लेंगे, इट्स गोना वर्क. बट अगर आपका खुद का अच्छा उसमें
1: एक्सपीरियंस होएगा तो आप उस पे ज्यादा अच्छा काम करेंगे.
0: यस, दैट्स ट्रू. तो मतलब आप जो भी काम करें पैशनेटली करें, दिल से, अपने दिमाग से, दिमाग बाद में, पहले दिल से, पहले पूरी तरह से इन्वॉल्व हो. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच आयशा फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम एंड टॉकिंग टू अस. थैंक यू सो मच.
1: यू आर मोस्ट वेलकम नाज़िया, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर.
0: थैंक यू वंस अगेन. वेल, इसी के साथ दोस्तों अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का. इंशाल्लाह नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107.

अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैतराश 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैतराश ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मैतराश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सन एंड साउंड। सन एंड साउंड संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
2: Maximum music, maximum fun.
3: On FM 107, Dil Se Desi.

0: एब्सोल्यूट सिनेमा।
1: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम, FM 107

का रिव्यू करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा चर्चित है, उसका नाम बहुत ज्यादा है, बहुत जबरदस्त हाइप तो नहीं थी लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद हाइप बन गई है क्योंकि उसके डायरेक्टर का पता लोगों को धीरे धीरे अब लग रहा है। ओ जब लोग बात करते हैं ना मूवी के बारे में तो उस मूवी को और भी ज्यादा लोग देखना चाहते हैं, और फिर एक ऐसे डायरेक्टर के बारे में बात हो जो बहुत ज्यादा चर्चित हो, बहुत पुराने वक्त से बेहतरीन मूवी उन्होंने की हो, एकदम यूनिक मूवी को वो डायरेक्ट करते हो, तो ऐसे में इस तरह की मूवी देखना तो लाजमी बन जाता है। जी हाँ, इस हफ्ते जिस मूवी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है द ओडिसी। वेल, ये मूवी तो लाजवाब है, इसकी हाइप बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन हाइप भयंकर बनी मूवी देखने के बाद, लोगों ने फिर रेटिंग जब दी तो उसके बाद मूवी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है इवन इन हिंदी सेक्टर, यानी कि आमतौर पे उर्दू सुनने वाले बात करने वाले बहुत ज्यादा इंग्लिश मूवी देखते नहीं है लेकिन जब उनको थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है ना, जैसे मार्वल की एमसीयू की लोग देखने लग जाते हैं, तो अब ऐसा हो गया है कि बहुत ही ज्यादा ऐसे लोग बन गए हैं धीरे धीरे जो इन मूवीज को यानी कि अंग्रेजी मूवीज को बहुत ज्यादा शौक से देख रहे हैं और खास तौर पे क्रिस्टोफर नोलन जहां पर हूं। वेल, इस मूवी के मूड के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं द ओडिसी के मूवी के बारे में बात करना। Tell me what you remember. A wife? A son? And then what? We won the war. इस फिल्म का मूड और एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया गया है जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगा। डायरेक्टर ने इसे आम बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवीज की तरह बिल्कुल भी लाइट हार्टेड या सिर्फ मजे के लिए नहीं बनाया। फिल्म का मूड शुरू से ही बहुत ही भारी भरकम, हैवी, रॉ और इंटेंस कह सकते हैं, परफेक्ट वर्ड है, रॉ और इंटेंस बनाया गया है। जब आप मूवी देखना शुरू करते हैं तो आपको एक अजीब सा अकेलापन का एहसास होता है और ये ही तो है डायरेक्टर का काम। विजुअल्स में इतना बड़ा और अनंत समंदर दिखाया जाता है कि मतलब खत्म ही नहीं हो रहा वो समंदर, जिसे देखकर ही मतलब दिल में ऐसा खौफ सा लगने लगता है, डर लगने लगता है कि इस पानी के नीचे और आगे क्या छुपा है।

0: I need everyone in this party dead.
1: फिल्म में क्लॉस्ट्रोफोबिक ड्रेड, एक ऐसी घुटन जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है, उसको भी बहुत ही लाजवाब तरह से ब्लेंड किया गया है। जब ओडिसीज किसी अनजान आइलैंड पर फंसता है तो ऑडियंस को भी लगता है कि वो उस आइलैंड पर उसके साथ कैद हो चुकी है। इसमें जो दुख और तकलीफ मूवी में दिखाई गई है वो कोई दिमाग की उपज या फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि बहुत ही दर्दनाक सीन है। एक राजा जो कभी हजारों की सेना का कमांडर था, वो जब भूखा प्यासा एक पत्थर पर बैठकर अपने घर के लिए रोता है तो सीन पूरी तरह से डिप्रेसिंग और इमोशनल हो जाता है।
2: After years of war, no one could stand between my men. And home. Not even me.
1: इसके साथ ही फिल्म में माइथोलॉजी का एक डार्क और कॉस्मिक एस्पेक्ट भी है। गॉड्स को यहाँ कोई मददगार नहीं दिखाया गया है और हर सीन में एक टेंशन जो है वो बनी रहती है। इस मूवी को जब आप देखना शुरू करेंगे, शुरुआत से ही पता नहीं चलता कि कब कौन से शख्स जो है वो गुस्से में आ जाएंगे, सब कुछ तबाह कर देगा। ये टेंशन, जो दुख है और सर्वाइवल की जो जिद है, वो मिलकर फिल्म के मूड को एकदम अलग और यादगार बनाती है। इस मूवी के हाइप के बारे में भी उतनी ही बात करनी चाहिए जितना हमने मूड के बारे में बात करा। जब इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ तभी से सिनेमा की दुनिया में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक सा आ गया था। लेकिन आमतौर पे उन लोगों में जो असल में इंग्लिश मूवी फॉलो करते हैं, आमतौर पे जो उर्दू मूवीज या बॉलीवुड के शौकीन हैं, उनको इसके बारे में बहुत ज्यादा शौक नहीं था। लेकिन होता है ना, जैसे जैसे हाइप बढ़ती है तो फिर ये उर्दू वाले भी उधर रुख करने लगते हैं, और यही वजह है कि आज हम इस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, हाइप का सबसे बड़ा रीजन है कि ऐसी भयंकर लार्जर देन लाइफ को इतने बड़े बजट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इस ऐसी मूवी को कभी सोचा नहीं गया था। इंटरनेट पर हर दिन इस फिल्म को लेकर नए नए ट्रेंड्स चल रहे काफी महीनों पहले से शुरू हो गए थे। जब फिल्म का पहला टीजर और ट्रेलर आया तो उनके सिनेमैटिक शॉट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक ने लोगों के होश को उड़ा दिया। एक हफ्ते में ही ट्रेलर पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज आ गए। फिल्मों के जो दीवाने हैं और हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स के बीच रेडिट और अलग अलग सोशल मीडिया पर घंटों लंबी डिबेट्स होती थी कि क्या डायरेक्टर होमर की ओरिजिनल बुक के साथ जस्टिस कर पाएंगे या फिर इसे एक सस्ती एक्शन फिल्म बना देंगे। कास्ट में बड़े बड़े इंडस्ट्री के लेजेंड्स का शामिल होना इस हाइप में या कहें इस आग में घी का काम करता है। लोग एडवांस्ड में बुकिंग के लिए थिएटर्स के बाहर और ऑनलाइन वेबसाइट्स पर टूट पड़े, जिसकी वजह से कई टिकट बुकिंग सर्वर्स तक जो है वो क्रैश हो गए थे। पता है, ये भी एक हिस्ट्री है। रिलीज के पहले दिन ऐसा माहौल था जैसे कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल हो, लोग सुबह के अर्ली शोज देखने के लिए लंबी लंबी लाइंस में खड़े थे। ऑल्दो ये ऑब्वियसली खतर में तो आपको देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन इंडिया में कई जगहों पे जो मेट्रो सिटीज हैं वहाँ पर ये देखने को मिला। उसके अलावा बाकी जगहों पे भी ये देखने को मिला कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जब मूवीज़ यहाँ पर लगती हैं तो लाइन लंबी लगती है, और ख़ास तौर पे इस तरह की मूवीज़ जिसकी हाइप जो है लाजवाब थी। हर कोई देखना चाहता था कि कैसे मॉडर्न सिनेमा इस हज़ारों साल पुरानी एपिक को स्क्रीन पर जिंदा करता है। इस फिल्म का हाइप सिर्फ एक नॉर्मल एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट जो है वो बन चुकी थी जिसे देखना हर कोई अपना फर्ज समझ रहा था। बॉक्स ऑफिस पर इसने पहले ही दिन सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ कर एक नया इतिहास रख दिया था। तो जब इतनी सारी बातें हो गई हैं तो लाजमी है कि इस मूवी के स्टार रेटिंग के बारे में भी बात कर ली जाए। दोस्तों, इस मूवी को अलग अलग रेटिंग है तरह से, मैं लेकिन 5 में से 4.5 देना दिल से चाहता हूँ। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक तो फिल्म के डायरेक्टर बड़े ख़तरनाक हैं। जब आपको पता चलेगा कि ये फिल्म के डायरेक्टर हैं, ओ तब तो फिर आपको देखो देना ही पड़ेगा यार। क्योंकि 5 में से 4.5 का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि ये लार्जर देन लाइफ, आप जब इस मूवी को देखेंगे, यार इतने बड़े लेवल पे कैसे उतार लिया पर्दे पे, तो ये डायरेक्टर का कमाल है। मैं इस फिल्म को पूरे दिल से 4.5 स्टार्स देता हूँ, और ये रेटिंग इस फिल्म ने बिल्कुल अपनी मेहनत से कमाई है। ये कोई ऐसी मूवी नहीं जो सिर्फ VFX के दम पर चलती हो, बल्कि इसका हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, एक्टिंग हो या फिर बैकग्राउंड प्रोडक्शन हो, सब में परफेक्शन झलकता है। 4.5 स्टार्स देने का सबसे बड़ा रीजन ये है

दिखाई नहीं देती, बल्कि ये आपको अपने अंदर खींच लेती है। ये आपको ऐसी राइड पर ले जाती है जहां आप हंसते हैं, फिर एकदम से रोते हैं और डर के मारे अपनी सीट पकड़ लेते हैं कि अब क्या होगा। ये पूरे सिनेमा का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसे सिर्फ और सिर्फ एक बड़े थिएटर स्क्रीन पर ही देखकर एंजॉय किया जा सकता है। अब बात करते हैं 0.5 स्टार की जो मैंने काट लिया है। फिल्म का रन टाइम लगभग 3 घंटे का है दोस्तों, जो कि काफी ज्यादा लंबा है। सेकेंड हाफ में जब ऑडिसेस 2-3 अलग आइलैंड पर लगातार जाता है तो पेसिंग ऐसा फील होता है कि थोड़ी सी स्लो हो जाती है और ऐसा लगता है कि कुछ सीन्स को थोड़ा छोटा किया जा सकता था। 3 घंटे मूवी बन रही है तो आप काट के थोड़ा छोटा कर लें, एडिट का कमाल ही यही है। एक दो जगह पर एडिटिंग थोड़ी सी धीमी लगती है जो फिल्म के आम दर्शकों को थोड़ा थका सकती है, लेकिन इस एक छोटी सी कमी को अगर छोड़ दिया जाए तो मूवी एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है। ये फिल्म आने वाले कई सालों तक याद रखी जाएगी और हिस्टोरिकल फैंटेसी जॉनर के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करेगी। अगर आपको एक जेन्युइन और दिल को छू लेने वाली सिनेमा को देखना है तो इसे बिल्कुल मत मिस करना। अगर आपने मिस किया तो बहुत बड़ा कुछ आपके जिंदगी में रह जाएगा ऐसा समझिए, क्योंकि कुछ मूवीज होती हैं जिसका इम्पैक्ट सिर्फ उस वक्त तक नहीं, आपके आफ्टर लाइफ में भी होता है। लेट्स से लगान, लेट्स से तारे जमीन पर, कुछ ऐसी मूवीज हैं जिसका इम्पैक्ट बहुत लाजवाब होता है। 3 इडियट है ना, तो ऐसी मूवीज जरूर देखनी चाहिए और ओडिसी तो इन सबसे बढ़कर भी है। तो दोस्तों ये तो कुछ हमने खास बातें कर ली, अब हम जरा बात करते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जैसे कि इस मूवी को बनाते हुए फन फैक्ट क्या रहा, प्रोडक्शन में डायरेक्टर का विजन असल में क्या था, उसके बाद एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन जो इस मूवी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर जब हम बॉलीवुड के बारे में बात करते हैं तो उसमें एक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट रह नहीं जाती, क्योंकि थोड़ी बहुत बस एक्टिंग करनी होती, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन ऐसी मूवीज में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी और साउंड जो बहुत ही लाजमी होता है किसी भी मूवी के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्शन में क्या फन फैक्ट रहा, रियल फंक्शनल वॉरशिप इस फिल्म के प्रोडक्शन के पीछे की कहानियां भी किसी मूवी से कम नहीं है और इनके बारे में तो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। डायरेक्टर ने फैसला किया कि वो शिप के सीन्स के लिए ग्रीन स्क्रीन यूज नहीं करेंगे और हॉलीवुड के जो बड़े एक्टर हैं या कहें बड़े डायरेक्टर भी, वो इस बात पे बहुत ज्यादा कन्विंस्ड रहते हैं ऑलरेडी बहुत पहले से, मूवी बनाने से पहले, कि ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, रियलिटी बिल्कुल होनी चाहिए, और डायरेक्टर ने यह फैसला बहुत पहले कर लिया था। इसलिए इंजीनियर्स और हिस्टोरियंस ने मिलकर सच में 3,000 साल पुराने डिजाइन का एक पूरा और असली फंक्शनल ग्रीक वॉरशिप बनाया। आप सोच सकते हैं कि क्या ये बॉलीवुड में हो सकता है कि 3,000 साल पुराने का डिजाइन बनाए और असली फंक्शनल? उम्मीद ही नहीं कर सकते आप, लेकिन हॉलीवुड में ये हो सकता है, और जब डायरेक्टर अच्छे हो, जब डायरेक्टर का विजन उस तरह का हो, और उसे सच में यानी कि मेडिटेरेनियन सी के खुले पानी में उतारा गया और एक्टर्स ने सच में उसे चप्पू चला के आगे करके चलाया है, तो ये एक सीन जो आप देखेंगे इस मूवी में सच्चा है। उसके अलावा CGI का इस्तेमाल कम किया गया, प्रैक्टिकलिटी पर ज्यादा रहा गया। आज के टाइम में जहां हर मॉन्स्टर जो है कंप्यूटर से बनाया जाता है, इस फिल्म में साइक्लोप्स और बाकी क्रिएचर्स के लिए बड़े बड़े एनिमेट्रॉनिक्स जो है, मैकेनिकल रोबोट जैसे कहते हैं, रियल स्केल के मॉडल्स बनाए गए। जब एक्टर मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे तो उनके सामने असली चीज खड़ी थी जिससे उनका डर और रिएक्शन 100% रियल लग रहा था, और फिर एक्टर की तो बात ही अलग है। उसके अलावा रियल सुनामी और स्टॉर्म की फुटेज जो है उस पर भी बात करेंगे। शूट के दौरान एक बार समंदर में अचानक बहुत भयानक असली स्टॉर्म तूफान आ गया है ना, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये वाला तो मतलब आप छोड़ भी नहीं सकते। ये बात शूट हो रहा था समंदर में और अचानक से तेज हवाएं चलने लगी, मौसम बिगड़ने लगा, भयानक जो है स्टॉर्म आने लग गया और फिर तूफान इतना तेज हो गया पूरी टीम बहुत ज्यादा डर गई थी और शूटिंग रोकनी पड़ी, पर डायरेक्टर ने अपने कैमरामैन को बोलकर उस असली डेंजरस तूफान के कुछ शॉट्स रिकॉर्ड किए और उन्हें बाद में मूवी के मेन सीन में यूज भी किया है, जो

0: पेट्रोल क्राइज हैं उनमें उसी पुराने भाषा का या कहें लैंग्वेजेस का यूज किया गया है ताकि फिल्म में एक पुराने और सच्चे टेक्सचर्स को दिया जा सके, साउंड कराया जा सके। और इसमें जो एक्टर है या कहें डायरेक्टर, जो दोनों एक्टर और डायरेक्टर कामयाब रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात कर लेंगे एक शॉर्ट स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में कि क्या है इस मूवी का प्लॉट, एंड देन वी गोना टॉक अबाउट क्रिटिक्स का क्या कहना है, भाई आपको मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। डिस्कशन कर लेंगे परफॉर्मेंस पे कि परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि देखी जाए या फिर छोड़ दिया जाए। ठीक है, एक फिलहाल छोटा सा ब्रेक, FM 107 पे वापस कुछ ही देर में। दिल से देसी,
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
4: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
3: गेम ऑन,
4: वॉल्यूम अप,
3: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
4: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
3: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
5: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में, MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर। डोंट मिस इट।
6: Absolute cinema.
0: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो चल रहा है रिव्यू ऑफ द वीक। तो अब बात कर लेते हैं जरा इस मूवी के फन फैक्ट के बाद, यू नो, डायरेक्टर के विजन के बारे में कि इस मूवी को बनाते हुए डायरेक्टर का असल में विजन क्या था। वेल दोस्तों, डायरेक्टर का विजन तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मूवी ऐसी नहीं बना दिया। डायरेक्टर का विजन इस फिल्म को लेकर बहुत ही अलग और बोल्ड था मेरे हिसाब से। आमतौर पर जब भी ऐसी माइथोलॉजिकल फिल्में बनती हैं तो उन्हें बहुत शाइनी, कलरफुल, अनरियलिस्टिक, मतलब जो है भी नहीं वो भी दिखाया जाता है, जहां हीरो एक सुपर ह्यूमन होता है जिसे कभी चोट नहीं लगती है, उसके ऊपर कितनी भी गोली चला दो उसको नहीं लगती, लेकिन उसकी हर एक गोली दुश्मन को लग जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इस डायरेक्टर ने पहले दिन ही क्लियर कर दिया था कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना है। उनका मेन विजन था ह्यूमनाइजेशन ऑफ अ मिथ, यानी एक पुरानी कहानी को बिल्कुल इंसानी और जमीनी बनाना। उन्होंने ओडिसेस को बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनाया, बल्कि उसे एक ऐसा आम इंसान दिखाया जो गलतियां करता है, जिसमें घमंड है और जो बार बार टूटता है। डायरेक्टर का मकसद सिर्फ एक्शन सीन्स दिखाना नहीं था, बल्कि वो साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन को स्क्रीन पर लाना चाहते थे जो एक इंसान को 10 साल तक वॉर और अकेलेपन में रहने के बाद झेलनी पड़ती है। उनका विजन था कि ऑडियंस ओडिसेस के मसल्स को नहीं बल्कि उसके दिल के दर्द और उसकी आंखों की थकान को महसूस करे। दोस्तों, फिल्म को बनाते हुए ये सारी चीजें, ग्राउंडेड अप्रोच, पूरी फिल्म को एक अलग ही डेप्थ देती है। डायरेक्टर ने बड़ी चालाकी से एक ऐसी कहानी जो 3000 साल पुरानी है उसे आज के मॉडर्न इंसान के इमोशन से कनेक्ट कर दिया, जो उनके विजन की सबसे बड़ी जीत है। और किसी डायरेक्टर का ये कर पाना कि वो कनेक्ट कर दे जितने भी ऑडियंस वहां पर देख रहे हैं और शुरुआत से कनेक्ट कर दे, ये तो काबिले तारीफ है।
7: He came back here to find all these suitors in his house.
6: पाए।

0: betrayed Daddy. You didn't even know. Like some sniveling bastard.
1: Who's looking after your wife and son?
2: Do you see?
1: My dad is coming home.
0: Bringing vengeance.
2: Bringing it all.
3: अब बात कर लेते हैं कि इस मूवी को शूट करते हुए किन लोकेशंस का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, फिल्म को असली और रियलिस्टिक लुक देने के लिए प्रोडक्शन टीम ने ग्रीन स्क्रीन और स्टूडियोज का यूज बहुत ही ज्यादा कम किया, जो कि आज के टाइम में काफी बड़ी बात है। आप किसी भी फिल्म को बनते हुए देखेंगे तो हो ही नहीं सकता कि यू नो परसेंटेज वाइज अगर हम कहें, कुछ फिल्म को वो डिपेंड भी करता है कि फिल्म कैसी है, कुछ फिल्म को 40% कुछ फिल्म को 50% ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसी फिल्म की, तो ऐसे में ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है। डायरेक्टर के कहने पर पूरी टीम ने क्रोएशिया, ग्रीस और माल्टा की ऐसी सुनसान और डेंजरस लोकेशन पर शूटिंग की है जो पहले कभी कोई बड़ी फिल्म की शूट के लिए गया ही ना हो वहाँ पे, और फिल्म शूट हुई भी नहीं है आज तक जिस तरह से ऐसी फिल्म को यानी कि ओडिसी को शूट किया गया। उन्होंने बड़े समंदर के ऐसे अलग और आइसोलेटेड आइलैंड को ढूंढा जहां चारों तरफ सिर्फ नीला पानी और ऊंचे क्लिफ्स थे, बड़े बड़े पत्थर थे। इन रियल लोकेशंस की वजह से फिल्म में जो अकेलेपन का या खालीपन का लुक आया है ना, वो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एहसास होता है। वो कंप्यूटर से कभी नहीं बनाया जा सकता था। क्रोएशिया के पुराने और वेदर्ड पत्थरों पर जब समंदर की भयानक लहरें टकराती हैं तो स्क्रीन पर जो खतरा दिखता है वो 100% असली लगता है। इसके अलावा ग्रीस के कुछ रियल एंशिएंट रुइंस यानी कि खंडहर जो है वो भी हैं, गुफाएं हैं, केव्स यानी कि, तो वहां पर भी शूटिंग जो है वो की गई है ताकि उन पत्थरों की पुरानी मिट्टी और टेक्सचर्स स्क्रीन पर साफ दिखे। उसके अलावा फिल्म में एक जगह और भी है, माल्टा, जैसे कि आपको बताया, माल्टा के पानी के बड़े टैंक्स और रियल ओपन ओशन में कई दिनों तक शूटिंग चली जहां कास्ट और क्रू को काफी घंटों तक पानी में रहना पड़ता था। सोचिए आप जब पानी में रहते हैं तो क्या एहसास होता है, और फिर नमक के पानी में रहते हुए तो फिर और भी ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है। लेकिन जो क्रू है ना वो भी लाजवाब होता है इनका। इन सभी लोकेशंस के नेचुरल बैकग्राउंड ने फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को एक अलग ही चार्म दिया है। दोस्तों, जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी आर्टिफिशियल सेट को नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप सच में 3,000 साल पुरानी उस अनजान और खतरनाक दुनिया में खुद ट्रैवल कर रहे हैं जहां हर आइलैंड एक नया रहस्य छुपाए है, एक कुछ यूनिकनेस आपको देखने को। वेल, इस तरह की फिल्म आपको एहसास दिला पाए ऐसे में एक्टर का काम करना है, एक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस फिल्म के लीड जो एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन सिनेमा की हिस्ट्री के सबसे मुश्किल और तारीफ के काबिल ट्रांसफॉर्मेशन में से एक है। रोल की डिमांड ऐसी थी कि एक्टर को सिर्फ अपनी बॉडी नहीं बदलनी है बल्कि अपने पूरे लुक को कैरेक्टर के 10 साल के सफर के मुताबिक ढालना है। धूप से जली हुई स्किन के पैचेस वो लगाए, समंदर के नमक से खराब हुए बाल और गहरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स जो हैं वो भी बनाए। हर एक आइलैंड के बाद उनके शरीर पर नए स्कार्स दिखाए गए ताकि फिल्म में एहसास जो है उसको जगा के रखा जा सके। उनकी हर एक जंग की कहानी बताते हैं ये सारी चीजें। फिल्म के शुरुआत का एक यंग और एनर्जेटिक राजा फिल्म के एंड तक आते आते एक बिल्कुल बुढ़ा, सफेद दाढ़ी वाला और मेंटली दिमागी तौर पर टूट चुका शख्स बन जाता है। एक्टर ने इस फिजिकल बदलाव को अपनी एक्टिंग में भी उतारा है। उनका चलने का तरीका, उनकी आवाज का भारीपन और उनका देखना, सब कुछ धीरे धीरे धीरे धीरे बदलता है, जो उनके डेडिकेशन को भी दिखाता है। और अब बात कर लेते हैं फिल्म के आंख और कान के बारे में, यानी कि सिनेमाटोग्राफी और साउंड। फिल्म का टेक्निकल डिपार्टमेंट यानी इसकी सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिजाइन इस मूवी की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। और हर बार जब भी मैं बात करता हूँ सिनेमाटोग्राफी और साउंड के बारे में तो मैं कहता हूँ ये दिल और दिमाग भी है। DOP यानी कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ने ज्यादातर सीन में नेचुरल लाइटिंग का यूज किया। सुबह की धूप और रात के अंधेरे को रियल रखने की वजह से फिल्म के सीन बहुत ऑथेंटिक लगते हैं।

जब कैरेक्टर्स समंदर में होते हैं तो कैमरा के वाइड शॉट्स इतने बड़े और गहरे होते हैं कि इंसान उनके आगे एक छोटे से तिनके जैसा लगता है। वहीं जब आइलैंड पर डेंजर होता है तो कैमरा बिल्कुल चेहरे के पास आ जाता है, क्लोजअप शॉट, जिससे कैरेक्टर का डर और उनकी आंखों की दहशत आपको साफ दिखती है। तेज आवाज सांस लेने की वो दिखती है। रंगों का यूज भी कहानी के मुताबिक बदलता है। दोस्तों स्पॉइलर फ्री प्लॉट सुन लो, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पता चल जाएगा कि मूवी में क्या हो रहा है। फजील भाई ये वाली बात नहीं सुननी है मेरे को, ऐसा नहीं है, आपको ऊपर ऊपर का मलाई बता देता हूं मैं। ये मूवी एंशिएंट ग्रीस के सबसे बड़े और मशहूर कवि होमर की कहानी या कहें पोइट्री है, द ओडिसी, उस पर बेस्ड है। कहानी शुरू होती है ट्रॉय की उस डेंजरस और लंबी लड़ाई के ठीक बाद, जहां इथियाका का चालाक और बहादुर राजा ओडिसिस अपनी अकलमंद स्ट्रेटजी से लड़ाई तो जीत जाता है, पर उसके अंदर का जो घमंड है या एरोगेंस है उस पर भारी पड़ जाता है। तो समंदर जो है वो उससे नाराज हो जाता है। ये गुस्सा ओडिसिस के दो चार हफ्ते का सफर जो है वो उसको पूरा 10 साल लंबा कर देता है, और दुख मुसीबत बिल्कुल एक कहते हैं ना वो चक्रव्यूह पूरा एकदम भूल भुलैया में जो है वो फंस जाता है, उसकी वजह से लाइफ उनकी चेंज हो जाती है। दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी के वर्डिक्ट के बारे में। वैसे वर्डिक्ट तो इतना कुछ सुनने के बाद आपको पता चल ही गया होगा, अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये फिल्म सिनेमा के इतिहास की एक ऐसी असली और ऐतिहासिक हिस्टोरिक जीत है कि बताया नहीं जा सकता। ये तो आप बस देखा जा सकता है, ये कोई ऐसी मूवी नहीं है जिसे आप देखकर अगले दिन भूल जाते हैं, बल्कि ये आपके दिमाग पर एक बहुत गहरा और कभी ना मिटने वाला इम्पैक्ट छोड़ जाता है। तो इस मूवी को जरूर से जरूर देखिए। फाइनल डिसीजन यही है कि ये एक एब्सोल्यूट मस्ट वॉच मास्टरवर्क है। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में एक नई मूवी के बारे में बात करते हुए, एक नए डायरेक्टर के बारे में बात करते हुए, जिसमें फन फैक्ट होगा, सिनेमाटोग्राफी होगी, फिल्मिंग लोकेशन होगी और बहुत कुछ होगा। तब तक सुन रहे FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: सलाम आदाब एंड वेलकम टू अ शो कॉल्ड कतर बिजनेस 360। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नाजिया। दोस्तों, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम कतर के बिजनेस लीडर, एंटरप्रेनर्स और इनोवेटर्स की सक्सेस स्टोरीज और इनसाइट्स आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर, इनोवेशन, लीडरशिप और एंटरप्रेनरशिप के हवाले से एक बहुत ही मशहूर शख्सियत जो दोहा में मुकीम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीर मोपन। आप हैं फाउंडर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ DSM हेल्थ केयर एंड वेलकेंस मेडिकल सेंटर कतर। जी हां, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में 30 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ और कतर के हेल्थ केयर सेक्टर में 2 decades से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ डॉक्टर समीर ने प्राइवेट हेल्थ केयर की ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन में अहम किरदार अदा किया है। आज वो वेलकेंस मेडिकल सेंटर के जरिए इनोवेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और पेशेंट फोकस सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं। चलिए वेलकम कहते हैं डॉक्टर समीर मोपन को कतर बिजनेस 360 के इस एपिसोड में। अ वेरी गुड मॉर्निंग, होप यू आर डूइंग ग्रेट।
4: थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन। इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम and I'm looking forward to that.
3: Pleasure to have you, and it's an honor for us that you finally accede for this session, and yeah, here we are going. So let me know first of all from your leadership skills. So after spending so many years helping build and, you know, expand healthcare institution, what actually motivated you to begin a new entrepreneurial journey and create your own healthcare platform?
4: Yeah, I was actually part of a larger organization for a long, long time and started the first expatriate-owned medical center here in Qatar way back in 2002. I was part of their first hospital in India too, in my hometown. And then from there I came here. So the journey was, it was eventful journey from setting up around 6 medical centers and a hospital and things like that. So, and going through all the changes that have happened here. So what

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
4: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
5: दोस्तों, गाड़ी की रूफटॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है, बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं, बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए, बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है, जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर ना सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
6: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है, फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: आप FM 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं।
7: The radio station with more music. FM 107. FM 107.

0: यू रेडी? लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको।
1: टॉप 10 काउंटडाउन।
2: हाँ जी, तो हमने जो है चूल्हा तैयार कर लिया है, अभी इस पे सिकने वाला है बहुत कुछ। बहुत सारे गाने इस पे ग्रिल किए जाएंगे और बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो बेचारे थोड़े पुराने हो चुके हैं, बासी हो चुके हैं हमारी लिस्ट के हिसाब से। ठीक है, सो ये जो गाने मैं आज आपको देने वाला हूँ उसके लिए तैयार हो जाइए। दिस इज टॉप 10 दिस वीक ओनली ऑन एफएम 107। मैं हूं दुहा वाला कबीर आपके साथ। बिफोर आई बिगिन, आपको पता है हमारा रूल क्या है, ये जो गाने हम इस लिस्ट में शामिल करते हैं, देखो मुश्किल हो जाता है अगर 10-20 गाने एक साथ लॉन्च हो जाएं, जो अभी आतिफ असलम ने किया, तो लिस्ट में सारे गाने तो नहीं हो सकते। तो कुछ ही गाने बेस्ड ऑन देयर नंबर, बेस्ड ऑन द रिप्लेबिलिटी, बेस्ड ऑन स्ट्रीम्स एंड बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट, तभी गाने शामिल होते हैं। सो आपको 666-22107 में मैसेज कर देना, या फिर आप सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा गाना आपको लगता है कि लिस्ट में होना चाहिए और कौन सा लिस्ट में नहीं होना चाहिए, या फिर कौन से पायदान पे होना चाहिए। ये सब कुछ आप डिसाइड करेंगे। यू आर द जज, यू आर द ज्यूरी ऑफ दिस शो। मेरा क्या है जी, मेरा नाम तो कबीर है, ठीक है, मुझे क्या करना है, कबीर क्या करेगा, कबीर आपको बताएगा कि कौन कौन से गाने टॉप 10 की लिस्ट में हैं। इस बार लिस्ट में थोड़ा बहुत चेंज आया है और ये चेंज बड़ा सरप्राइजिंग है और कुछ सरप्राइजिंग नहीं भी है, बट अ वेरी इंटरेस्टिंग लिस्ट दिस वीक। तो शुरुआत करेंगे 10, 9 और 8 से एज वी नो, और उसके बाद विल गो अप द लैडर सीधा गाना नंबर 1 तक। ठीक है, तो गाना नंबर 10 की शुरुआत, एक नई एंट्री आई है और ये गाना मुझे पूरे यकीन है कि लिस्ट में ऊपर जाने वाला है। मैं अक्सर कहता हूँ कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं जिनकी मौसीकी, जिनकी अदायगी बदलती नहीं है, सालों साल नहीं बदलती, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, नथिंग रॉन्ग, क्योंकि कुछ म्यूजिशियंस ऐसे होते हैं कि वो अपने स्टाइल को ना बदलें तो उनके लिए बेहतर है ना, वो चलते रहते हैं, उनकी दुकान चलती रहती है, उनके गाने बिकते रहते हैं एंड वो अपनी जगह अपने करियर में एकदम सेटल हो जाते हैं। ऐसा ही एक प्रोमिनेंट नाम है आतिफ असलम का। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ आतिफ असलम। आतिफ असलम की आवाज अपने आप में यूनिक है, वो कुछ भी गा दें बिना माइक के, बिना म्यूजिक के, वो तब भी अच्छा लगेगा, बिना म्यूजिक और साथ में माइक के गा दें तब भी अच्छा लगेगा। यू ट्रीट हिज वॉइस इन विच एवर वे यू वॉन्ट, रिवर्ब लगाइए, कुछ भी लगाइए, गुफा का इफेक्ट लगा दीजिए, तब भी आतिफ असलम आपको अच्छे सुनाई देंगे, बिकॉज आतिफ असलम की जो अदायगी है, जिस तरीके से वो सुर लगाते हैं, जिस तरीके से वो गाना गाते हैं, वो अपने आप में इतना यूनिक है कि नोबडी एल्स डज इट द वे ही डज। बाकी कोई करता भी तो लोग कहते हैं आतिफ असलम जैसा साउंड कर रहा है। तो इतने ह्यूज कॉम्प्लीमेंट और इतने सेटल्ड करियर के बाद आतिफ असलम ने अब एक बहुत बड़ा कदम उठाया, एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, बिकॉज ही डिड अ ग्रेट ग्रेट जॉब विद इट। आतिफ असलम सामने जो है अभी रिसेंटली वो कर दिखाया जो मेरी सिंगर से उम्मीद थी, और वो थी एक एल्बम लॉन्च करना। आपको याद है मैं कंप्लेन कर रहा था कि यार ये पॉप सिंगर्स क्यों नहीं निकाल रहे एल्बम, सारे के सारे रैपर्स तो निकाल रहे हैं, तो आतिफ असलम को ऐसा क्या हो चुका है या और सिंगर्स हैं वो क्यों नहीं निकाल रहे? तो रिसेंटली हुआ ये कि आतिफ असलम ने लॉन्च करी है अपनी एक एल्बम जिसका नाम है सुबह आए ना, एंड पता नहीं शायद मेरी आवाज वहां तक पहुंच गई, आई एम रियली हैप्पी दैट इट डिड इट। आतिफ असलम की सुबह आए ना जो एल्बम है उसके कई सारे गाने हैं, मैंने अपनी तरफ से गाना चुना है नंबर 10 पे और ये आगे जाएगा क्योंकि इसमें आतिफ असलम ने अपने आप को चेंज किया। ये बहुत बड़ी बात होती है जब एक सिंगर एक मुकाम पे पहुंचने के बाद ये डिसाइड करता है कि नहीं, मैंने मुझे कुछ नया भी ट्राई करना है, एंड गाना नंबर 10 है लेट्स हैव सम फन, ये गाने का नाम है, आतिफ असलम की आवाज है सुबह आए ना। अभी किसी गाने का वीडियो नहीं आउट हुआ है, सारे गानों के कवर्स बने हुए हैं, आतिफ असलम उसमें चेयर पे बैठे हुए हैं, ब्लू रंग है, बड़ा ही खूबसूरत एल्बम आर्ट है और एल्बम आर्ट में उर्दू में लिखे हुए गानों के नाम, वन ऑफ अ काइंड थिंग है, मैंने इससे पहले पता नहीं किसी को शायद देखा भी नहीं है सब करते हुए जो आतिफ असलम कर रहे हैं। तो ये जो गाना नंबर 10 पे मैं डाल रहा हूँ आतिफ असलम का गाना, इसका नाम है लेट्स हैव सम फन, एंड गाना सच में बहुत फन है। मुझे बीच में ऐसा लगा आतिफ असलम रैप कर रहे हैं क्या भाई,

मैंने ये स्टाइल नहीं सोचा था आतिफ असलम से. एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं वो कोई बुरा स्टाइल, आई डोंट लाइक इट, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, लव्ड इट. आतिफ असलम ने जो गाने के बीच बीच में नुआंसेस दिखाए हैं वो भी ऐसे किया जैसे रैप कर रहे हैं, भाई कोई नहीं कर सकता. मुझे एक पल को टेंशन हो गया, मैंने कहा अरे आतिफ भाई रैप की मार्केट में उतर के आ गए. गाना बेहद खूबसूरत है, गाने को जिस तरीके से आतिफ असलम ने गाया है वैसे गाना भी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहां पे कौन सा ब्रेक लिया है, इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी. एंड इसी वजह से आई थिंक इनकी एल्बम चलेगी. और एल्बम में जो बाकी सारे गाने, ऑफकोर्स वो बहुत प्यार भरे गाने हैं, कुछ गाने बहुत ज्यादा दुख भरे भी हैं, मगर आतिफ असलम हैज डन इट अगेन. एंड इस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक इतने सालों बाद उन्होंने अपने स्टाइल को थोड़ा सा बदला. एंड आई एम गिविंग हिम 10/10. ये गाना भी चढ़ेगा, फिलहाल नंबर 10 पे एंट्री लिए. लेट्स हैव सम फन आतिफ असलम की आवाज में. और गाना नंबर 9 ये भी लिस्ट में शामिल है क्योंकि इस पे रीले बन रही हैं. रील में अगर कुछ भी ऑरा फार्मिंग हो रही है, लोग कुछ बहुत ही बड़ा सा कुछ कर रहे हैं, ऑरा दिखा रहे हैं, एटीट्यूड है, तो ये गाना बैकग्राउंड में चलता हुआ नजर आ ही जाएगा. और ये गाना भले ही बहुतों के समझ में ना आया जो हिप हॉप लिसनर्स नहीं है, बट दे आर स्टिल फाइंडिंग इट रियली रियली नाइस. तो गाना नंबर 9 पे है बूम शाकलाका. तो ये गाना है कृष्णा के आर डॉलर साइन और साथ में ढाणा न्योली वाला. हरियाणवी ट्रैक है लेकिन आपको भर भर के रीलों पे दिखेगा ये, भर भर के. कहीं पर भी कुछ एटीट्यूड वाली चीज दिखाई जा रही है, कहीं पर ऑरा फार्मिंग हो रही है. अभी रिसेंटली मैंने ये बैकग्राउंड में चलते हुए देखा जब सलमान खान ने एक बड़े से शो अलायंस में एंट्री ली, तो बैकग्राउंड में यही गाना चल रहा था. सो इसका जो पैपी म्यूजिक है, इसका जो हुक है, डिस्पाइट बींग हिप हॉप ट्रैक, ये हर जगह चल रहा है, हर जगह. एंड पीपल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ढांडा न्योड़ी वाला और कृष्णा का कोलैब अपने आप में यूनिक है. दोनों साथ में आएंगे मैंने कभी नहीं सोचा था, बट थैंकफुली दे डिड. एंड गाने में एक लाइन है, ढांडा भाई बोलते हैं कि जब हम दोनों एक गाने पे एक ट्रैक पे तो लगे मोटा पीसा, तो मोटा पीसा तो लगा भाई, इस पे बढ़िया करके लगाया और गाना शूट भी बहुत बढ़िया हुआ. और एक गाना लिस्ट में कहीं नहीं जाने वाला. सो बूम शाकलाका ऑन नंबर 9 ऑन द लिस्ट, जस्ट बिकॉज और क्या, गाने ने भाई आग ला रखी है. गाना नंबर 9 है ये. हाँ, अब जरा गाना नंबर 8 की बात कर लेते हैं. गाना नंबर 8 जो है ये एक सरप्राइज एंट्री है, वाइल्ड कार्ड है ये, सीधा नंबर 8 पे. Why am I saying this? क्योंकि मैं फैन हूं उस सिंगर का जिसने इसको निभाया है, आघारी आदित्य साहब जो हैं वो धीरे धीरे धीरे धीरे अपने करियर को ऊपर ले जाते चले जा रहे हैं. आई कैन ओनली विश हिम ऑल द बेस्ट. एंड उनके साथ भी वही चीज है जो आतिफ असलम के करियर के इनिशियल में थी. आतिफ असलम को बस फायदा ये था उस टाइम पे, क्या आतिफ असलम एक बैंड से आए थे और ऑलरेडी बहुत फेमस थे और अब तो मतलब मेगा स्टार बन चुके हैं पॉप इंडस्ट्री के. लेकिन वैसे आदित्य खारी के साथ है, आदित्य के पुराने गाने या नए गाने कोई भी गाना उठाइए आप, उसमें कोई कमी नहीं लगी. कुछ सिंगर्स होते हैं ना कि आप बोलेंगे यार मैं इसका फैन अभी तक बना तो नहीं हूं, मगर जब मैं इसके गाने सुन रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि मैं इसका फैन क्यों नहीं हूं, इतना बढ़िया तो गा रहा है ये. एंड इवेंचुअली यू बिकम अ फैन. सो आई एम अ फैन ऑफ आदित्य रिखारी. रोचक कोहली के साथ मिलकर, रोशनी वालिया के साथ मिलकर गाना उन्होंने तैयार किया है. गाने का नाम है बूहे बारियां. एंड गाना ऑफिशियल वीडियो के साथ लॉन्च हुआ है, तो सिर्फ ऑडियो नहीं है, वीडियो भी अवेलेबल है. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट जिस तरीके से उन्होंने गाने को गाया और बूहे बारियां जो उन्होंने यूज किया, अरे रे रे रे रे रे भाई, द क्लासिकल वेस्टर्न वाइब द होल ट्रैक इज ब्यूटीफुल बियॉन्ड क्रेजी. और मैं वेट कर रहा था कि आदित्य के पिछले गाने जो मिलियंस में गए हैं उसके बाद वो क्या करने वाले हैं यूनिक, बिकॉज बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एक्सपेरिमेंट करना जब आपके पुराने गाने को इतना प्यार मिले कि ऑडियंस सिर्फ वही सुनना चाहती है, दूसरा कुछ भी नहीं सुनना चाहती. आदित्य हैज टर्न द टेबल अराउंड एंड ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ सो वेल कि ये गाना सीधा वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ आ चुका है गाना नंबर 8 बन के. तो ये थे कुछ गाने, कुछ क्या, 3 गाने, 10, 9 और 8 के एक रिविजन कर लेते हैं. गाना नंबर 10 लेट्स हैव सम फन आतिफ असलम, नंबर 9 पे बूम शाकलाका ढाणा न्यूलीवाला और के डॉलर साइन कृष्णा, और नंबर 8 पे है बूहे बारियां रोचक कोहली और आदित्य रिखारी की आवाज. एंड इट्स जस्ट अमेजिंग मैन. आज के लिए बहुत कर रही होने वाली, बहुत कर रही, जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड. FM 107 टॉप 10 नंबर 10.

0: FM 107 Top 10.
1: वेलकम बैक, मैं दुहावाला कबीर FM 107 पे. दिस इज टॉप 10 दिस वीक. और अब वक्त आ गया है गाना नंबर 7, 6 और 5 का. तो गाना नंबर 7 जो है ढांडा न्योली वाला अगेन, ये गाना अपनी जगह नहीं छोड़ेगा. अभी मैंने पिछली बार उसकी तारीफ करी थी, अभी भी करूंगा लेकिन अलग तरीके से करूंगा. एक ना, जब क्योंकि मैं रैप लिखता हूं तो मैं इतना जानता हूं कि बिना बीट के रैप करना इज डिफिकल्ट, क्योंकि आपका माइंड जो होता है वो ट्यून्ड इन होता है कि भाई बीट आएगी, बीट के हिसाब से, मीटर के हिसाब से आप गाना गाएंगे. मगर ईडीएम म्यूजिक के साथ, जब आप इलेक्ट्रो म्यूजिक के साथ खेल रहे हैं और उसमें आप कुछ पॉप म्यूजिक बना के उसमें रैप भी कर दें, ये फ्यूजन बहुत कम लोग कर पाते हैं. आई हैव सीन दिस विद

प्रोफेसी, बहुत कमाल के आर्टिस्ट है वो। और इस गाने में जो गाना नंबर 7 है, इसमें मैंने ढांडा भाई को करते हुए देखा है, गाने का नाम है दिल दे बैठी। तो गाना हालांकि EDM म्यूजिक बना हुआ है, आपको लगेगा पार्टी नंबर है, पर गाने में बहुत गहरी गहरी शायरी, बहुत गहरी गहरी पोइट्री, बहुत ही गहरा रैप है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक यार, क्या बना दिया ढांडा भाई। और ऊपर से इस गाने का वीडियो भी आउट है, तो आई रियली अप्रिशिएट कि लोग इतनी मेहनत करते हैं कि हर गाना, पूरी उनकी EP लॉन्च हुई है, हर गाने का वीडियो उन्होंने अपलोड किया है। आई एम नॉट सरप्राइज, यार बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है। नंबर 7 पे है दिल दे बैठी, ढांडा न्योली वाले का गाना, एंड ये आप डेडिकेट कर देना फौरन तुरंत से पहले, ठीक है। अब आ जाते हैं गाना नंबर 6 पे, जैक नाइट इज रिटर्निंग। जैक नाइट के साथ भी वही एक मुझे रिक्वेस्ट है, इशू कहने वाला था मैं, इशू नहीं है, रिक्वेस्ट है कि वो भी एल्बम निकालें, बिकॉज जैक नाइट के अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं कि वो बैंगर्स पे बैंगर्स पे बैंगर्स दे सकते हैं, एंड उनका गाना मुझे लगता नहीं कि कोई भी गाना ऐसा होगा जिसमें जैक नाइट कम मेहनत करेंगे और वो नहीं चलेगा, अंडररेटेड रहेगा। ऑल्दो आई स्टिल फील जैक नाइट बहुत अंडररेटेड है, उन्हें और भी ज्यादा शोहरत और भी ज्यादा काम मिलना चाहिए, एंड ही हैज डन अ लॉट फॉर द इंडस्ट्री। आपको याद है वो मूवी आई थी प्यार का पंचनामा, नहीं सोनू की टीटू की स्वीटी, शायद इन दोनों में से किसी एक में इनका गाना है, एंड बहुत बढ़िया गाया है। तो ये गाना तो नंबर 6 पर है, इसका नाम है क्या तेरी, ये गाने का नाम है क्या तेरी आंखों ने ढूंढा मुझे। गाना जो है बहुत से शूट हुआ है, गाने को शूट करने का तरीका मैं सोच रहा था कि CGI है कि क्या है, बट आई स्टिल बिलीव कि उन्होंने कुछ जगह पर रियल लोकेशन शूट करी है। भाई अगर रियल लोकेशन है पूरी तरह से तो मैं बहुत हैरान हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा शूट किया है, बहुत अच्छा शूट किया है, और इवन इफ इट्स विजुअली सो इफेक्टिव, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। सो गाना नंबर 6 इसीलिए है क्या तेरी, जैक नाइट की आवाज में। अब गाना नंबर 5 पे जाते हैं, गाना नंबर 5 में वाइल्ड कार्ड एंट्री मारने वाला वो शख्स जिसकी तारीफों को मैंने पुल बांध दिए, ये भी हैं आतिफ असलम ही, यहां पर भी आ गए वो। तो आतिफ असलम ने सीधा 9 और 5 पे एंट्री मारी है, सॉरी 10 और 5 पे एंट्री मारी है, एंड एट नंबर 5 इज सच्चे वादे। सच्चे वादे क्यों तोड़े थे, मोड़े थे तुम जल्दी। जितने भी टूटे दिल के लोग हैं, आशिक हैं, अगर वो एक ढूंढ रहे हैं कोई बढ़िया सा सैड गाना, एंड यू कैन नॉट वेट फॉर अवारापन टू ड्रॉप, तो ये गाना अभी भी सुन लीजिए। गाने का नाम है सच्चे वादे, आतिफ असलम की आवाज में। इट्स अ मेलोडिक ट्रैक, इट्स अ वेरी सटल ट्रैक, प्यार मोहब्बत की शिकवों की बातें करता है, और बहुत प्यारी शायरी है, आतिफ असलम ने निभाया भी बेशक बहुत जबरदस्त है, एंड ये गाना है एट नंबर 5 On the list। अब देखिए एक रिविजन कर लेते हैं गाना नंबर 10, 9, 8, 7, 6, 5 का। अभी तक नंबर 10 पे लेट्स हैव सम फन आतिफ असलम, नंबर 9 पे बूम शाकलाका, नंबर 8 पे बोहे बारिया, नंबर 7 पे दिल दे बैठी ढांडा भाई का गाना, और नंबर 6 पे क्या तेरी जैक नाइट, एंड नंबर 5 पे है सच्चे वादे आतिफ असलम की आवाज में, विच इज द वाइल्ड कार्ड एंट्री एट नंबर 5 ऑन द लिस्ट। और आपको कहीं जाना नहीं है, बढ़िया जगह पर हैं आप, स्टे ट्यून्ड। FM

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, feeling of missing out, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है. पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. सो नो फोमो एवर अगेन. सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ. रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
3: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है. याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है. रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए. रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है. और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है. सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं. वजारत दाखिला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ. FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है. सेफ रहें और

0: याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: FM 107 Top 10 Number 6.

0: FM 107 Top 10.
1: Welcome back. Assalamu alaikum. Main Duha wala Kabir FM 107 pe and we are back at it Top 10 this week. एक रिमाइंडर करा दूं भाई, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar है, FM107 Qatar, प्लीज प्लीज प्लीज हमसे जुड़िए। मैं इतना प्लीज इसे लगा रहा हूं क्योंकि आप लोग वीडियो से देख लेते हैं, कई मरतबा लाइक नहीं कर पाते हैं, भूल जाता है और पेज ऐसे रह जाता है। सो प्लीज हमसे जुड़िए, लाइक का बटन दबाइए। वाई एम आई टॉकिंग लाइक एन इंस्टाग्रामर? नहीं नहीं, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे दिल से कुछ भी तो सोशल मीडिया पर जरूर आइएगा। अच्छा, तो गाना नंबर 4, 3 और 2 की बारी आ गई है भाई। गाना नंबर 4 अपनी जगह पर टिका हुआ है, न्यूमरस रील्स, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हु वांट टू लर्न द कोरियोग्राफी ऑफ द ट्रैक। दिव्या गोयल जिन्होंने इस डांस की कोरियोग्राफी करी है वो ऑलरेडी बहुत फेमस हो चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूँ चरणप्रीत और बादशाह के गाने का, बन जा तू मेरी। काश आवाज होती भाई साहब, मैं ये पूरा कवर गा देता। बहुत बहुत बहुत बढ़िया वाइब है इस गाने की, गाने की फील बहुत बढ़िया है, आसी ने डांस बहुत अच्छा किया है, कोरियोग्राफी ऑन पॉइंट है, लिरिक्स ऑन पॉइंट है एंड सबसे बड़ी बात इसका कैची हुक, ये जब चलता है तो नहीं रुका जाता भाई। तो बन जा तू मेरी एट नंबर 4 ऑन द लिस्ट। मूविंग ऑन, गाना नंबर 3 फिर से डांडा भाई आ गए। डांडा भाई ने कब्जा कर लिया भाई, कब्जा कर लिया है पूरी तरह से। गाना नंबर 3 है जगाने, डांडा डांडुली वाले की आवाज में, और इस गाने में एक लाइन है जो बड़ी खास है कि दुश्मन चाहे लड़की की हो मारे घर महफूज मिलेगी। ओए भाई यार, क्या लाइन है, क्या लाइन है। और बहुत सारी ऐसी शायरी है जो हरियाणवी में है, लेकिन अगर आप एक दो बार सुनेंगे तो यू विल बी एबल टू कैच इट, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक। तो जरूर जरूर देखिएगा जगाने, गाने का नाम है ZIGNE और ये जो ढांडा भाई ने परफॉर्म किया है बहुत जगह पर ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं एंड ये गाना प्योर शॉट हिट है। बढ़ते हैं आगे। गाना नंबर 2 जिससे मुझे है शिकायत और जिससे है मुझे प्यार, दोनों चीजें एक ही के साथ हैं और ये इसलिए क्योंकि ये जो है ना गाना, ये है आवारापन 2 से। तो मेरी एक शिकायत रही है मेकर से कि भाई आप मार्केटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, मार्केटिंग चाहिए। मैं मानता हूं इमरान हाशमी के नाम में सब कुछ भेज देना चाहते हैं वो लोग, बट स्टिल दे रियली नीड टू डू सम चेकिंग और ये समझें इस बात को कि ऑडियंस को इंतजार है। सो गाना नंबर जो 2 है वो है वे जुनून आवारापन 2 से। एंड बहुत ही खूबसूरत गाना गाया है शर्मा जी ने, तो बहुत बढ़िया गाना है। अब बारी आ चुकी है गाना नंबर 1 की। आई होप यू आर रेडी फॉर दिस। गाना नंबर 1 जो है उसकी तारीफ में मैं क्या कहूँ, मैं आतिफ असलम का फैन हूँ, मैं अरिजीत सिंह का फैन हूँ एंड ऐसे बहुत सारे पॉप सिंगर्स हैं जो अपनी आवाज़ को लगातार मॉड्यूलेट करते हैं, लगातार चेंज करते हैं, अपनी आवाज़ को तोड़ते हैं, बनाते हैं और फिर जाके सुर लगते हैं एंड आपको बैठने में मजबूर कर देते हैं कि नहीं यार पहले ये सुन लूँ फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। तो गाना नंबर 1 जो है जो सीधा टेक ऑफ कर चुका है, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, वो बड़ा ही खास है एंड दैट इज ये आवारापन। तो आवारापन 2 के मेकर्स मेरी आवाज उन तक पहुंचा दो प्लीज, उनको बोलो एक दो टीजर तो डाल दें कम से कम, पिक्चर ना डालें तो पिक्चर से पहले ट्रेलर तो आए, टीजर डाल के भूल गए विशेष फिल्म्स वाले। बट एनीवे, ये थी आज की हमारी टोटल लिस्ट। अब बारी आपकी है सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए FM107 Qatar, FM107 Qatar, आप हमसे जुड़िए, प्लीज गेट इन टच विद अस। आपको कोई गाना आपको पसंद है जो आप लिस्ट में चाहते हैं तो भी बताइए, कोई गाना ऐसा है जो आप गाने से लिस्ट से निकाल देना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि पूरी लिस्ट को एनालाइज करके कौन सा गाना कौन से नंबर पे होना चाहिए। सो इट विल बी अ फेयर थिंग टू डू एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपको और भी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व किया जाए, बहुत बहुत बहुत जरूरी है। और 14 तारीख को रिलीज हो रही है आवारापन 2 और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, तो देखते हैं क्या होगा। बट फिलहाल ये था गाना नंबर 1 ऑन द लिस्ट, ये आवारापन 2 से। एंड ऑन दैट नोट सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद है. प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज हमसे जुड़ जाइए एंड बाकी बातें तो होती रहेंगी, ऐसे भी करते रह करें. मेरे शो में आइए, सुबह आइए, शाम में आइए एंड बहुत बहुत बहुत बहुत प्यार आपको. ओके एंड ऑन दैट नोट दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मां सलामत.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी अमिता आपके साथ। देखिए, मेरी पहचान ये वो शो है जहां पर हमारी अपनी पहचान को हम ढूंढते हैं, जानते हैं अपनी अहमियत और अपने हर एक पल के लिए ना प्राउड फील करते हैं। पर आज दोहा की इस बेहद खूबसूरत, वो कहते हैं ना गर्मी के दिन, गर्मियों के दिनों में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। और आपने कभी सोचा है कि हम अपने घरों में जब रहते हैं, चाहे वो बड़े बड़े विलाज हो, फ्लैट्स हो, कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि सांस लेने की जगह कम पड़ रही है? कभी सोचा ऐसा? देखिए जनाब, ये कोई चैलेंज या इस तरह का एस्केप रूम का गेम नहीं है, ये हमारी अपनी लाइफ है और हमें कोशिश करनी है कि उन कमरों से हमें अपने आप को ना बाहर निकालना है। मतलब ये नहीं कि जो ये कमरे ब्रिक्स या सीमेंट के बने हैं इनमें से बाहर निकालना है, हमें एक्चुअली उस पुरानी सोच, सदियों से चली आ रही एक्सपेक्टेशन से अपने आप को बाहर निकालना है जिसे हम खामोशी से जीते जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे हर उस खवातीन की, हर उस औरत की, या यूं कहें उनके दिल की धड़कनों की, जो हमेशा सुबह उठती तो है लेकिन डबल लाइफ जीती है, यानी कि एक दोहरी जिंदगी। और आज हम बात करेंगे उस बहू की जो परफेक्ट होने की कोशिश में खुद को कहीं पीछे छोड़ आई है। तो ब्यूटीफुल लेडीज, एक बहुत ही नाजुक सा, वो कहते हैं ना, परफॉर्मेंस चल रहा है या उसकी तरह है ये। जरा तसव्वुर कीजिए, एक तरफ वो मॉडर्न वुमेन है जिसे पूरा दोहा जानता है, यूं कहें जिस भी मुल्क से आप हैं, जिस भी शहर से आप हैं, लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप नाम हैं। लेकिन आप अभी हमारे कतर की किसी खूबसूरत लोकेशन में ऊंचे ग्लास ऑफिस में बैठी हैं और आप वहां एक टीम को लीड भी कर रही हैं, बड़े बड़े फैसले ले रही हैं, हर किसी को चीजें समझा रही हैं, काफी इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन जब आप किसी अच्छे से कैफे में, या यूं कहें मुशर्रफ के किसी अच्छे से कैफे में कॉफी पी रही होती हैं अपने किसी खास दोस्त के साथ, तो आपकी बातों में एक वजन होता है। हाँ, आप चाहे पॉलिटिक्स पर बात करें, करियर पर बात करें, अपनी पसंद नापसंद पर बात करें, हर चीज बड़ी कमाल की होती है। वहां आपकी अपनी एक पहचान है, एक नाम है, एक रुतबा है और वहां आप हैं। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई बदलती है और आपकी गाड़ी अपने घर की तरफ निकलती है, माहौल बदलने लगता है। जैसे ही आप अपने घर में, अपने चाहे बड़े फ्लैट में या बड़े विला में कदम रखती हैं, जरूरी नहीं कि आप दोहा में हो, शायद आपका फोन रिंग करता है इंडिया या पाकिस्तान से या किसी भी जगह से, एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल की घंटी बजती है और अचानक एक झटके में मास्क बदल जाता है। द मोमेंट यू स्टेप इन, आप वो वेस्ट बे की बॉस नहीं रहती, आप अचानक सिर्फ एक बहू बन जाती हैं। वो बहू जिसे हर परंपरा, हर ट्रेडिशन को संभालना है, जिसे हर रिचुअल की बारीकी पता होनी चाहिए, आप वो इंसान बन जाती हैं जो फैमिली के हर मोड़ को ऑब्जर्व करेगी और एक इमोशनल स्पॉन्ज बन जाएगी। अगर घर में कोई गुस्सा है तो गलती आपकी है, अगर बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा है तो परवरिश आपकी है, अगर खाना जरा सा ऊपर नीचे हो गया तो जिम्मेदारी आपकी है। और सबसे बड़ी उम्मीद कि आप कभी शिकायत नहीं करेंगी, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी द वन हु नेवर एवर कंप्लेन्स। चाहे आपके ससुराल वाले अगले कमरे में हो या हजारों मील दूर हो, सिर्फ 6 इंच के मोबाइल स्क्रीन से आपकी जिंदगी को स्कैन कर रहे हो, वो परफेक्ट दिखने का जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर कभी कभी दम घोट देता है। अब भाई देखो, आप सिर्फ अपना घर तो नहीं संभाल रही, आप अपने आप को मैनेज कर रही हैं, आप काम भी कर रही हैं, और अगर काम नहीं भी कर रही है तो भी आपके पास इतनी सारी चीजें लाइंड अप हैं कि उनका ख्याल आप ही को रखना है, एंड यू आर मैनेजिंग इसके साथ साथ लेगेसी ऑफ एक्सपेक्टेशंस। एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी विरासत जो अक्सर आपके लिए जगह ही नहीं छोड़ती, और हम इसे अक्सर नॉर्मल कहकर टाल देते हैं, है ना। हम कहते हैं सबके साथ तो होता है, पर क्या वाकई ये नॉर्मल है? विश कतर यानी कि वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर हेल्थ की रिपोर्ट्स उठाकर देख लीजिए, वो साफ तौर पर कहती है कि फैमिली स्ट्रेस और मल्टी जनरेशनल एक्सपेक्टेशंस औरतों की मेंटल हेल्थ और उनकी मैटर्नल वेलबींग पर कितना गहरा और बुरा असर डालती है। देखो सिद्रा मेडिसिन में जो विमेंस मेंटल हेल्थ सर्विस है, वहाँ रोज ऐसे केसेस आते हैं जहाँ औरतें सिर्फ इस प्रेशर की वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं। ग्लोबल एक्सपर्ट्स और स्पेशली फेमस डॉक्टर शिफाली, उनका कहना है, जो द कॉन्शियस पेरेंट की ऑथर है, वो हमेशा कहती है कि जब तक हम ये कल्चरल पैटर्न्स नहीं तोड़ेंगे, हम अपने बच्चों को भी वही घुटन वही सफोकेशन तोहफे में देंगे। हमें ये सिलसिला तोड़ना होगा ताकि हम खुद को ना खो दें, क्योंकि अगर आप ही नहीं रहेंगी तो आपकी पहचान का क्या होगा। आज हम ना कोई सवाल नहीं उठाएंगे, बल्कि हम उन रास्तों की तलाश करेंगे जो हमें इस जगह से, इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने बहू के रोल को निभाते हुए भी अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनालिटी को जिंदा रख सकती हैं। सवाल गहरा है, क्या परफेक्ट बनना जरूरी है या खुश रहना? जुड़े रहिए हमारे साथ FM 107 पर, क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं आज की सोच के ऊपर, काफी गहरी और काफी इम्पोर्टेंट। तो कहीं ना जाएं, बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वंस अगेन। एफएम 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी अमिता, आपके साथ मेरी पहचान है शो का नाम। और अब हम बात करेंगे आज की सोच की, लेकिन उससे पहले आपसे मैं पूछूंगी एक सवाल। वो कौन सी एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है, शायद कोई ट्रेडिशन है या कोई किचन का रूल है, जो आपको लगता है कि बिल्कुल आउटडेटेड है, पर आप उसे सिर्फ इसीलिए निभा रही हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे या फिर रिश्ते खराब हो जाएंगे। बताएं कौन सी वो चीज है। हो सकता है कि कुछ फनी भी हो सकता है कुछ सीरियस भी हो, लेकिन जब आप ये सब शेयर करेंगी तो जाहिर सी बात है कि हमें एक दूसरे के साथ बात करने का मौका मिलेगा और एक दूसरे की बातें सुनकर हौसला भी मिलेगा। ठीक है, तो जरूर शेयर करें 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ। और सवाल ये है कि वो कौन सी एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है या कोई ट्रेडिशन है या कोई किचन का रूल है, जो आपको लगता है कि बिल्कुल आउटडेटेड है, पर आप उसे सिर्फ इसलिए निभा रही हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे या फिर रिश्ते खराब हो जाएंगे। डू शेयर विद मी ऑन 6622107 पर। और अभी वेलकम बैक है आप सभी का मेरी पहचान पर। अगर आपने अभी अभी हमारा रेडियो ऑन किया है तो मैं बता दूं कि मैं हूं आपकी अमिता आपके साथ। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एक परफेक्ट बहू के प्रेशर की, जो चाहे हम कितने भी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो, हम कितने भी अच्छे मुकाम पर हो अपने करियर के, लेकिन जब घर लौटते हैं या घर पर होते हैं तो डॉटर इन लॉ के बीच कहीं फंस जाते हैं, या यूं कहें कहीं फंस चुके हैं। हमने बात की उस सफोकेशन की, जो तब महसूस होती है जब आपकी अपनी आवाज घर की दीवारों में कहीं खो जाती है। अब वक्त है आज के सबसे गहरे हिस्से का, जिसे हम कहते हैं आज की सोच। आज की सोच इज्जत और सम्मान यानी ऑनर एंड रिस्पेक्ट के बारे में है। हमें बचपन से, हमेशा से इनफैक्ट, एक ही बात सिखाई गई है कि सब्र, पेशेंस एक औरत का सबसे बड़ा गहना है। हमें सिखाया गया है कि सब्र का मतलब है खामोशी, चुप रहना, सह लेना। पर आज मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए रुकें और मेरी बात ध्यान से सुने। इज्जत जो है ना, वो दो तरफा रास्ता है, ये कोई वन वे सैक्रिफाइस नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने पलट कर जवाब नहीं दिया या अपनी तकलीफ नहीं बताई तो हम बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पर याद रखिए, आप अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट उनकी बातों को मानते हुए भी कर सकते हैं, बिना अपनी पर्सनालिटी को मिटाए। आपकी इंटीग्रिटी का मतलब ये नहीं है कि आप हर बात पर हाँ कहें। सफरिंग इन साइलेंस, ये एक पैटर्न बन चुका है हमारे लिए, जिसे हम तोड़ना ही नहीं चाहते। ये एक एक्ट ऑफ करेज होगा अगर हम इसे तोड़ेंगे, और ये एक एक्ट ऑफ इंटीग्रिटी होगा जब हम अपने लिए जिएंगे। सोचिए, आप ये खामोशी क्यों कर रही हैं, क्यों रख रही हैं? शायद इसलिए ताकि घर का माहौल ना खराब हो, या ताकि लोग क्या कहेंगे वाला डर सच ना हो जाए। उफ, पर जरा सोचिए उन बच्चों के बारे में जो आपको देख रहे हैं। जब आप बिना कुछ कहे सब सहती हैं, तो आप अपनी अगली जनरेशन को क्या सीख दे रही हैं? आप उन्हें सिखा रही हैं कि एक औरत इंसान नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्रोमाइज यानी एक समझौता है। एक हेल्दी फैमिली को एक हॉलो या अंदर से टूट चुकी बहू नहीं चाहिए, उन्हें एक ऐसी औरत चाहिए जो वाइब्रेंट हो, जो रेस्टेड हो, जो रियल हो। लोग क्या कहेंगे के चक्कर में खुद की खुशियों को ना कुर्बान मत कीजिए, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप परफेक्ट होंगे, और तब भी कहेंगे जब आप नहीं होंगे। तो क्यों ना वो किया जाए जो आपके दिल को सुकून पहुंचाए। तो चले अब इसी बात को हम अपनी आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आपसे एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल पूछा हुआ है कि वो ऐसी कौन सी एक्सपेक्टेशन है, वो ऐसा कौन सा ट्रेडिशन है या किचन का रूल है, जो आपको लगता है कि आउटडेटेड है, और मतलब ये आप इसीलिए पूरा कर रही हैं, निभा रही हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे के डर से, या रिश्ते ना खराब हो जाएंगे के डर से ये चीज चले आ रही है। तो इसका आप हमें जवाब दे सकती हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर सकती हैं 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ। और अभी कहीं ना जाए, बने रहे FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम वंस अगेन, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का तहे दिल से। मैं हूं अमिता आपके साथ, मेरी पहचान है शो का नाम। और अब बारी है उस सवाल के जवाब की जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि वो कौन सी एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है या ऐसे कोई ट्रेडिशन है जो किचन का रोल हो जो आपको लगता है कि आउटडेटेड है बट आप उसे पूरा करते जा रही हैं, निभाते जा रही हैं, बस जस्ट टू मेक कि रिलेशंस सही रहें या फिर लोग क्या कहेंगे वो वाले डर से। तो हमें कुछ मैसेजेस आए हैं। सबा का मैसेज है अलखोर से, वो कहती हैं कि अमिता मेरे लिए तो ना वो मॉर्निंग टी वाला जो रूल है ना वो बिल्कुल आउटडेटेड लगता है। चाहे मैं रात को बेबी के साथ कितनी ही देर से सोई हूँ, मुझे सुबह उठना ही है, किचन में 6 बजे जाना ही है, सबके लिए फ्रेश चाय बनानी ही है, नहीं तो न जाने घर वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे कि मतलब बहू तो लेट राइजर है। ओफो, सच में सबा, ये तो बात आपकी सुन के ना मुझे लगता है कि लोगों को बदलने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले हमें ये स्टेप लेने की जरूरत है कि मुझे नहीं उठना 6 बजे, जिसको चाय बनानी है खुद बना के पी ले, और अगर नहीं तो फिर वेट करें, मैं बच्चे के साथ हूँ, थोड़ा वक्त तो लगता है भाई, आराम तो हमें भी चाहिए, है कि नहीं। अब जोया का मैसेज है, वो कहती है कि देखो अमिता मैं ना काफी अच्छी प्रोफेशनल हूँ, मैं मैनेजर हूँ और अपनी टीम को लीड करती हूँ, लेकिन जैसे ही अपने घर जाती हूँ ना तो मुझे वो हैवी दुपट्टा बिल्कुल सर पे रखना पड़ता है। चलो ठीक है, वो सब भी ठीक है, बट जब किचन में इतनी गर्मी लगती है और पूरे सर पे रखे दुपट्टे के साथ खाना बनाना पड़ता है, तब मुझे लगता है कि हाय कहाँ फंस गई, क्योंकि उस टाइम के लिए कोई मुझे रिलैक्सेशन नहीं देता। जोया, मेरे ख्याल से ना जब किचन में होगी, आप किचन क्वीन हो, यू कैन जस्ट ट्राई, आप दुपट्टा साइड में रखो, कोई नहीं आ रहा, बेहतरीन खाना बनाओ एंड देन यू गो आउट। क्योंकि आप ना अगर अपने ऊपर ये जुल्म करोगी तो गर्मी में परेशान हो ही जाओगी, एंड जाहिर सी बात है हमारे कतर की गर्मी हम सभी जानते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पर मारिया का मुझे मैसेज आया है, वो कहती है कि मेरा सबसे बड़ा इशू वीडियो कॉल्स है। उफ, जब पाकिस्तान से मेरी सास का कॉल आता है तो मुझे सारी चीजें तुरंत छोड़कर एकदम परफेक्ट बाल ठीक करना, दुपट्टा लेना, चेहरे पर ऐसी स्माइल रखना, मतलब चेहरा थका हुआ भी रहना नहीं चाहिए, तुरंत थोड़ा मेकअप करना, ये सब करके मुझे बात करनी होती है। उफ मारिया, ये बात तो मैं समझती हूँ, ये आसान चीज नहीं है। ये मेरे ख्याल से हर घर की कहानी है, पर आई थिंक आप ही हैं जो इस रूल को बदल सकती हैं, सो ट्राई दैट आउट। फरा का मुझे मैसेज है कि हमारे घर का एक रूल है कि बहू सबसे एंड में खाएगी। उफ, सबको गर्मा गर्म रोटी खिलाकर तब जाकर वो बैठेगी, और फिर अब जाहिर सी बात है जब खुद ही थक जाते हैं उस टाइम पे फिर कहाँ खा सकते हैं, फिर मैं ठंडा ही खाना खा लेती हूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं खाना गर्म करूँ। देखिए फरा, ये जो आपकी बात आपने शेयर की, ये एग्जैक्टली मेरी मम के साथ भी होता था, ठीक है, मतलब आपसे झूठ क्या कहना, आप हमारे लिसनर्स हैं और हमारे दिल की बातें आप तक पहुँचती हैं और आपके दिल की बातें हम तक पहुँचती हैं, पर ये रोल मैंने ही चेंज किया जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी और स्कूल में पहुंच गई थी, और जब वो कहते हैं ना कि आपको थोड़ी सी समझ आ जाती है और आपको ये होता है कि आपकी बात आप कह सकते हैं, तो मैंने फैमिलीज में ये कहना शुरू किया कि भाई आप लोग खा चुके हो, अब जरा मम्मी की हेल्प करो, जाके गर्मा गर्म रोटी बनाओ, क्योंकि मुझे तो रोटी उस टाइम बनानी नहीं आती थी। एंड मैं उस टाइम पर इतनी जोर जोर से कहती थी कि समहाउ घर की जो बाकी लेडीज थी उन्हें थोड़ी शर्म फील होती थी और वो बकायदा किचन में जाके मम्मी को गर्म रोटी बना के देती थी। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर नीलोफर क्या कहती हैं, कहती हैं कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है पर मैं रेसिपीज चेंज नहीं कर सकती। अच्छा, इनके इनके किचन का ये रूल है कि इनको खाना बनाने का बड़ा शौक है लेकिन ये खाने की रेसिपीज चेंज नहीं कर सकती। अगर मैं पास्ता भी बनाऊं तो मम्मी जी जो कहेंगी वही डालकर बनाना होता है। हाँ, ये थोड़ी सी मुसीबत तो लगती है। अब इसमें मुझे लगता है कि हर एक मम्मी को चेंज होना पड़ेगा, तब जाके सारी जो बहुएं हैं ना वो खुशी मना पाएंगी। देखिए, इतना मुश्किल नहीं है, मैं सच बोलूं, चाहे हमारी सभा हो या फिर

हमारी जोया हो या फिर कोई भी हो, आप सबकी बातें सुनकर ना दिल भारी सा हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें हमें लगता है कि ना कोई मायने नहीं रखती, पर हमारी आइडेंटिटी को ना ये धीरे धीरे खत्म कर देती है। वैसे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे शेयर करने की कोशिश की, क्योंकि ये कुछ बातें ऐसी हैं कि हर कोई कंफर्टेबल भी नहीं होता इस प्लेटफॉर्म पर आकर शेयर करने के लिए। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब तक लेडीज बोलती नहीं है तभी तक है, लेकिन जब एक औरत बोलती है तो वाकई 10 को सुनना पड़ता है और बाकी 10 को हिम्मत मिलती है। तो अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ी साइंस की। लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ। हमने दिमाग की बात तो कर ली, पर हमारा जो जिस्म है वो क्या कह रहा है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आजकल जब आप सुबह उठती हैं तो आपकी जॉ यानी जबड़े में थोड़ा दर्द रहता है, या फिर आपके जो टेम्पल्स हैं, चेहरे की बात कर रही हूँ, सर के कोने में हमेशा एक खिंचाव रहता है। स्ट्रेस जब दिमाग से निकलकर जुबान तक नहीं पहुंच पाता ना, तो वो हमारे शरीर में घर कर लेता है और इसके चलते हमें नींद नहीं आती, गुस्सा बहुत आता है, हम दांत पीसते रह जाते हैं, है कि नहीं? आपकी जो बॉडी है वो उन बातों को बाइट बैक करने की कोशिश कर रही होती है और तभी ये सब कुछ होता है। योर बॉडी इज लिटरली ट्राइंग टू च्यू द वर्ड्स, और वो जब सप्रेस करती है तो ये टाइटनेस, ये दर्द, ये जो है ना आपकी बॉडी का रोना है। अब इस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए हमें किसी लंबी छुट्टी की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है अपनी नर्व्स को शांत करने की। ये नर्व हमारे नर्वस सिस्टम की हाईवे है। जब घर में टेंशन बढ़े, जब सास बहू की बेहद या पुरानी बातें आपको आपका दिमाग घुमा दे, तो ये दो बायोलॉजिकल औजार इस्तेमाल करें। हाँ, क्या? पहला है द हम। मेरे साथ कीजिए अभी एक गहरी सांस लीजिए और जब सांस छोड़े तो एक लंबी की आवाज निकालिए, ठीक है? सिर्फ 2 मिनट तक ये करने से जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, वो आपके ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि आप सेफ हैं, डरने की बात नहीं है। और दूसरा है द स्प्लैश। जब लगे कि गुस्सा या रोना कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो वॉशरूम में जाइए और ठंडे पानी का एक झोंका, एक स्प्लैश अपने चेहरे पर ना मारिए। ये हमारे डाइविंग रिफ्लेक्स को ट्रिगर करता है। ये साइंस है, मैं कोई यूं ही नहीं कह रही। ठंडा पानी आपके स्पाइक्स लेते हुए हार्ट रेट को तुरंत नीचे लाता है। ये टिप्स ना सिर्फ कामिंग टिप्स नहीं है, ये आपके बायोलॉजिकल वेपन्स हैं आपका सुकून वापस पाने के लिए। जब घर भारी लगे तो अपना सुकून खुद बनाइए, ठीक है? एंड आई एम वेरी सर्टेन कि इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। याद रखिए, आप एक बहू होने से पहले एक इंसान है, ठीक है? और एक इंसान की पहली जिम्मेदारी खुद की हिफाजत करना, खुद को प्रोटेक्ट करना है। आज हमने बात की इज्जत की, सब्र की और उस दर्द की जो हम अपने जबड़ों या यूं कहें जॉज में छुपा कर रखते हैं। अगले सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं द ग्रे रॉक मेथड की, कि कैसे उन लोगों से डील किया जाए जो आपको बार बार ट्रिगर करते हैं। हाँ, तो आपने क्या करना है, कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी।

वेलकम बैक, मैं हूं अमिता आपके साथ. आप सुन रहे हैं मेरी पहचान और ये बिल्कुल हमारे शो का आखिरी मुकाम है. वेल, अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं हूं अमिता आपके साथ और बताना चाहती हूं कि मेरी पहचान में आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो डॉटर इन लॉ या बहू का जो बोझ होता है, परफेक्ट बहू का जो बोझ होता है, उसे कैसे हम अपने कंधों से उतार कर एक परफेक्ट लाइफ जी सकते हैं. और इस वक्त हम पहुंच गए हैं हमारे सबसे इमोशनल सेगमेंट पर, जिसका नाम है छुपी हुई मैं. छुपी हुई मैं आज उस लड़की की कहानी है जो इस डर में जी रही है कि लोग उसे डिफिकल्ट कह देंगे. कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप उस शानदार घर में या विला में एक घोस्ट की तरह घूम रही हैं. आप किचन में खाना बना रही हैं, मसालों की खुशबू है, कुकर की सीटी है, पर आपका अपना दिल खामोश है. आप सबके लिए चाय बनाती हैं, सबकी पसंद का ख्याल रख रही हैं, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस सब बिल्कुल फॉलो कर रही हैं, मशीन की तरह परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन उस घर में आपकी अपनी जगह कहाँ है? उसे डर लगता है कि अगर उसने एक बार भी कहा मम्मी जी मैं थक गई हूँ या मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, तो रिश्तों का ये माहौल जो उन्होंने सदियों की उम्मीदों पर खड़ा किया है वो एक पल में गिर जाएगा. आपने खुद को एक शॉक एब्जॉर्बर यू कहें तो बना लिया है. घर का हर फ्रिक्शन, हर गुस्सा, हर ताना आप ऑब्जर्व कर लेती हैं ताकि बाकी सब शांत रहें. पर ब्यूटीफुल लेडीज कब तक करेंगी? एक स्पॉन्ज भी तभी तक काम करता है जब वो पूरा गीला ना हो जाए. तो हम बात कर रहे हैं उन लेबल्स की, डिफिकल्ट, टू मॉडर्न या वो मशहूर ताना हमारे बेटे को तो बदल दिया है कि नहीं. ये अल्फाज हमें इसीलिए डराते हैं क्योंकि हमारी सेल्फ वर्थ दूसरों के सर्टिफिकेट पर डिपेंड करती है. हमने बचपन से सीखा है कि अच्छी लड़की वो है जो सब्र पेशेंस करे, पर सब्र का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अपनी सैनिटी कुर्बान कर दें. याद रखिए, बाउंड्री कोई दीवार नहीं है. हम अक्सर सोचते हैं कि बाउंड्री सेट करने का मतलब लड़ाई करना, बिल्कुल नहीं. बाउंड्री तो एक दरवाजा है ताकि आपका सुकून अंदर महफूज रहे और बाहर की जो टॉक्सिक चीजें हैं वो बाहर ही रहें. इट्स नॉट अबाउट कि हमें लोगों से दूर रहना है, बल्कि हमें अपनी जो आत्मा है, अपनी सोल है, उसको अलाइव रखना है, उसको जिंदा रखना है. तो चलिए, अब मैं आपको कुछ ऐसी चाबियां, ऐसी कीज देने वाली हूँ जिससे हमारी ये प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी और फिर बाकी हम सॉल्व करके अपने आप को बेहतर बना पाएंगे. तो सबसे पहली चीज है टाइम बाउंड्रीज. आप दोहा की एक वर्किंग वुमन हो सकती हैं, आप एक बिजी होम मेकर भी हो सकती हैं, पर आप कोई 24/7 कॉल सेंटर नहीं है. अक्सर हमारी बैक होम वाली फैमिली या इन लॉज एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी फोन बजे आप अवेलेबल हो. कहना सीखिए प्यार से मगर मजबूती से कि मम्मी जी मैं अभी थोड़ी थकी हुई हूँ और बच्चों के साथ हूँ, क्या हम शाम को सुकून से बात कर लें? या जब आप अपनी अवेलेबिलिटी की बाउंड्री सेट करती हैं तो लोग धीरे धीरे आपके वक्त की इज्जत करना भी सीख लेंगे एंड यू आर टीचिंग देम हाउ टू ट्रीट यू.

दूसरी बात, दूसरी जो चाबी मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि द ग्रे रॉक मेथड। इमेजिन कीजिए एक सड़क पर पड़ा हुआ ग्रे कलर का पत्थर है, बोरिंग है, बेरंग है और बिल्कुल न्यूट्रल है। लेकिन जब आपका कोई रिश्तेदार या ससुराल वाला आपको ट्रिगर करने की कोशिश करे, शायद आपके पहनावे पर ताना दे या आपकी पेरेंटिंग को जज करे, तो उन्हें ड्रामा का फ्यूल मत समझिए, बहस मत कीजिए। बहस करने का मतलब है आपने उन्हें अपनी एनर्जी दे दी। इसके बजाय ग्रे रॉक बनिए, छोटे और बोरिंग जवाब दीजिए। अच्छा, ठीक हूँ, शायद आप सही कह रहे हैं। जब उन्हें आपसे कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा ना, तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अपनी एनर्जी उन लोगों पर वेस्ट मत कीजिए जो आपको समझना ही नहीं चाहते। प्रोटेक्ट योर पीस एंड इट्स गोल्ड। तो याद रखिए, तीसरी और सबसे जरूरी बात, कभी कभी बोझ इतना बढ़ जाता है कि कोई भी मेथड काम नहीं करती। अगर आपको लग रहा है कि आप टूट रही हैं, तो प्लीज अंधेरा होने का इंतजार मत कीजिए। आप कतर में हैं, यहाँ पर बहुत सारी सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सिद्रा मेडिसिन की विमेंस मेंटल हेल्थ सर्विस है, वहाँ एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे कल्चर, हमारी ट्रेडिशंस और हमारे फैमिली स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे राब्ता कायम कीजिए। प्रोफेशनल काउंसलिंग लेने में कोई शर्म नहीं है, ये बदतमीजी भी नहीं है, ये खुददारी है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक न्यूट्रल इंसान से बात करना आपको वो रास्ता दिखा सकता है जो आप शायद स्ट्रेस की वजह से देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे थॉट प्रोसेसेस का इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को बोल्ड बनाइए, जो कि आप हैं। लेकिन कई बार सिचुएशंस के चलते हम आगे नहीं बढ़ पाते। देखिए, आप एक अच्छी बहू, एक अच्छी बीवी या एक अच्छी माँ तभी बन सकती हैं जब आप अपनी खुद की सबसे अच्छी दोस्त बने। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल, अपना ख्याल रखें और आगे बढ़ें, ताकि आप अपनी फैमिली को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे पाए। और इसी बात के साथ मैं कहूंगी कि आई एम वेरी सर्टेन कि आपको आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। और अगर जरूर पसंद आया है, तो आप हमें जरूर मैसेज कर सकती हैं 666-22-107 पर, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ, और अपने दिल की बातें हम तक पहुंचा सकती हैं। या फिर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, FM 107 के, और आरजे अमिता को भी आप सोशल मीडिया पे ढूंढ सकती हैं। वेल, आज के एपिसोड में इतना ही। अब आप मुझे दीजिए इजाजत, आपकी मेरी मुलाकात होगी अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ, हमारे शो मेरी पहचान पर। तब तक के लिए खूब सारा ख्याल रखें। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
1: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप,
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
1: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोस्तों, आपकी सेफ्टी के लिए रोड सिर्फ डेजिग्नेटेड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें और ट्रैफिक सिग्नल्स का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें ना सिर्फ पेडेस्ट्रियन बल्कि ड्राइवर्स और अथॉरिटीज भी शामिल हैं। हमेशा अपने आसपास का ध्यान रखें और सिग्नल का इंतजार करें। अगर आपको क्रॉसिंग का वक्त मिल रहा हो तो उसका फायदा उठाएं और सेफली रोड क्रॉस करें। ट्रैफिक रूल्स का तायुन करना सबकी जिम्मेदारी है। जब भी आप रोड पार कर रहे हों, अपने सफर को इंतहाई एहतियात और आराम के साथ पूरा करें। कभी भी जे वॉकिंग ना करें और हमेशा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। ड्राइवर्स को भी ये जरूरी है कि वो पेडेस्ट्रियन का ख्याल रखें और उन्हें क्रॉस करने का मौका दें। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की सेफ्टी का ख्याल रखें और रोड पर हर वक्त एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: countdown for liftoff.
1: तैयार हो जाइए एक बेमिसाल सफर के लिए, एक रेडियो शो जो आपको ले जाता है वक्त और स्पेस के हैरतअंगेज सफर पर। इस शो में आप डिस्कवर करेंगे तारीख,

0: और साइंस के सबसे बड़े राज, भूले हुए सिविलाइजेशंस, पुरानी टेक्नोलॉजीज जो वक्त के साथ खो गई, और कॉस्मिक मिस्ट्रीज जो आज भी साइंटिस्ट को हैरान कर रही हैं। हर एपिसोड एक दिलचस्प ऑडियो एडवेंचर है जो फैक्ट्स को रियलिस्टिक साइंस फिक्शन के टच के साथ प्रेजेंट करता है। अपनी क्यूरियोसिटी को जगाइए, इमेजिनेशन को बढ़ाइए और हमारे साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मजा लीजिए। आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी, देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आज हम एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के एक और दिलचस्प और हैरत अंगेज एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। साथियों, आज का ये एपिसोड थोड़ा सा अलग होने वाला है, थोड़ा सा मिस्टीरियस और थोड़ा सा एडवेंचरस भी, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उन जजीरों के बारे में जो रात के अंधेरे में समंदर में खो गए, या फिर जो सिर्फ कुछ घंटों या दिनों में समंदर की लहरों में डिसअपीयर हो गए। जरा सोचिए साथियों, आप एक दिन समंदर के किनारे खड़े हैं, लहरों का शोर सुन रहे हैं, हवा की ठंडक महसूस कर रहे हैं, और फिर कल रात तक जो जमीन आपके सामने थी वो अब पूरी तरह से समंदर के नीचे चली गई। ऐसा सुनते ही लगता है ना कि जैसे कोई कहानी हो या फिर कोई पुरानी फैंटेसी स्टोरी, लेकिन साथियों ये बिल्कुल सच बात है और ये फेनोमिना नेचर के सबसे हैरत अंगेज राजदारियों में से एक रहा है। साथियों, ये सिर्फ एक नेचुरल स्पेक्टिकल नहीं है बल्कि एक रिमाइंडर है कि जमीन और समंदर हमेशा एक डायनामिक और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सिस्टम का हिस्सा है। आइलैंड एक छोटी जमीन के टुकड़े जो कभी हमारी आंखों के सामने खड़े होते हैं, किसी भी वजह से किसी भी वक्त डिसअपीयर हो सकते हैं। ये डिसअपीयरेंस सिर्फ लहरों या समंदर के लेवल की वजह से नहीं होती बल्कि जमीन के अंदर की फोर्सेस, टेक्टोनिक मूवमेंट्स और क्लाइमेट के सडन चेंजेस भी इसके पीछे का सबब बन सकते हैं। और ये सिर्फ जियोलॉजिकल या एनवायरमेंटल फिनोमेना नहीं है, ये इंसानों के लिए भी एक लेसन है। यानी हम अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, लेकिन नेचर के फोर्सेस के सामने ये स्टेबिलिटी टेम्पररी हो जाती है। साथियों, आइलैंड्स का डिसअपीयर होना हमें ये याद दिलाता है कि हमारी दुनिया कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रही है और कभी भी कोई चीज हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं रहती। इस फिनोमिना का सबसे फैसिनेटिंग पहलू ये है कि आइलैंड्स रात के अंधेरे में एक सडन इवेंट के नतीजे में या फिर कुछ दिनों में ही डिसअपीयर हो जाते हैं, यानी बिल्कुल गुम हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए एक पल के लिए कि आपके सामने एक जमीन का टुकड़ा था और अगली सुबह तक वो कहीं समंदर की लहरों में गुम हो गया। ये सोच ही कितनी हैरत अंगेज लगती है ना, और इसी वजह से ही तो ये कॉन्सेप्ट हमारी क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन को इतना प्रोवोक करता है। तो भाई, आज के इस एपिसोड में हम सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनेंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे कि आइलैंड डिसअपीयरेंस के बारे में साइंस क्या कहती है, नेचर के फोर्सेस कैसे काम करते हैं और कैसे समंदर अपनी ताकत से जमीन को रीशेप कर देता है। और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये फिनोमिना हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि दुनिया कितनी डायनेमिक और अनप्रेडिक्टेबल है। तो साथियों, तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं रात के अंधेरे में खो जाने वाले आइलैंड्स, समंदर के राज और नेचर की वो फोर्सेस जो हमेशा से हमारी आंखों के सामने काम कर रही हैं। क्योंकि आज का एपिसोड सिर्फ हैरतअंगेज फैक्ट से नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर देने वाले आइडियाज और पर्सपेक्टिव से भरा होगा। साथियों, जजीरा यानी आइलैंड वो जमीन का टुकड़ा होता है जो समंदर के बीच में उभरता है, यानी जमीन कुदरती तौर पर समंदर की सतह से ऊंची निकल आती है और मुख्तलिफ कुदरती अमाल के जरिए अपनी शक्ल और वजूद इख्तियार कर लेती है। आइलैंड्स यानी जजीरों का तज्जिया सिर्फ खूबसूरती तक महदूद नहीं है साथियों, बल्कि ये समंदरी इकोलॉजी और इंसानी मईशत के लिए भी बहुत अहम है। तो साथियों, सबसे पहला और सबसे आम तरीका जजीरा बनने का ये है आतिश फिशा अमल। जब जेरे समंदर वॉल्केनो फटता है तो पिघला हुआ लावा समंदर की सतह पर आकर ठंडा हो जाता है और एक नया जजीरा तैयार करता है। इस तरह के जजीरे आमतौर पर पत्थर और लावा के मिक्सचर से बने हुए होते हैं और पहली दफा उभरते वक्त ये बहुत नाजुक और समंदरी लहरों के लिए वल्नरेबल होते हैं। दूसरा तरीका है समंदरी रेत और मिट्टी का जमा होना। दरिया और समंदर की लहरें रेत और मिट्टी को एक जगह जमा कर देती हैं। वक्त के साथ साथ ये जमा होता हुआ

का सबब भी बनते हैं। पाकिस्तान के गवादर के पास उभरा जलजला को इसकी एक जिंदा मिसाल है, जहां 2013 में अर्थक्वेक के नतीजे में मीथेन गैस और टेक्टोनिक एक्टिविटी ने समंदर से नई जमीन को उभारा, लेकिन चंद दिनों के अंदर ही समंदर की लहरों ने इस जजीरे को अपनी लपेट में ले लिया। भाई, ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में ग्लेशियर्स और पोलर आइस कैप्स के पिघलने से समंदर का ओवरऑल लेवल बढ़ रहा है। इस सी लेवल राइज की वजह से कोस्टल और लो लाइंग आइलैंड्स और सेटलमेंट्स डायरेक्ट रिस्क का सामना कर रहे हैं। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक पैसिफिक ओशन के सोलोमन आइलैंड्स, मालदीव्स, कैरिबियन के आइलैंड्स और सुंदरबंस के छोटे आइलैंड्स सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। साथियों, सैटेलाइट इमेजेस और लॉन्ग टर्म स्टडीज से ये साबित हुआ है कि समंदर की लहरें और क्लाइमेट चेंज के असरात से आइलैंड्स आहिस्ता आहिस्ता डूब रहे हैं। ये तब्दीलियां सिर्फ लैंडफॉर्म्स के लिए नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी को भी डीप अफेक्ट कर रही हैं। कोस्टल कम्युनिटीज को अपने घर और रिवायात छोड़कर मेन लैंड या दूसरे आइलैंड्स पर रिलोकेट होना पड़ता है और ये लोग क्लाइमेट रेफ्यूजीज कहलाते हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक लगभग 60 मिलियन लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सी लेवल से डायरेक्ट मुतासर हो सकते हैं। साथियों, समंदर की डायनेमिक बिहेवियर और जमीन की टेक्टोनिक एक्टिविटी एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा हैं। अगर एक फैक्टर जैसे ग्लोबल टेम्परेचर या टेक्टोनिक स्ट्रेस चेंज होता है तो इसका असर पूरे ओशनिक सिस्टम पर पड़ता है। स्टॉर्म सर्जेस, साइक्लोन्स और टाइडल वेव्स की इंटेंसिटी

0: आयरन सबमर्शन का सबब बन रही हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट्स और कोस्टल रीफ्स जैसे नेचुरल बफर्स की कटाई और डिस्ट्रक्शन भी इस प्रोसेस को एक्सेलरेट कर रही हैं। ये साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हमें ये दिखाती है कि नेचर का बैलेंस कितना डेलिकेट है और ह्यूमन एक्टिविटीज और क्लाइमेट चेंज कैसे इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक मजे की बात ये है कि कुछ आइलैंड्स जैसे पैसिफिक के छोटे आइलैंड्स टेम्परेली उभर भी जाते हैं और फिर डूब भी जाते हैं, जो मड वोल्केनोज और टेक्टोनिक एक्टिविटी के नतीजे में हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आइलैंड और कोस्टल लैंडफॉर्म्स हमेशा चेंज होते रहते हैं और ह्यूमन सेटलमेंट्स को एडॉप्ट करना पड़ता है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रॉपर कोस्टल प्लानिंग बहुत अहमियत रखती है ताकि लोग और नेचर दोनों सर्वाइव कर सकें। साथियों, साइंस हमें ये भी सिखाती है कि समंदर की लहरें और आइलैंड्स की डिसअपीयरेंस सिर्फ एक लोकल फिनोमेना नहीं बल्कि ग्लोबल फिनोमेना है, जो ह्यूमैनिटी और एनवायरनमेंट दोनों के लिए सीरियस इम्प्लिकेशंस रखता है। चाहे वो बांग्लादेश के सुंदरबंस के आसपास के आइलैंड्स हों, सोलोमन आइलैंड्स हों या मालदीव्स और किरीबाती के आइलैंड्स, ये सब एग्जांपल्स हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज इंसानी बस्तियों को डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है। इन रीजन्स के लोग अपनी जिंदगी और सोशल स्ट्रक्चर के लिए नए तरीके अडॉप्ट करते हैं और ये ही रेजिलियंस की एक मिसाल भी है। तो साथियों, आज हमने साइंस के नजरिए से ये जाना कि कैसे समंदर की लहरें जमीन को अपनी गहराइयों में ले जाती हैं और कैसे क्लाइमेट चेंज और टेक्टोनिक एक्टिविटी इस प्रोसेस को और ज्यादा एक्सेलरेट कर रही है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया में तब्दीलियां कांस्टेंट हैं और हमें अपने एनवायरनमेंट की हिफाजत और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए। कोस्टल एरियाज और आइलैंड्स की प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन सिर्फ एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी और आने वाली नस्ल के सर्वाइवल के लिए भी क्रिटिकल हैं। तो भाई, अब हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस साइंटिफिक सफर में शामिल हों। तो भाई बताइए, क्या आपने कभी किसी जजीरे को समंदर में डूबते हुए देखा है या फिर कोस्टल एरियाज की तब्दीलियों को अपने आसपास ऑब्जर्व किया है? अपने ख्यालात और तजुर्बात हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप चाहें तो हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर। साथियों, साइंस के जरिए हम ना सिर्फ नेचर को समझ सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगी और एनवायरनमेंट को भी बेहतर प्लान कर सकते हैं। समंदर की तब्दीलियां और जमीन की हैरत अंगेज बातें हमें ये सिखाती हैं कि नेचर के साथ हारमोनी और बैलेंस के साथ रहना कितना जरूरी है, वरना आइलैंड और कोस्टल कम्युनिटीज अपनी एग्जिस्टेंस को रिस्क में डाल सकती हैं। ग्लोबल नजर, साइंटिफिक रिसर्च और रियल लाइफ एग्जांपल्स हमें इंस्पायर करते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट के साथ रिस्पॉन्सिबली और इंटेलिजेंटली इंटरैक्ट करें ताकि हमारी जमीन और समंदर दोनों सस्टेनेबल और सेफ रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड तक के लिए सफा को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहें FM 107। अल्लाह हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम

0: मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीब टू हैबिट, हदीब टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: FM 107 पर हर गाना हिट, हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों बदर बिलाल कतर फुटबॉल के मशहूर फॉरवर्ड्स में से एक हैं। उन्होंने 1977 में सिर्फ 15 साल की उम्र में असद की यूथ टीम ज्वाइन की और बाद में सीनियर टीम के अहम खिलाड़ी बन गए। 1979-80 सीजन में वो मंसूर मुफ्ता के साथ लीग के जॉइंट टॉप स्कोरर रहे। 1982 के अमेरिका फाइनल में सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान में आकर बदर बिलाल ने फैसला कुन गोल स्कोर किया। 1991 तक असद क्लब के साथ उन्होंने 23 ऑफिशियल टाइटल्स जीते, जिनमें

0: 1988-1989 एशियन क्लब चैंपियनशिप यानी आज के दौर में एएफसी चैंपियंस लीग जिसे कहते हैं सबसे नुमाया है। इस टूर्नामेंट में बदर बिलाल ने कई अहम गोल स्कोर किए और असद क्लब को एशिया का चैंपियन बनाने में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों 1981 में ऑस्ट्रेलिया में फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप मुनक्द हुई थी और कतर रनर्स अप टीम रही और इस रनर्स अप बनने के पीछे स्टार खिलाड़ी बदर बिलाल का एक अहम रोल रहा। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनका गोल तारीख का हिस्सा बन गया और वो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में गोल करने वाले पहले अरब और एशियन फुटबॉलर बने। ये तारीखी वाकया आज भी लोग याद करते हैं। फुटबॉल एक्सपर्ट जब भी कतर फुटबॉल को लेकर बात करते हैं बदर बिलाल इस परफॉर्मेंस को हमेशा जिक्र में लाते हैं। उन्होंने ब्राजील और पोलैंड के खिलाफ भी अहम गोल स्कोर किए और टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे। बदर बिलाल ने कतर की सीनियर टीम के लिए 1982 और 1986 के गल्फ कप्स में भी नुमाइंदगी की। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और अजीम खिलाड़ी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: नगर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, समंदरी सफर के दौरान ऑयल प्लेटफॉर्म से दूर रहना कानून की पाबंदी और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आवाम को याद दिलाती है कि वो समंदर में मौजूद ऑयल प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो बड़े हों या छोटे, उनके करीब जाने से परहेज करें, ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई का शिकार ना हों। 2004 के कानून नंबर 8 के तहत, जो कि मैरीटाइम पेट्रोलियम और गैस इंस्टॉलेशंस की हिफाजत से मुताल्लिक हैं, आर्टिकल नंबर 3 के मुताबिक कोई भी अनऑथराइज्ड शख्स किसी भी समुद्री फैसिलिटी के 500 मीटर के दायरे के अंदर नहीं जा सकता है। और इसी कानून के आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है, समुद्री फैसिलिटीज के 500 मीटर के अंदर मछलियां पकड़ना या फिशिंग गियर छोड़ना मना है। मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में वाजे किया है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त जुर्माने और कैद की सजाएं दी जा सकती हैं। आपका ऑफशोर पेट्रोलियम इंस्टॉलेशंस के मुख्तलिफ ऑक्सिलरी यूनिट्स के करीब ना जाना आपको कानूनी कार्रवाइयों से महफूज रखता है। FM 107 आपसे कहता है कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए हमेशा होशियार रहिए। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान, इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो जदीद दौर में तेजी से आम होता जा रहा है और वो है बर्नआउट। अब बर्नआउट सिर्फ थकावट का नाम नहीं है बल्कि जिस्मानी, जहनी और जज्बाती थकन की एक ऐसी कैफियत है जो तवील अरसे तक मुसलसल दबाव, ज्यादा काम और मुनासिब आराम ना मिलने के नतीजे में पैदा होती है। बाज़ लोग समझते हैं कि बर्नआउट सिर्फ मुलाजमत पेशा अफराद को होता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये स्टूडेंट्स, घरेलू खवातीन और निगहदाश्त करने वालों और हर उम्र के फर्द को मुतासिर कर सकता है। बर्नआउट की चंद अलामात आपसे शेयर करना चाहूंगी कि हर वक्त थकावट महसूस करना, काम या रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं उनमें दिलचस्पी कम होना, तवज्जो और याददाश्त में कमी हो जाना, चिड़चिड़ापन और गुस्सा जो है वो ज्यादा आना, नींद के मसाइल का सामना करना, सरदर्द या फिर जिस्मानी दर्द जो है वो महसूस हो, मायूसी या बेबसी का एहसास होना। बर्नआउट आहिस्ता आहिस्ता पैदा होता है। इब्तिदा में इंसान सिर्फ थकावट महसूस करता है, लेकिन अगर बरवक्त तवज्जो ना दी जाए तो ये जहनी और जिस्मानी सेहत पर गहरे असरात मुरतब कर सकता है। इसके कई असबाब हो सकते हैं, जैसे कि मुसलसल काम का दबाव, तवील औकात कार काम जो आप कर रहे होते हैं, इसी तरह आराम और तफरी की जो कमी है, जहनी और पेशा वराना जिंदगी में अदम तवाजुन और हर वक्त बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने का दबाव। बाज़ अफराद दूसरों की मदद करते करते अपनी जरूरियात को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके नतीजे में वो जहनी तौर पर बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। अगर आप महसूस करें कि रोजमर्रा के काम पहले की नस्बत ज्यादा मुश्किल रख रहे हैं या आप हर वक्त थकन और बेदिली का शिकार हैं, तो ये बर्न आउट की इब्तदाई अलामत हो सकती हैं। याद रखिए, बर्न आउट कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसी हालत है जो इस बात का इशारा देती है कि जिस्म और जहन को आराम और तवज्जो की जरूरत है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
4: करदा है ये निया मेनिया गल्ला ते तू लड़दा।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, आजकल हम सब रिसाइकलिंग के बारे में सुनते आ रहे हैं, है ना? आजकल बहुत ज्यादा मशहूर हुआ ये टॉपिक। स्कूल्स में, सोशल मीडिया पर, कैंपेन्स में, हर जगह हमें बताया जाता है कि भाई रिसाइकलिंग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि भाई रिसाइकलिंग के बारे में जो बातें हमें सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उनमें से कितनी बातें सच हैं और कितनी मिथ्स हैं, यानी कि गलत फहमियां हैं। कभी हम ये सोचते हैं कि भाई हर चीज रिसाइकल हो सकती है। कभी हमें ये लगता है कि अगर हम सिर्फ रिसाइकलिंग कर रहे हैं तो भाई बाकी वेस्ट की टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन रिसाइकलिंग को सही तरीके से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये इको स्विच में हम रिसाइकलिंग मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स के बारे में बात करें, यानी रिसाइकलिंग के बारे में सच और गलत फहमियों को समझने की कोशिश करें। देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं पहले। साथियों, रिसाइकलिंग एनवायरमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन इसके बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी शामिल होती हैं अक्सर औकात। अगर हम रिसाइकलिंग को सही तरीके से ना समझें तो हमारी मेहनत का फायदा कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं तो कुछ लोग ये समझते हैं कि हर प्लास्टिक आइटम रिसाइकल हो सकता है। कुछ लोग रिसाइकलिंग बिन में हर तरह का कचरा डाल देते हैं और ये सोचते हैं कि भाई सब कुछ ऑटोमेटिकली रिसाइकल हो जाएगा। और कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ रिसाइकलिंग ही एनवायरमेंट के तमाम मसाइल का सलूशन है। हकीकत ये है कि रिसाइकलिंग जरूरी है, जी हाँ, लेकिन रिड्यूस और रीयूज भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पहली चीज तो मैं आपको मिथ वर्सेस फैक्ट्स में बता देती हूँ। पहली मिथ ये है कि हर प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है। हर प्लास्टिक आइटम रिसाइकल नहीं होता भाई, नो। प्लास्टिक की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और हर टाइप को प्रोसेस करना मुमकिन नहीं होता। इसलिए ये जरूरी है कि रिसाइकल रूल्स को समझें और सिर्फ एक्सेप्टेड आइटम्स ही रिसाइकलिंग के लिए डालें। दूसरी मिथ ये है कि रिसाइकलिंग बिन में सब कुछ डाल देना ठीक है। अरे भाई, फैक्ट ये है कि रिसाइकलिंग बिन में गलत चीजें डालने से पूरा प्रोसेस मुश्किल हो सकता है, यानी कि फूड वेस्ट, डर्टी कंटेनर्स और नॉन रिसाइकलेबल आइटम्स रिसाइकलिंग सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आइटम्स को क्लीन और प्रॉपरली सेपरेट करना जरूरी होता है। अच्छा, मिथ नंबर 3 क्या है? रिसाइकलिंग का मतलब है कि वेस्ट प्रॉब्लम खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म। अरे भाई, फैक्ट ये है कि रिसाइकलिंग हेल्पफुल है, लेकिन सबसे पहला स्टेप है रिड्यूस एंड रीयूज। अगर हम अननेसेसरी चीजें कम खरीदें और जो चीजें हैं उन्हीं को हम दोबारा से यूज करें तो वेस्ट पहले ही कम हो जाएगा, है कि नहीं? चौथी मिथ ये है कि रिसाइकलिंग सिर्फ बड़ी कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना जी। फैक्ट ये है कि हर घर का रोल इम्पोर्टेंट है। अगर हर फैमिली वेस्ट को सेपरेट करना शुरू करे और रिस्पॉन्सिबल होकर डिस्पोज करे तो कलेक्टिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। अच्छा, अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं ना, तो भाई अगर एक फैमिली हर हफ्ते ग्रोसरी शॉपिंग के बाद प्लास्टिक, कार्डबोर्ड और ग्लास आइटम्स को अलग अलग रखना शुरू कर दे तो वो रिसाइकलिंग

0: प्रोसेस को इजी बना सकते हैं। लेकिन अगर उसी रिसाइकलिंग बैग में फूड वेस्ट, यूज टिश्यूज और मिक्स्ड गार्बेज भी डाल दिया जाए तो रिसाइकलिंग आइटम्स भी खराब हो सकते हैं। इसीलिए रिसाइकलिंग का पहला रूल यही है, सही चीज सही जगह। आजकल बहुत से लोग घर में छोटे छोटे रिसाइकलिंग स्टेशंस बना रहे हैं जहां अलग अलग कैटेगरीज के बिन्स रखे जाते हैं। ये आदत बच्चों को भी सिखाती है कि वेस्ट को समझना और मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि आज आप अपने घर के कचरे को थोड़ा सा डटोलें और आइडेंटिफाई करें हम कितनी चीजें रिसाइकल कर सकते हैं और हम कितनी चीजें अननेसेसरी वेस्ट बना रहे हैं। और हमें जरूर बताएं आपके घर में रिसाइकलिंग के लिए सबसे ज्यादा क्या कलेक्ट होता है, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास या कुछ और। इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, रिसाइकलिंग सिर्फ कचरा अलग करना नहीं होता बल्कि रिसोर्सेज की कदर करना होता है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फायदा पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain 60 seconds of Baraka, FM 107 par. Main hoon aapki RJ Mavish Khan. और आज हम बात करेंगे रोजाना दुआ की लिस्ट बनाने के बारे में। दुआ मोमिन की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अक्सर हम सिर्फ मुश्किल वक्त ही में दुआ करते हैं और अपनी रेगुलर नीड्स को भूल जाते हैं। एक सिंपल सी आदत यह है कि हम अपनी दुआओं की एक छोटी सी लिस्ट बना लें। इसमें हम अपनी जरूरियात, गोल्स और दूसरों के लिए दुआएं शामिल कर सकते हैं। इस तरह से दुआ करना ज्यादा फोकस्ड होता है और इंसान को अपनी जिंदगी को बेहतर एहसास दिलाता है कि आदत दिल और अल्लाह के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पैदा करती है। आज का मल ये है कि अपनी एक छोटी सी दुआ लिस्ट तैयार रखें और रोज उसे देखते हुए अल्लाह से दुआ मांगा करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आप सुन रहे हैं FM 107।
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग। देखिए, आजकल ना तालीम जो है वो सिर्फ क्लासरूम्स या फिर स्कूल्स तक महदूद नहीं है। तेजी से बदलती इस दुनिया में लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी जिंदगी भर सीखते रहना हमारी और आपकी पर्सनल ग्रोथ, हमारे करियर एडवांसमेंट और मुल्क की तरक्की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी किस तरह से एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर रही है और लर्निंग के किस तरह के नए मौके जो है वो पैदा कर रही है। डिस्कशन में ऑनलाइन लर्निंग होगा, डिजिटल क्लासरूम्स की बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑफ कोर्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग जैसे टॉपिक्स भी शामिल होंगे। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज और जॉब्स बदल रही हैं, वैसे ही नए स्किल सीखना और अपनी नॉलेज अपडेटेड रखना जरूरी हो गया है। एक्सपर्ट इस बात पर रोशनी डालते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बिजनेस और कम्युनिटीज मिलकर इस तरह से रन करें कि कल्चरल भी प्रमोट हो और बात भी बन जाए। देखिए, स्मार्ट एजुकेशन और कंटिन्यूस लर्निंग के जरिए हम फ्यूचर के चैलेंजेस को बेहतर तरीके से फेस कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट किरदार भी है। दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन का मतलब है टेक्नोलॉजी और मॉडर्न लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल करके एजुकेशन को ज़्यादा इफेक्टिव, इंटरैक्टिव और एक्सेसिबल बनाना। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल कंटेंट और पर्सनलाइज्ड लर्निंग इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स अपनी स्पीड और अपने लर्निंग स्टाइल के मुताबिक सीख सकें। वहीं लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये क्या है? देखिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब है जिंदगी भर सीखते रहना। आज के इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में सिर्फ स्कूल या यूनिवर्सिटी की डिग्री काफी नहीं होती। लोगों को अपनी स्किल्स अपडेट करनी पड़ती है, नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस को अडॉप्ट करना है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई इंजीनियर है और अगर कोई इंजीनियर AI कोर्स करता है या कोई डॉक्टर नए मेडिकल टेक्नोलॉजीज के बारे में ट्रेनिंग लेता है तो ये हुई लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और अगर ये लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए, वर्चुअल क्लासरूम्स के जरिए, स्मार्ट एप्स के जरिए हो तो ये हुआ स्मार्ट एजुकेशन। तो बस स्मार्ट एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को आप मुस्तकबिल के वर्कफोर्स के लिए कितना अहम समझते हैं? वैसे मैं तो कहूंगी कि आज के इस डिजिटल एरा में एजुकेशन जो है वो सिर्फ क्लासरूम्स तक महदूद नहीं है। स्मार्ट एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स तैयार करने में एक बहुत अहम रोल जो है वो अदा कर रहे हैं और हमें और आपको इसकी इम्पोर्टेंस को समझना भी है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमें और आपको जो है वो तैयार करता है। इसकी इम्पोर्टेंस इस बात से ज़्यादा है कि हम अपनी स्किल्स को अपडेटेड रखते हैं, नई टेक्नोलॉजीज और मार्केट ट्रेंड से कुछ सीखते हैं और कंट्रीब्यूट बेहतर तरीके से करते हैं। वहीं पर आपकी और हमारी करियर ग्रोथ ये भी तो बढ़ती है। जो लोग कंटिन्यूसली सीखते रहते हैं उनके लिए प्रमोशंस और नई अपॉर्चुनिटीज जॉब्स में भाई कितनी आसान हो जाती हैं। वहीं अडैप्टेबिलिटी, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अडैप्टेबिलिटी चेंज को एक्सेप्ट करने और नए चैलेंजेस का सामना करने की सलाहियत भी पैदा करती है। और जब इतनी सारी स्किल्स आपके पास होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा? आपका कॉन्फिडेंस तो होगा ही होगा, तो आपके कॉन्फिडेंस को भी इम्प्रूव करते हैं। वहीं पर इनोवेशन और क्रिएटिविटी को भी सपोर्ट मिलता है क्योंकि कंटिन्यूस लर्निंग नए आइडियाज और बेटर सॉल्यूशंस पैदा करने में मदद करती है। तो मैं तो यही कहूंगी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग आज के एरा में बहुत अहम है क्योंकि नॉलेज और टेक्नोलॉजी हर रोज चेंज हो रहे हैं, मगर जो लोग कंटिन्यूसली सीखते रहते हैं वो अपने स्किल्स को रेलेवेंट रखते हैं, करियर ग्रोथ हासिल करते हैं और फ्यूचर के चैलेंजेस का बेहतर मुकाबला करते हैं। इसीलिए लर्निंग को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन तक महदूद ना रखिए, बल्कि जिंदगी भर का सफर बना लीजिए या समझिए। पढ़िए, पढ़ाइए, सीखिए, सिखाइए और इस तरह से खुद को, सोसाइटी को मजबूत कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सन एंड साउंड। सन एंड साउंड संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: بسم الله الرحمن الرحيم

लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और साबई और नसारा और मजूस और जिन लोगों ने शिर्क किया, इन सब के दरमियान अल्लाह कयामत के रोज फैसला कर देगा। हर चीज अल्लाह की नजर में है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह के आगे सरबसजूद हैं वो सब जो आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं, सूरज और चांद और तारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से इंसान और बहुत से वो लोग भी जो आजाब के मुस्तहक हो चुके हैं। और जिसे अल्लाह जलील व खार कर दे, उसे फिर कोई इज्जत देने वाला नहीं है। अल्लाह करता है जो कुछ चाहता है। ये दो फरीक हैं जिनके दरमियान अपने रब के मामले में झगड़ा है। इनमें से वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, उनके लिए आग के लिबास काटे जा चुके हैं। उनके सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा, जिससे उनकी खाले ही नहीं पेट के अंदर के हिस्से तक गल जाएंगे और उनकी खबर लेने के लिए लोहे के गुर्ज होंगे। जब कभी वो घबरा कर जहन्नम से निकलने की कोशिश करेंगे, फिर उसी में धकेल दिए जाएंगे कि चखो अब जलने की सजा का मजा। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, उनको अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां वो सोने के कंगनों और मोतियों से आरास्ता किए जाएंगे और उनके लिबास रेशम के होंगे। उनको पाकीजा बात कबूल करने की हिदायत बख्शी गई और उन्हें खुदाए सतूदा सिफात का रास्ता दिखाया गया। जिन लोगों ने कुफ्र किया और जो आज अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं और उस मस्जिद हराम की जियारत में माने हैं जिसे हमने सब लोगों के लिए बनाया है, जिसमें मकामी बाशिंदों और बाहर से आने वालों के हकूक बराबर हैं, उनकी रविश यकीनन सजा की मुस्तहक है। इस मस्जिद हराम में जो भी रास्ते से हटकर जुल्म का तरीका अख्तियार करेगा, उसे हम दर्दनाक अदाब का मजा चखाएंगे।